0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम।
3: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायणा मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
4: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
5: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
4: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
6: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
7: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
8: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
7: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
9: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
10: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकाल कर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस, इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
11: Be in to win one of five $10,000 Mitre 10 gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho, camping ka pura gear le sakte ho, ek room ka makeover kar sakte ho, ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo, and you are in the draw. Plus, club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at Mitre 10.
12: The Cooperative Bank's home loan crew are in the house. Check it. Got that home dream, but don't know where to start? Little Kiwi Saver and lots of listings bookmarked. LIMS, LVRs, what does it all mean? Been checking out listings since 2019. Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for your tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. From first questions to front door keys, we got you. T's and C's apply.
13: Octopus factory farms in New Zealand? Sounds unthinkable, but your tax dollars have been funding the research. Sign the petition and keep octopuses wild. Go to banoctopusfarming.co.nz.

0: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
1: Lunchbox with Kaitan.
2: Mujhe pasand hai ladka.
1: Lunchtime Rant Line.
3: Welcome back. You are listening to Lunchbox. And lunchtime rent line ke liye messages mujhe aa chuke hain. Lekin yes, I'm still welcoming. Jo bhi mujhe message bhejna chahe, wo bhej sakta hai 5599 pe. But before that, let me just read out this amazing, amazing offer. Pehla mauka, jahan pe aap jeet sakte hain dheero inaam. Aur wo hai, sabse pehla mauka, Festival of Fortune. Win your share of $5,000 worth of prizes this Diwali with hum. 30 अक्टूबर को होने जा रहा है इसका ड्रॉ, लेकिन उससे पहले आपके पास मौका है. तब तक जितने मैसेजेस आप भेज सकते हैं उतना चांसेस आपके बढ़ेंगे फॉर द ड्रॉ. आज लिख के भेजिए कीवर्ड फॉर्च्यून स्पेस अपना नाम और 5599 पे भेज दीजिए, ताकि आप $1,000 कैश जीतने के कगार में आ सके. फॉर्च्यून विथ होल ग्रेन्स, असेंशियल विटामिन्स, फॉर्च्यून फ्यूल्स, एवरीवन बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. Terms and conditions do apply. आप जरूर जाके पढ़ सकते हैं hum.ro.nz पे जाके. But yes, अभी से आपके पास ठीक 5 मिनट हैं जहाँ पे आप मुझे ये सारे SMS भेजेंगे. Make sure करना, fortune लिखें स्पेस और अपना नाम मुझे भेज दीजिए. And yes, ये रहा मैसेज. अंजलि का मैसेज आया है. My rant is about people who ask you to recommend a good movie and then spend the entire time on their phone while watching it. Last weekend, I suggested a movie to my friend halfway through. One of them kept scrolling through Instagram and asking me what was happening. I told them either to watch the movie or watch their phone because I'm not running a live commentary service. Well, Anjali, ये तो कमाल है. पहले movie choose करने के लिए आधा घंटा discussion करो और फिर movie start होते ही phone में busy हो जाओ. और जब story समझ नहीं आती है तो हर 5 minutes में पूछो कि भाई ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब है. भाई मूवी देख रहे हो या सिर्फ बैकग्राउंड में चला रहे हो. और सबसे फनी बात, मूवी खत्म होने के बाद बोलेंगे मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी. भाई कहाँ से लगेगी जब आप एक ही टाइम पे दो दो स्क्रीन देख रहे हो. अरे पहले देखो तो सही. लिसनर्स, आपके फ्रेंड्स भी मूवी के बीच में फोन चलाते हैं या आप लोग मूवी टाइम पर फोन साइड में रख सकते हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे. बट यस, मेरा तो यही इंटेक रहेगा कि मैं बताता हूँ, हमारे साथ भी होता था. तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले बोला भाई मूवी चल रही है यानी कि फ़ोन साइड में रखो. आई नो मुश्किल होता है, बट थोड़ा स्टबन होना पड़ता है उन लोगों के साथ जो खुद इस तरह की हरकत करते हैं. एंड ऑब्वियसली बताऊँ, कहीं ना कहीं ऐसी हरकतों से ना जो सीरियसली देखते ना उनका भी मन मर जाता कि यार हम साथ में बैठ के मूवी देख रहे हैं तो एन्जॉय द मूवी. क्योंकि मूवी अगर अकेले ही देखनी पड़ती है तो सभी के पास फ़ोन है, सब अपने अपने फ़ोन्स में देख सकते हैं. लेकिन व्हेन यू वॉचिंग ऑन द बिग स्क्रीन विथ पीपल अराउंड, तो सभी चाहते हैं कि एक दूसरे बैठ के अच्छे से देखे, सो दैट दे फील कि भाई आस पास ही हैं हम सब उस सेम स्टोरी के. व्हाट डू थिंक, अगर आपके साथ ऐसा सीन होता है तो आप कौन सा रूल अपनाते हैं, मुझे भेजिए 5599 पे.
1: लंच के मंच पे Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. और एक बहुत ही बढ़िया बात है, वो है एक दिया एक कहानी. वेल यस, हम लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत मौका जहाँ पे हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली भी. और ये जो गाथा है ये भी यहाँ पे सुनाई देती है. सो यस, वी एट हम वुड लाइक टू सेलिब्रेट समवन स्पेशल इन योर लाइफ. वो कैसे? ऑफकोर्स आपके ब्लड में ना हो, यानी कि कोई डायरेक्ट फैमिली मेंबर ना हो आपका, लेकिन यस बाय हार्ट वो फैमिली ही है. तो यस, आपको मुझे अभी कॉल करना है 0800-004-866 पे और उस इंसान को, उस शख्स को शाउट आउट देना है यहाँ पे. जी हाँ, तो फ़ोन करिए और मुझे बताइए कि वो शख्स कौन है जो आपके इतने करीब है और क्यों है, एंड क्या अच्छी चीज़ें करी हैं या फिर क्यों वो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है. ये आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं 0800-004-866 पे. सम पीपल डजंट वॉन्ट टू मैंशन द नेम एज वेल, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, बट अगेन द स्टोरी जो है वो आप शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं, बिकॉज इसके जरिए आप ड्रॉ में शामिल होंगे और जीत सकते हैं $300 के प्राइजेस. क्या बात है. चलिए फोन उठाते हैं. हेलो.
3: हाय,
2: हाउ आर यू? किससे बात हो रही है?
3: मेरा नाम रजनी है.
2: हाय रजनी, कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड.
2: यस यस, ऑल गुड ऑल गुड. थैंक यू. बताइए.
3: तो मैं शाउट आउट के लिए नाम लेना चाहती हूँ अपनी फ्रेंड नतांशा का.
2: नतांशा, ओ नाइस नेम, नाइस यूनिक. नताशा सुना है, नतांशा पहली बार सुना है, बट दैट्स नाइस.
3: नतांशा का
2: जी.
3: उसको, उसका नाम मैं इसलिए लेना चाहती हूँ बिकॉज मुझे जब भी जरूरत पड़ी शी इज ऑलवेज देयर. उसने कभी बैकआउट नहीं किया, इधर आई एम सिक और आई एम एट वर्क, आई नीड हर हेल्प और कुछ भी, तो शी वाज ऑलवेज देयर, सो व्हिच इज व्हाई आई हैव, आई एम टेकिंग हर नेम.
2: कुछ ऐसा इंसिडेंट बताएंगे जो यू नो हुआ हो, लाइक यू नो जिसकी वजह से आपको पता है कि लगे कभी कभी कोई भी सिचुएशन हो शी इज ऑलवेज देयर.
3: या सो रिसेंटली यू नो हाउ इन्फ्लुएंजा वॉज हिटिंग एंड आई ऑल्सो वेंट डाउन एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बहुत जरूरत थी कि कोई मुझसे उठा नहीं जा रहा था. लाइक आई वॉज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ माई बेड ऑल्सो, सो आई जस्ट रैन हर. माई हस्बैंड हैड टू गो टू वर्क दैट डे, माई चिल्ड्रन वर एट होम, तो आई हैड टू कॉल हर दैट डे. एंड ऑल दो शी वॉज नॉट फीलिंग वेल एज वेल, बट इतना बुरा नहीं था जितना बुरा मेरा हाल था, स्टिल शी मैनेज टू कम. उसने मेरे बच्चों का ध्यान रखा, यू नो घर का बर्तन वर्तन सब पड़े हुए थे, शी डिड ऑल द डिशेज, सो I was like so thankful and so appreciative of her, so which is why I'm taking her name.
2: Yeah. Oh, that's so lovely. That's so lovely. Rajni naam bataya aapne, right? Perfect. आपका नाम तो definitely draw में शामिल होता है. But एक सवाल है मेरा यहाँ पे. आपने क्या बताया? क्या like your husband was also busy?
3: Yeah, he was at work that day.
2: Right.
3: And he did not know that I am feeling that bad. And he is working into department where I was not able to reach him as well because he does not take his phone with him.
2: Right.
3: So yeah, I had nobody else to go to.
2: Right, right. मेरे एक सवाल है यहाँ पे. एक listener ने भी पूछा था, तो उनकी तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूँगा. Obviously, it is not to you, but this is just a generic question जिसका आप चाहें तो skip भी कर सकते जवाब. मेरे को पूछना है कि why वाइफ ऑलवेज थिंक नॉट अगेन यू, बट मेजोरिटी केस में देखा है कि दे थिंक दैट हस्बैंड कैन नॉट टेक केयर ऑफ देयर किड्स. व्हाई दे थिंक सो?
3: नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हस्बैंड कैन टेक केयर. मेरे हस्बैंड तो केयर करते भी हैं बच्चों की. व्हेन आई एम एट वर्क एंड ही इज नॉट, देन ही इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ किड्स. But on that particular day, he already went to work and then he's in the department where he was not able to take his phone with him. Like, aisa hai, restriction hai, he cannot take his phone with him. So, I was not able to call to him and instead I called Natansha first that are you able to help me? Because it will take my husband time to come back if I'm going to call in his office, you know. Right. Not on the personal phone, but in the office, it will, you know, take time.
2: मेरा लिंक इस टॉपिक से नहीं था. लाइक आपने जो जवाब दिया डेफिनेटली आपके हस्बैंड है, बट मेजॉरिटी केसेस मैंने देखा है ऑब्वियसली ये मेरा सवाल भी नहीं है, सवाल किसने पूछा भी था, एकदम से मुझे क्लिक किया कि यहाँ हो सकता है सही फिट बैठ जाए. सो दैट्स व्हाई आई थॉट लाइक व्हाई
3: राइट आई अंडरस्टैंड वो जनरली पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों लगता है वाइफ को कि हस्बैंड ध्यान नहीं
2: देता. उसकी वाइफ उसके साथ करती होगी इसलिए वो सवाल कर रहा होगा. कि कोई शायद
3: आई मीन मैंने भी देखा है अराउंड. ऑन द अदर हैंड अच्छा ठीक है अगर मैं उसका जवाब दूं तो यस इन आवर सर्कल आल्सो वी डिस्कस कि हमें लगता है कि जो मम्मी हैं वो ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करती हैं बच्चों के साथ, विच इज व्हाई बच्चे भी उनके साथ ऐसा फील करते हैं कि ओके मम्मी के साथ तो कुछ भी चलेगा, बट पापा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाले लेवल पे आ जाते हैं. पापा इज लाइक ओके मतलब यू नो विद माय हस्बैंड आल्सो समटाइम्स इट हैपेंस दैट इफ आई एम नॉट अराउंड तो वो स्ट्रिक्टली बोल देंगे you have to sit here, you have to eat, there is no other alternative. And बच्चे कहेंगे मम्मी पापा के पास छोड़ के मत जाओ.
2: Right. Yeah, this is what I was after. But I hope कि जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा उनको जवाब मिल गया हो, थोड़ा सा उनको you know obviously completely उनके फेवर में नहीं था, but this is what जो आपने बताया वो भी कहीं ना कहीं fact है. But yes, thank you so much for call and आपका दिन जो है बहुत ही खूबसूरत रहे. Thank you.
3: Thank you so much and same to you. Thank you. Bye bye.
2: Well, ये थे रजनी जी जिन्होंने हमें बताया है इस बारे में और वो ऑब्वियसली ड्रॉ में तो शामिल हो चुकी हैं. बट यस यहाँ पे कोई है जो काउंटर जवाब देना चाहे बीइंग अ पेरेंट लाइक बीइंग अ फादर जो यहाँ पे अपनी टिप्पणी बताना चाहे कि नहीं भाई मैं बहुत अच्छे से करता हूँ. एंड मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मदर्स ही होती है वो सही करती हैं या यू नो फादर होते हैं या वो करते हैं या वो नहीं करते हैं. ऑब्वियसली डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली सिचुएशन टू सिचुएशन, क्योंकि मैं खुद अभी फादर हूं तो आई कैन अंडरस्टैंड. मेरे केस में फॉर श्योर खुशबू इज़ वेरी वेल टू डू सो. वो बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखती है, बहुत ही मतलब कंपेयर अगर करूँ मैं खुद से तो फॉर श्योर वो बेटर है. चलिए बात करते हैं. हेलो
4: हेलो
2: हाँ जी किससे बात हो रही है? सॉरी किससे?
4: सॉरी आई एम जस्ट कॉल पूजा.
2: ओके
4: आई एम जस्ट कॉलिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ माय हस्बैंड बिकॉज़ वो तो जॉब पे है अभी.
2: नहीं कोई दिक्कत नहीं बताइए.
4: हाँ जी आपका क्वेश्चन क्या था कि डैड अच्छे से ध्यान रखते हैं बच्चों का कि मम?
2: हाँ जी
4: तो ऑफ कोर्स मैं तो बोलूंगी मेरे केस में तो माय हस्बैंड डिड बेस्ट जॉब.
2: वाओ ऐसा क्यों लगता है? कोई इंसिडेंट बताओगे आप?
4: बिकॉज एक मदर्स होती है जैसे ऑफ कोर्स हर कोई कंपेयर करता है, आपका भी अभी न्यू बेबी आप भी कर सकते हो कि जैसे हर केसेस में मदर ज्यादा पोजेसिव होती है बच्चों को लेके, बट हमारे केस में पापा है. इवन हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स में सब बोलते हैं कि माय हस्बैंड लुक आफ्टर माय किड्स वेरी वेल मुझसे भी ज्यादा.
2: Wow.
4: तो अगर मुझे कहीं पर जाना होता है मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ कि he can look after them very well.
2: Wow, that's so cool यार, that's so cool. But thank you so much आपके कॉल के लिए. वैसे वो शख्स जो था ना जिसने सवाल किया था वो और कोई नहीं वो मैं ही था.
4: नहीं कोई बात नहीं आप भी ट्राई करो बहुत अच्छी मेरा बनेगी तो आपकी वाइफ दो साल बाद फोन करके बोले रेडियो पे कि माय हस्बैंड इज द बेस्ट डैड.
2: हाँ होपफुली ये टाइम बदले क्योंकि कल मेरा पहला पड़ाव था जो मेरे को लगता है काफी हद तक मैंने पास किया है.
4: हाँ जी हो जाएगा.
2: परफेक्ट थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए पूजा. यू हैव अ लवली डे. बाय
4: यू टू बाय.

0: लंचबॉक्स विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: दिवाली रामायण गाथा ब्रॉट टू यू बाय फॉर्चून फूड्स विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिन्स। फॉर्चून फ्यूल्स एवरी विन। बिग बाजार, योर वन स्टॉप दिवाली सुपरस्टोर। शॉप ऑनलाइन एट bigbazaar.co.nz। इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। विजिट indelibleholmes.co.nz। फाइनेंस वर्ल्ड, योर ट्रस्टेड फाइनेंस एडवाइजरी इन साउथ ऑकलैंड। लोटस फॉरन एक्सचेंज, गेटिंग मोर वैल्यू फ्रॉम योर मनी। अर्जुन सुपर मार्केट एंड फूड फॉर लेस, लोकेटेड इन न्यू लिन एंड बॉटनी। सोना संसार, परंपरा की चमक, त्योहार की पसंद। शाइन आउट विद स्पेशल्स। विजिट सोना संसार पापा टॉय एंड माउंट रॉस्किल। एंड रामायण मूवी रिलीजिंग दिस दिवाली थ्रू फोरम फिल्म्स।
3: माताओं और नगर के स्त्रियों ने स्वर्ण थाल सजाए और द्वार द्वार पर मंगल कल

0: वृद्ध क्या बालक सब प्रभु के दर्शन को आतुर थे।
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना,
1: और कानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: With BNZ Rapid Save, your money gets the salary it deserves. In the past year, Rapid Save paid out more interest per dollar saved than any other major bank. So give your money a pay rise, make it go to work. Because if your money's not collecting more interest, it's collecting less. Open a BNZ Rapid Save account today. Bank of New Zealand. Let's find a way. Based on advertised rates for personal savings accounts, available to customers age 18 years and over with the other major NZ banks. T's and C's and fees apply.
2: We can't predict an earthquake, but we can be prepared by practicing what we do. Wherever you are on October the 21st at 1:30 p.m, join the rest of the country and drop, cover, and hold. If you use a mobility aid, you can sit or lock before you cover and hold. And if you're in a coastal area, practice your tsunami evacuation hikoi too by heading inland or to higher ground. Sign up to find out all you need to know at shakeout.govt.nz.
3: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
4: Big Bazaar mein biggest range of puja ghar mil rahe hain. Pure marble murtis, copper murtis, gunmetal murtis, devi devtaon ke vastra, sabhi tarah ke haar and extensive range of puja items. Big range of console tables, mirrors, curtains, sofa covers. Veena and Lahore brand of musical instruments bhi available hain. Big Bazaar 302 Great South Road, Papatoetoe. Your one-stop shopping destination this Navratri.
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
7: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
8: Diwali bus aane hi wali hai. So the cosmetic clinic Sylvia Park has a special offer. Up se leke Monday tak, get 50% off selected skin and laser treatments. Skin rejuvenation se leke laser treatments tak. The experienced team will help create a program tailored for you. Aur sabse badhiya baat, aapki consultation bilkul free hai. Book online at thecosmeticclinic.co.nz. Selected treatments par 50% off on now. The cosmetic clinic Sylvia Park ki taraf se. Happy Diwali!
9: Fashion Landscape, जिनके नाम में ही फैशन हो, सोचिए उनकी टीम कितनी पैशनेट होगी. रिटेनिंग वॉल्स, कंक्रीट एंड पेविंग ड्राइवेज, फुटपाथ एंड कार पार्क्स, व्हीकल क्रॉसिंग्स, कर्बिंग एंड वॉकवेज, ड्रेनेज वॉक एंड न्यू बिल्ड, या फिर गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, कमर्शियल या रेसिडेंशियल, सब डिविजन्स या लाइफस्टाइल ब्लॉक्स, या चाहे हो प्लांटिंग, डेकिंग, फेंसिंग या पॉन्ड्स. ओवर 16 इयर्स लोकल एक्सपीरियंस. फैशन लैंडस्केप है लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट्स. कॉल 02107513330. फैशन लैंडस्केप, आपके आउटडोर स्पेस स्पेशलिस्ट्स.
10: लंच बॉक्स विद केतन.
11: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
10: इसके पीछे
11: हम
10: लंच के मंच पे दिल से दिल तक.
12: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
13: वेल यस, सबसे पहले तो अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं. हॉक्स बे में मिसिंग 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट के हेलीकॉप्टर पे सेफली रेस्क्यू किया गया. न्यूजीलैंड के हॉक्स बे रीजन में एक स्कूल ट्रिप के दौरान मिसिंग 17 साल के जो स्टूडेंट है उनको रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स ने सेफली रेस्क्यू कर लिया. स्टूडेंट ट्यूसडे इवनिंग को रुआहाइन फॉरेस्ट पार्क में स्कूल ट्रैम्पिंग ट्रिप के दौरान अपने ग्रुप से अलग हो चुका था। पुलिस और लैंड सर्च एंड रेस्क्यू वॉलंटियर्स ने सनराइज हट्स के आसपास पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया और बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को RNZAFK NH90 हेलीकॉप्टर जो एरिया में माउंटिंग फ्लाइंग ट्रेनिंग कर रहा था सर्च में शामिल हुआ। क्रू ने वाईपावर रिवर वैली के पास स्टूडेंट को लोकेट किया और हेलीकॉप्टर से विंच करके सेफली ऊपर उठाया। स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स से मिलवा दिया है और पुलिस के मुताबिक वो थोड़ा वेट और कोल्ड थे लेकिन अलर्ट थे, बात कर रहे थे और उसे कोई इंजरी नहीं हुई है टचवुड। रेस्क्यू के बाद हेलीकॉप्टर क्रू ने ग्राउंड पर सर्च कर रहे वॉलंटियर्स का भी वहाँ से उनको भी वहाँ से निकाला। वैसे इस ऑपरेशन में पुलिस एयरफोर्स सर्च एंड रेस्क्यू वॉलंटियर्स और स्कूल स्टाफ ने मिलकर काम किया जिससे एक मिसिंग स्टूडेंट को रात भर जंगल में रहने के बाद सेफली घर लौटने का मौका मिला।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
5: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं है उसको.
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया
5: अभी. ब्रांड हो गया ना.
4: रुस्बे के बाल लगे उस.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. It's a very good time to go electric with Winger Motors. Limited time ke liye drive away in a new Jaiku J5 EV Summit. 0% interest or no deposit ke saath over 12 months. Experience all the comfort.

0: Jenny.
1: Kiara, namaste. Welcome back. You are listening to Lunchbox. Thank you so much for joining in. अगर आप मुझे 12 बजे से सुन रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे यस, ये कारवा चलता रहेगा. सैंडी विल बी ज्वाइनिंग फॉर कॉफी ब्रेक राइट आफ्टर दिस एंड रोज भी उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो. बड़े भी के लिए आप एंजॉय करिए कुड़िये नी तेरे बाय यू यू हनी सिंह एंड हरजोत कौर की आवाज में ये गाना सुनिए. बट यस, इस आर में स्पोर्ट्स की खबरें भी लेके आने वाला हूँ. कल क्रिकेट मैच हुआ था बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड इंडिया. क्या हुआ था देखते हैं, बात करते हैं उस बारे में. हार चुकी वैसे इंडिया तो, बढ़िया तो उसके बारे में बात होंगी. बट हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड होने वाला है यहाँ पे. आई एम वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी एक्साइटेड.
2: बचाओ क्या,

0: वेल यस, न्यूजीलैंड में जनरल इलेक्शन 7 नवंबर 2026 को होने वाले हैं, यानी कि लेस देन अ मंथ. जी हाँ, लेस देन वेरी वेरी मंथ, यानी 20-25 दिन ही बचे हुए हैं. और पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को अपनी पॉलिसीज और प्रोमिसज के बारे में बता रही हैं. 11 अक्टूबर की वन न्यूज इलेक्शंस कवरेज में नेशनल पार्टी की फाइनेंस स्पोक्स पर्सन निकोला विलिस और लेबर की फाइनेंस स्पोक्स पर्सन बारबरा एडमंड के बीच Q&A हुआ था. दोनों पार्टीज के बीच रिटायरमेंट, कीवी सेवर और ओल्डर न्यूजीलैंडर्स के हाउसिंग जैसे इश्यूज पर डिस्कशन हुआ, जबकि पेंशन एज को लेकर उनकी जो अप्रोच थी वो थोड़ी थोड़ी अलग थी. इलेक्शन कैंपेन में एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है. लेबर ने स्कूल यूनिफॉर्म की कॉस्ट कम करने के लिए कंपल्सरी ब्रांडेड यूनिफॉर्म आइटम्स को लिमिट करने का प्रपोजल दिया है. दूसरी तरफ नेशनल नेशनल ने 11 कंप्लीट करना कंपलसरी बनाने का प्रपोजल अनाउंस किया है अगर पार्टी दोबारा गवर्नमेंट बनती है तो. अब वोटर्स के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो पार्टीज के प्रॉमिसेज, उनकी फंडिंग और उन पॉलिसीज का अपनी डेली लाइफ पर पॉसिबल इम्पैक्ट समझें और फिर अपना डिसीजन लें. व्हाट यू थिंक? लंच बॉक्स विद केतन. हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
1: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
1: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
1: बस इतना ही.
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
4: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. Hi, मैं हूँ गुरु कंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
5: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800-564-424.
6: I mean, Barcelona, wow. The Sagrada Familia just blew me away. Beautiful, really. And the food was unreal. We found this little tapas place by accident, ended up staying half the night singing.
7: In September, Ed's luggage went missing en route to Europe, thanks to AA Travel Insurance. That wasn't the story he came home with. AA Travel Insurance. On with the trip. Travel insurance issued by Zurich Australian Insurance Limited. Illustrative example only. Limits, sublimits, conditions and exclusions apply. Consider your own needs and read the policy wording.
8: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
3: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-288. Lotus Foreign Exchange. Getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip या replay
3: एस्केप तो कर नहीं सकते हैं बिकॉज ये मौके आपको देंगे कि कहां कहां आप जा सकते हैं फॉर दिवाली। बट यस, उससे पहले आपको बता देता हूं, नॉर्थ शोर दिवाली जो कि होने वाली है स्टेफेनोज फाइनेंशियल सॉल्यूशन एंड टीम पुनिश एंड एना फ्रॉम बाफुड एंड थॉमसन, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं नॉर्थ शोर दिवाली आप सभी के लिए लेके आए हैं सैटरडे 24 अक्टूबर को 12 बजे से रात के 9 बजे तक स्मेल्स फार्म टाकापुना में। Enjoy career dance performance throughout the day with fun activities for the kids, delicious food stall, festival, festive shoppings and much more. And yes, 9 baje ke baad, at 9 baje ke baad, actually not 9 baje ke baad, but at 9 baje, get ready for a spectacular fireworks display. Free entry and free parking. Well, दिवाली की बात कर रहे हैं तो एक और मौका आपको दे देता हूं जहां पे आप जीत सकते हैं $1,000 के worth of new world vouchers. ये लेके आए हैं लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कैंडोला, अ हाउस होल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कॉल 0800 लॉजिक जी। वेल, फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून विन योर शेयर ऑफ 5000 में ये रहा $1,000 का कंपटीशन जहां पे आपको मुझे लॉजिक लिख के स्पेस अपना नाम मुझे भेज देना है 5599 पे, बिकॉज दिवाली विद हम आप सेलिब्रेट करने वाले हैं फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून। एंड यस, ड्रॉ जो है वो होगा 30 अक्टूबर को, सो मेक श्योर आप याद रखें उस दिन भी, प्लस अभी जितना आप ट्राई कर सकते हैं जितने टेक्स्ट मुझे भेज सकते हैं ताकि उतने चांसेस आपके बढ़ेंगे। एंड यस, कंपटीशन जो है उसके टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं hum.trova.nz हमारी वेबसाइट पे जाके। एंड यस, अभी से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है टू अप्लाई फॉर दिस कॉम्पिटिशन, सो यस शुरू हो जाइए, अभी देर किस बात की।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, कल का मैच हुआ था इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के, और इंडिया हार चुकी है दूसरा मैच, और इसके साथ जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, वो 2-2 हो चुकी, यानी इक्वलाइज हो चुकी, यानी कि अब जो फाइनल मैच होने वाला है बेंगलुरु में सैटरडे को इंडिया के टाइम के हिसाब से और न्यूजीलैंड के टाइम के हिसाब से, ऑफकोर्स रात के 2:30 बजे होगी, संडे होगा, सो यस, तब पता पड़ेगा कि सीरीज का विजेता कौन है। टी ट्वेंटी के 3 बार चैंपियन इंडिया का या फिर 2 बार चैंपियन वेस्ट इंडीज का, सो लेट्स सी। पर यस, इस मैच की अगर बात करें तो शुरुआती ठीक ठाक रही, अच्छी रही। संजू सैमसन ने एक्चुअली 56 रन बनाए, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम बाद चले हैं ये, और अभिषेक शर्मा ने उनका साथ दिया, कुछ खास नहीं, ठीक ठाक। और स्ट्राइक रेट वॉज लाइक लिटरली शॉकिंग फॉर हिम, यूजली 200 के पार ही होती, अभी तो 100 के पार थी, बस 120 पे ही बनाए। उसके बाद ईशान किशन 6 पे आउट हो गए, श्रेयस अय्यर 16, तिलक वर्मा ने 43 बनाए, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 41 रन बनाए, और जवाब में 223 पे ऑल आउट हो गई थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने विशाल स्कोर खड़ा किया था साई होप के 102 रन के मदद से, और शर्फेन रुथरफोर्ड के 49 रन से, कि बदौलत वेस्ट इंडीज 247 3 विकेट खोकर बनाने में सफल रही। जवाब में इंडिया वाज लाइक ध्वस्त 223। सो लेट्स सी अभी आखिरी मैच कैसा रहता है। पर यस, उसके अलावा और भी मैचेस हैं, उस पर भी थोड़ी नज़र डाल देते हैं। मैन की अगर बात करें तो आज ओमान वर्सेस कनाडा के बीच में मैच है, उसे आप एंजॉय करिए, और कल अंडर 19 के कुछ मैचेस हैं। वुमेन्स की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया वर्सेस स्वीडन के बीच में भी मैच है आज, तो उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम। 1, 2, 3

वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं कुछ अपडेट्स की। बॉलीवुड में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग से याद आया, कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी नज़र डाल देते हैं एंड देन यस उसके बाद कुछ अपडेट्स भी देने हैं आपको, तो आप बस बने रहिए। वैसे यस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अभी कुछ फिल्में रिलीज हुई थी। री रिलीज क्या है कल हो ना हो को, अभी तक तो खैर कुछ अपडेट आया नहीं कि कितना स्कोर किया है उन्होंने। सिर्फ अभी जो बता रहा हाल फिलहाल वो है 0.002, यानी कि कितना हुआ ये 20,000 दो लाख मेरे ख्याल से 20,000 बापरे, ये वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग यार। ये तो काफ़ी कल्ट मूवी है और उसके बावजूद ये इतने कम। प्रेम कीटाणु 1.41 का स्कोर किया है करोड़ का INR से, जो कि फ्लॉप रही है। उसके बाद द विवान 59.85 उनका पेंडिंग बता रहा है। लव लॉटरी 0.158 वो अभी फ्लॉप हो चुकी है। सो यस और भी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। कुछ फिल्में रिलीज होने वाली हैं इस वीकेंड, लेट्स सी। खोसला का घोसला 2 जो है वो भी ये पोस्टपोन हो चुकी है, मार्च में रिलीज होने वाली है अब नेक्स्ट ईयर। जी हाँ, और एक नया गाना भी आया है, दो दिन की जिंदगी, गन मास्टर, इमरान हाशमी भी है उसमें, जिनीलिया और देशमुख भी हैं उस फिल्म में। सो यस 16 अक्टूबर यानी कि कल के दिन प्रहार द उज्ज्वल निकम स्टोरी ये रिलीज होने वाली है, आप इसे देख सकते हैं। नई नवेली ये यामी गौतम है इसमें, 16 अक्टूबर कल के दिन रिलीज होने वाली है, और नेक्स्ट वीक उड़ता तीर रिलीज होने वाली है। बट यस द मैनी मोर एक्साइटमेंट फॉर रामायणा, जी हाँ रामायणा जो कि पार्ट 1 रिलीज होने वाला है 5 नवंबर को, उसको भी बहुत ही कम टाइम बचे हैं। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। 80s के रेट्रो गाने।

0: Visit abcsolutions.co.nz for more details.
1: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं. प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स. बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स. वीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है. बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापटोईटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि.
2: Here for the first long weekend in ages, when you bust out the jandals, you dust off the chili bin and take that first dip. Just the toes, of course. Whatever you're planning for the long weekend, see you at Foursquare. What'll it be today?
3: Diwali bas aane hi wali hai. So the cosmetic clinic Sylvia Park has a special offer. Up se leke Monday tak, get 50% off selected skin and laser treatments. Skin rejuvenation se leke laser treatments tak. The experienced team will help create a program tailored for you. Aur sabse badhiya baat, aapki consultation bilkul free hai. Book online at thecosmeticclinic.co.nz. Selected treatments par 50% off on now. The Cosmetic Clinic Sylvia Park ki taraf se. Happy Diwali!
4: Non-stop Bollywood.
5: Jo bhi karte shiddat ke saath karte
4: hain. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
6: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
4: Iske piche. Hum.
7: Just a reminder, podcast और इनकी बात कर लेते हैं. Election special on Drive Thursday को, यानी कि आज के दिन Aotearoa speaks. आज आने वाले हैं Opportunity Party से Quilly Wong, जो कि conversation करेंगे Sandian Rusbe से regarding the party की policies, कुछ political alignment and vision New Zealand के. अगर इसके इस podcast को सुनना, definitely सुनना पड़ेगा यार, because election है, देश की बात है, तो definitely आपको सुनना चाहिए. और अगर कुछ सवाल जवाब है तो आप drive लिखिए और सवाल अपना लिख के 5599 पे भेज दीजिए, एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू गिव द आंसर फॉर दैट. एंड अगेन, दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, तो इस दिवाली आप एक्सपीरियंस करें टाइमलेस स्टोरी ऑफ रामायण विद हम. तीन टाइम पे चलती है, एक तो सुबह 8:20 पे, फिर 1:30 पे, एंड देन 6:45 पे. सो यस, आप एक्टिव रहिए ताकि आप उसे भी एंजॉय कर सकें. एंड साथ में एक मैसेज है, उसे भी मैं पढ़ लेता हूँ. This mental health awareness week, take a moment to reach in and notice how you are feeling. Changes in sleep, mood, appetite or routine can be signs that emotional support may help. You can also reach out to someone you care about with a simple check-in. Asian Family Services provide free, confidential emotional support through Asian Helpline on 0800-862-342. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111.
4: Dil se dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
8: Make some noise!

0: यू बाई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: थैंक यू सो मच फॉर अ डे बहुत ही बढ़िया आज का दिन भी बस ये साहब बने रहिए सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली फॉर द कॉफी ब्रेक और अब मैं निकलता हूँ आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम फ्राइडे के दिन थोड़े धमाकेदार बातें करेंगे अच्छे अच्छे गाने और भी धमाकेदार पार्टी वाले गाने चलाएंगे सो बस आप बने रहिए सुनते रहिए हम रेडियो ओनली ऑन 104.2 FM या फिर ऑफकोर्स आप रो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आप हमें अनलिमिटेड की तरह से बिना किसी झिझक के सुन सकते हैं बाय बाय टेक केयर एंड लव यू

अरे गुट में स्वैग है, अरे गुट में स्वैग है, अरे गुट में स्वैग है, अरे गुट में स्वैग है। बिन ट्राई रहे फ्लाई बॉय, ये हम लाइफ पे हाई बॉय, ये

अरे गुट में स्वैग है अरे गुट में स्वैग है

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
3: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
4: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-44-2288. Lotus Foreign Exchange. Getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
5: To town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
6: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
7: Yes, Bebo.
6: Catch kya hai?
7: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
6: I still can't believe it. No catch.
7: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
8: PNC supply.
9: Diwali bas aane hi wali hai. So the cosmetic clinic Sylvia Park has a special offer. Up se leke Monday tak, get 50% off selected skin and laser treatments. Skin rejuvenation se leke laser treatments tak. The experienced team will help create a program tailored for you. Aur sabse badhiya baat, aapki consultation bilkul free hai. Book online at thecosmeticclinic.co.nz. Selected treatments par 50% off on now. The Cosmetic Clinic Sylvia Park ki taraf se. Happy Diwali!
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो. बोली बस मेरा फोकस है.
11: हाँ, अच्छा
10: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz.
13: एक घर एक दिवाली और एक लिस्ट जो खत्म ही नहीं होती. दिवाली डेकोरेशंस वाटर क्ले और इलेक्ट्रिक दियास आइडल्स पूजा सामग्री करवा थाली सेट और किचन में हीरो की एंट्री. प्रेशर कुकर ट्राइप्लाई कुकवेयर स्टील यूटेंसिल्स एनजेड सर्टिफाइड गैस स्टोव तंदूर डिनर सेट्स ब्लॉकबस्टर सेल अप टू 35% ऑफ प्लस फ्री ऑकलैंड डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $50. गुरुमार्ट घर का सामान लो प्राइसेस हाई क्वालिटी हमेशा.
4: गुरुमार्ट 154 कोलमा रोड पापेटॉय या gurumart.co.nz.
14: Diwali is here aur Nocho mein hoga roshni ka jashn, bigger and brighter than ever. Stefano's Financial Solutions with Team Punish and Anna from Barfoot and Thompson presents Nocho Diwali Festival of Light at Smales Farm Takapuna, Saturday 24th October 12 noon to 9 PM. Dance performances all day, fun activities for the kids, yummy khana and shopping. Raat 9 baje spectacular fireworks, free entry, free car park. Nocho Diwali, celebrate the light with your people.
15: Time check.
16: Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
15: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
17: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The nurses' organisation has waded into a debate over the rescheduling of some children's cancer treatment at Starship. Spokesperson Kerry Nuku says Health New Zealand's claim it's managing shortages at a time of high demand doesn't wash.
0: Starship services the needs of all New Zealanders from around the country, so we should always be making sure that those specialty areas are never understaffed.
17: The Minister's office says while a handful of chemo sessions have been delayed by less than a week, no child has missed out on care. New Zealand First is promising to throw the Coast Guard Service a financial lifeline if re-elected. It wants to boost state funding by $12 million a year. Winston Peters says new boats and equipment are needed.
1: I just heard of a base that has got a lifeboat, but their tractor won't go, and I thought, this is extraordinary. How do you mean the tractor doesn't go? As long as it doesn't go, the more they haven't got a life-saving service.
17: Brian Tamaki has been charged with three counts of inciting racial disharmony. The Destiny Church leader outright rejects the allegations. And the Air Force has released more details about its mission to find a teen who went missing on a school tramp. The Taradale High student was rescued in North Island bush yesterday. A flying crew was training in the area when they were retasked to the search and rescue. They posted pictures of the moment they spotted the boy on the ground and when he was winched to safety. To sport, three changes to the All Blacks starting 15 to take on the Wallabies in the second Bledisloe Cup on Saturday. Coming in are prop George Bauer, lock Fabian Holland and wing Josh Morby. And to Rugby League with Machinery House in a league of their own. From 10:05 tonight, the Rugby League World Cup kicks off in Sydney. There's a chance of a shower or two. The Kiwis have not beaten the Kangaroos in Australia since 2015.
15: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
8: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.5 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. थोड़ा क्लाउडी है आज का डे. सनसेट 7:38 पर.
15: The beat of Bollywood.
18: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं
15: है. Coffee break with Sandy.
8: 3:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हैव मी अलोंग विद सैंडी और 4 बजे तक मेरा और आपका साथ है. 4 बजे के बाद यहाँ पे मेरा साथ रुजबे के साथ हो जाएगा इन द ड्राइव शो. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? यू नो कल इतनी गर्मी फील हो रही थी, लाइक जैसे कि फुल समर आ चुकी होती है. एंड कट टू आज का वेदर देखो, कैसा मिक्स वेदर हो गया. निकल गई ना जैकेट सबकी. एंड अभी आने वाले दिनों में तो कल एक्चुअली में तकरीबन ओवरनाइट का 6 डिग्रीज 5 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाने वाला है. सो या सैटरडे गोना बी स्टिल बेटर. सैटरडे संडे लुक्स अमेजिंग दो. सो या लेट्स सी वो कैसे क्या होता है आगे. बट या इलेक्शन ईयर है गाइस और आज हम 5 बजे के बाद अपॉर्चुनिटी पार्टी के लीडर जो है क्यूले वोंग उनसे बातें करने वाले हैं. बहुत सारी बातें करने वाले हैं. आपने काफ़ी सवाल यहाँ पे पूछे, ये सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे. सो मेक श्योर कि आप ट्यून इन ज़रूर कर रहे हैं. 5 बजे के बाद ये कन्वर्सेशन रहने वाली है. इलेक्शन में अगर आपने अभी तक अपना नाम रजिस्टर नहीं किया है, इफ़ यू आर एलिजिबल टू वोट, मेक श्योर कि अपने आप को आप एनरोल ज़रूर करवा रहे हैं. इफ़ यू गो टू वेबसाइट vote.nz, इट्स वेरी इजी टू एनरोल. और इस बार जो जनरल इलेक्शंस है ये 7 नवंबर को हो रही है, तो आपको 25 अक्टूबर तक

15th अक्टूबर है, अगर आज आपका बर्थडे है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आज आपकी एनिवर्सरी है, अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। वैसे न्यूज़ में ये है, यू नो रिसेंटली आपके साथ आर्टिकल शेयर किया था जहाँ पे अ लेडी इज स्टक इन कुक आइलैंड बिकॉज उसको ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिल रहा ताकि वो अपनी होम कंट्री में जा सके। सो इसलिए काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से वो कुक आइलैंड में ही है। इमिग्रेशन लॉयर, उनका ये कहना है कि वुमेन स्टक इन कुक आइलैंड फॉर 3 years इज़ अ केस विच मे बी टू हॉट टू हैंडल फॉर डिसीजन मेकर्स। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड जो है, दे विल नॉट अलाउ हर टू ट्रेवल हेयर बिकॉज इट डाउट्स कि उसके लिए इंटेंशन है टू फ्लाई स्ट्रेट टू अर होम कंट्री विच इज़ इन साउथ एशिया। वो इंटेंशन के ऊपर उनको डाउट है इसलिए। सो दिस लेडी टोल्ड द कुक आइलैंड न्यूज़ की हर सिचुएशन वॉज अ साइकोलॉजिकल नाइटमेयर काइंड ऑफ। सो डिस्पाइट काफ़ी असिस्टेंस मिल चुकी है कुक आइलैंड के इमिग्रेशन से, नाइदर न्यूजीलैंड नॉर ऑस्ट्रेलिया हैज़ अप्रूव्ड अ ट्रांजिट वीज़ा फॉर हर रिटर्न होम। सो कुक आइलैंड के जो प्रिंसिपल इमिग्रेशन ऑफिसर है, उन्होंने इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को लिखा था 11 अप्रैल को लास्ट ईयर में कि असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए बाई हैविंग समवन एस्कॉर्ट द साउथ एशियन नेशनल टू ऑकलैंड एयरपोर्ट अंटिल शी बोर्डेड हर कनेक्टिंग फ्लाइट। वेरी ईजी ना, कि अगर डाउट है कि यहीं पे रह लेगी, आगे नहीं जाएगी वो, तो उसको असिस्ट कर सकते हैं जब तक वो फ्लाइट नहीं ले रही है सिंगापुर के लिए। सो उन्होंने बोला कि जो प्रैक्टिस है, काफ़ी सिमिलर केसेस के साथ ऐसा डील किया गया है। ही सेड इमिग्रेशन सीम टू फियर शी वुड क्लेम असाइलम व्हेन शी लैंडेड इन न्यूजीलैंड बिकॉज शी हैड डन दिस बिफोर। सो पहले उसने असाइलम के लिए क्लेम किया था यहाँ पे न्यूजीलैंड में, तो उनको ये डर है। एंड अगर कोई उस समय पर ऐसा क्लेम कर देता है तो आप उनको ऑटोमेटिकली उसी समय रिजेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू कंसीडर फ्यू थिंग्स। सो हियर काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन हो रखी है। सो इट्स स्टिल ऑन गोइंग थिंग विच इज़ अभी एवरी डे इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट्स हो रही है। तो लास्ट वॉज ओनली दिस वन कि उसको असिस्ट किया जाए जब तक वो बोर्डिंग नहीं करती है, लेकिन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का यही डर है कि शी विल सीक असाइलम अगर वो एयरपोर्ट पर भी लैंड होती है। डर का माहौल है इस लेडी का। बट यार 3 years यार शी इज स्टक इन कुक आइलैंड। बेस्ट ये भी हो सकता है उसका खर्चा कौन उठाएगा ना, प्राइवेट जेट ले जाओ वहाँ पे, अपनी होम कंट्री में पहुँचा दो। बट यहाँ लेट्स सी इसके ऊपर और भी जो है अपडेट क्या आती है। वैसे इसी सिचुएशन के अराउंड एक मूवी भी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। Coffee break with Sandy. Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Streaming on Rover.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
5: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
6: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
5: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
7: Busy day. Looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.
8: T's and C's apply.
9: Like the smell of grass in the morning? Trade Chester has been long become legendary. From seed to scarifiers, mowers to mulches, we've got everything you need to turn that embarrassing patch of Kaikoura into a golf green this summer. Want to be a lawn legend? Head to Trade Chester today.
10: मैं हूँ हरीश लोढ़िया. दिवाली की धूम एट सोना संसार. नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है. सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है. लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है. डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस. सोना संसार 190 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटोए कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड. हमारा फोन नंबर 629-3333. फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz.
11: Glad I got my enrollment sorted the other day.
12: See, mate, I told you it was easy.
13: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
12: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
13: Really? What if I miss it?
12: Well, your vote won't count for this year's election.
13: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
14: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
15: Fly direct from Auckland to Adelaide with Qantas from October 30. Soak up summer in the Barossa. Explore the boutique city of Adelaide. Shuck oysters on Kangaroo Island and discover why South Australia is the ultimate food and wine getaway. Just next door. Fly with Qantas and enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and 30 kilos of checked baggage included. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Schedule subject to change. T's and C's apply.

0: 3:20 हो चुके हैं और जिस मूवी के बारे में बात कर रही थी विच इज क्वाइट रिलेटेबल टू दिस लेडी जो कि अभी स्टक है कुक आइलैंड्स में. वेल एग्जैक्टली तो वैसे नहीं थी इस बंदे की कहानी, लेकिन रियल लाइफ के स्टोरी के बेस्ड पे ये मूवी बनी थी, द टर्मिनल. टॉम हैंक्स की ये मूवी है एक्चुअली में, एंड बहुत सही मूवी है. ये मूवी में जो करेक्टर प्ले किया है टॉम हैंक्स ने, बेसिकली वो ट्रैवल करता है अपने कंट्री से न्यूयॉर्क में, एंड जब वो एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो उसको वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ पता चलती है कि उसकी कंट्री में कूप हो चुका है. नाउ उस कंट्री में वो इमिग्रेशन पास नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है यूएस से, एंड हिज पासपोर्ट इज़ इनवैलिड एंड ही लीगली कैन नॉट एंटर द यूएस. तो वो काफ़ी दिन वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही रहता है. इस मूवी का नाम द टर्मिनल है. 2004 की एक्चुअली ये मूवी है. अगर कभी मौका मिले तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, बहुत सही मूवी है. और एक ऐसा एक्चुअली में हुआ था एक के साथ, मेहरन करीमी जो कि एक ईरानियन रेफ्यूजी थे हु लिव्ड इन टर्मिनल फॉर ईयर्स एक्चुअली, तो उनकी स्टोरी से इंस्पायर्ड होके इस मूवी को बनाया गया था.
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
3: मैं लाऊं अपना ए गेम.
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पर सुन रहे हैं। कुछ इवेंट्स आपके सुपर सिटी में हो रहे हैं जिसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि अंबेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब आपके लिए 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चर टूर्नामेंट लेके आ रहे हैं। दो दिन का इवेंट रहेगा 24th एंड 25th को, जहाँ पे फ्री एंट्री है, अल्कोहल फ्री इवेंट है ये, बट यू गेट रेडी फॉर अ फैंटेस्टिक वीकेंड बिकॉज वन ऑफ द डे में जो मेजर हाईलाइट है वो है पंजाबी सिंगर माशा अली, ये लाइव परफॉर्म करने वाले हैं 24th अक्टूबर को। सो ये जो टूर्नामेंट है इसमें वेरियस स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स भी है, जिसमें कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, ये सब कुछ है। सैटरडे 24th अक्टूबर एंड संडे 25th अक्टूबर आप भी पहुंच सकते हैं कॉलिन लॉरी फील्ड्स, जो कि 47 रेनॉल्ड्स रोड पुकीकोही में लोकेटेड है। फ्री फॉर एवरीवन। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रदीप कुमार से बात कीजिए 021-238-5948 पर।

0: आप दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Mytutan Mega Henderson अब weekdays पे सुबह 6 बजे से खुला है। Building supplies, timber, power tools और trade essentials सब कुछ साइट पे जाने से पहले ही उठा लो। Get in, get sorted and get the job done earlier. Open from 6 a.m. Mytutan Mega Henderson.
2: The big sale is on now at Beds R Us with amazing deals on selected sleepyhead beds like 60% off Swiss Tech Precision Queen Size now 3499. The big sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
4: तो क्या करें?
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
8: A message for all parents. Kids age 12 and under can now ride their bikes on footpaths, and parents or caregivers can ride with them. Remember to look out for children on bikes when driving in and out of driveways. Learn more at nzta.govt.nz.
9: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
10: दिवाली आई, खुशियां लाई, BFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, BFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं। 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियां बढ़ाएं, BFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च BFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।
11: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड पापटोईटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि।
12: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
13: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल, Chef Alex?
12: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
13: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
12: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
13: 100% authentic and pure as mother's love.
14: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
15: Yes, Bebo.
14: Catch kya hai?
15: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
14: I still can't believe it. No catch.
15: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
16: PNC Supply.
17: And phir Mrs. Singh se maine pucha, "Enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho?" Boli, "Bas, mera focus hai."
18: Achha,
17: batao, tuhanda focus. Sada kuch nahi.
18: Mrs. Singh.
19: Are pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne.
2: Modern classic shaker style kitchens, Focus Kitchens, Unit K 30.

0: कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे अपने बच्चों के साथ ढेर सारे जगह पे आप जा सकते हैं, यू नो, अगर आने वाले दिनों में, बिकॉज दिस वीकेंड एंड कमिंग लॉन्ग वीकेंड को ना भी सनी वीकेंड ऐसा लग रहा है देखने में। तफा रनुई रीजनल पार्क इज वन प्लेस जहाँ पे आप जा सकते हैं। वाइट सैंड बीचेज है वहाँ पे, ग्रीन कंट्री साइड है, कोस्टल वॉकिंग ट्रैक्स भी है वहाँ पे, एंड नेटिव बर्ड लाइफ तो खैर है ही वहाँ पे। ये जो पार्क है वहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स भी है, एंड अगर आपको स्विमिंग अच्छी लगती है तो स्विमिंग के लिए काफ़ी एरिया है, एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है वहाँ पे। सो ग्रेट ऑप्शन है फैमिलीज के लिए, कपल्स के लिए, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के लिए हु जस्ट वॉन्ट टू एस्केप द सिटी। सो वहाँ पे एक इकोलॉजी ट्रेल है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.3 किलोमीटर एंड इज लिस्टेड एट अराउंड 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में वो वॉक आप हाइकिंग वो भी कर सकते हैं। यू कैन पैक योर वॉकिंग शूज, सन प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स, एंड वाटर एंड फूड विद यू, एंड हैव अ गुड पिकनिक ओवर देयर। पार्क के अलर्ट आप ज़रूर चेक करना, टाइट कंडीशंस, सेफ स्विम इंफॉर्मेशन ज़रूर चेक कीजिए। सेफ स्विम जो वेबसाइट है वहाँ पे अक्सर अपडेट होती रहती है इंफॉर्मेशन की, कौन सी बीच पे इस समय पर स्विमिंग करना सेफ है या फिर नहीं सेफ है। सम ट्रैक्स आर अनइवन वहाँ पे, एंड द पार्क प्रोहिबिट डॉग्स एंड अदर पेट्स, तो ये अपने ध्यान में आप रखिएगा। सो तफा रनुई रीजनल पार्क के बारे में बात कर रही हूँ। इट्स अ वाइट सैंड बीच। अगर आपको ओवर द वीकेंड निकलना है तो कहीं ज्यादा दूर भी नहीं, बट इट्स गोना बी अ गुड गेटवे।
1: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800
0: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। में सुनते हैं सूरज बरजातिया के आने वाली मूवी का गाना। तो सूरज बरजातिया की जो आने वाली मूवी है, आयुष्मान खुराना के साथ ये मूवी वो कर रहे हैं, ये प्रेम मोलिया। सो इसी मूवी का ये टाइटल सॉन्ग है, एंड इमेजिन सूरज बरजातिया की मूवीज जो अभी तक हम देखते आए हैं वैसे ही ग्रैंड सेट्स इस मूवी के भी लग रहे हैं, श्रेया घोषाल एंड निहाल की आवाज़ में।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.5 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. सनसेट आज का 7:38 पर.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: चार बज चुके हैं. यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम.
1: आफ्टर अ डे रुस्बे.
4: नहीं ना, अभी दो दिन हो गए सैंडी यार.
1: हाँ, परसों तुम टाइम पे नहीं थे.
4: परसों तो मैं था ही नहीं यहाँ पे. फिर कल मेरे को
1: ऑलमोस्ट नहीं थे.
4: हाँ, फिर कल मैं नहीं था तो फिर अभी आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हो गया ना.
1: हो गए
4: 8 घंटों के बाद.
1: 48 आवर्स के बाद बेसिकली.
4: नहीं नहीं, मतलब 8 घंटे आई वाज नॉट ऑन एयर ना, रफली ऐसे पकड़ लो आप.
1: हमारे आवर्स काउंट होते हैं ऑन एयर के आवर्स ही.
4: Yeah.
1: So how are you, Rusbe?
4: I'm great, yeah, Sandy. How are you doing?
1: Good, good. Yeah, weather का ना, मैं कल इतनी खुश थी ना जब मैं आई. I was like, क्या यार गर्मी, मस्त गर्मी. एक सिंपल टी शर्ट में आई थी मैं कल यहाँ पे. मस्त वेदर
4: था. बहुत विंडी है.
1: और आज विंडी है, बारिश है. ओवरनाइट 9 डिग्रीज रहेगा. कल ओवरनाइट 6 to 5 डिग्रीज जाने वाला है.
4: फिर से
1: आई नो.
4: ओह माय गॉड. हम लोग लिटरली डिस्कस कर रहे थे घर पे और बोल रहे थे कि यार इट्स टाइम टू चेंज आवर ब्लैंकेट्स, यू नो, लाइक गेट द समर ब्लैंकेट्स ऑन.
1: कपड़े निकालना, वो सब करना.
4: कपड़े निकालना,
1: आई मीन कपड़े भी वार्डरोब से चेंज करने होते हैं ना.
4: राइट राइट. तो एनीवे, तो अभी अच्छा हुआ ये पता चल गया. तो फिर अभी वी हैव टू डिलेट, बट ये होगा. मुझे लग रहा है दिसंबर तक ऑन एंड ऑफ वी विल हैव वन और टू सच नाइट्स.
1: एक डुबे तो बाहर रहने ही वाला है.
4: हां, एक रहना ही चाहिए.
1: या
4: दिसंबर में तक, दिसंबर तक.
1: इवन मैं कल वही बात कर रही थी कि मेरे को लगता है कि हम पूरी जैकेट्स कभी भी अंदर घर के, मतलब सूटकेस या कहीं भी हम नहीं रख सकते.
4: मतलब एक पफर जैकेट जो होता है लाइट वाला, वो रहता ही है बाहर हमेशा. क्योंकि समर्स में भी इवनिंग्स में तो ठंड लाइक
1: हो ही जाती है कभी कभी. या और कभी कभी ऐसा विंडी वेदर हो, रेनी हो, तो फिर ऐसा सर्दी वाला ही रहता है.
4: मुझे पता नहीं क्यों मुझे इस कंट्री में हाफ स्लीव शर्ट्स पहनना मुझे कंफर्टेबल ही नहीं लगता.
1: मुझे लगता है समथिंग इज मिसिंग.
4: मतलब ऐसा लगता है कि कभी भी ठंड लग सकती है. लाइक भले आपको कहीं पे भी जाना हो, मतलब इंडोर भी अगर कहीं जाना हो, तो भी हाफ स्लीव शर्ट का आप रिस्क नहीं ले सकते हो. थिएटर में जा रहे हो तो ठंड लग सकती है. कहीं और जा रहे हो, ऑडिटोरियम में जा रहे हो, ठंड लग सकती है.
1: या
4: तो इट्स ऑलवेज लाइक, आई थिंक एंड दैट्स व्हाई दे से ना, लेयर क्लोथिंग यहां पे बहुत रिकमेंडेड है.
1: ट्रू ट्रू.
4: फॉर अ रीजन.
1: सो अपने पास कुछ ना कुछ ऐसे साथ में कैरी करके जाओ. एनीवे, वैसे आज ड्राइव शो में आपको फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा. रुस्बे
4: जी,

0: impressive.
1: Yeah, and for a first time politician.
0: For a first time politician.
1: Like first time. 100%. वो हमेशा side में रही है politics में.
0: Yeah.
1: But first time she's been like full like party leader.
0: Yeah.
1: So yeah, incredible. Yeah, उनके साथ बात करने का मौका मिल रहा है हमें. We're going to talk to her, ask her about what policies, where do they stand actually, कहाँ पे उनका standing होता है. ये सारी चीज़ है क्योंकि ये सारे questions हैं जो बहुत unclear है काफी लोगों के लिए ना.
0: Unclear है और मेरे को लगता है कि हमारे लिए जानने बहुत जरूरी है इसके answers और मुझे लगता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है अभी बिकॉज हमारा उसमें बहुत फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है. या
1: अगर इंटरेस्ट लेते तो फायदा हो सकता है.
0: या सो यू नो मेक श्योर कि यू रीड द पॉलिसीज प्रॉपरली, यू लिसन टू दीज इंटरव्यूज प्रॉपरली ताकि बाद में जाके आपको पता हो कि आपने को किसको वोट करना है.
1: और भी डिटेल्स आपके लिए बस थोड़ी देर में. सुनते रहिए हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: नथिंग ना na na na na nothing na gintrukta thing.

0: You're listening to हम playing Bollywood's biggest hits. Super से ऊपर ये शो आपके लिए जारी है एंड टाइम है अब दिवाली वाला सीजन which means आपको यहाँ पे ढेर सारी चीजें जीतने का मौका हम देते हैं.
1: कैश जीतने का मौका आपको मिल रहा है $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस इस दिवाली. सो राइट नाउ रुजबे हमारे पास है $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर. नाउ फ्यूल इज समथिंग एवरीवन नीड्स. सो
0: फ्यूल की तो बातें ऐसी हो रही है सैंडी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इट कैन गो अप टू $5 आल्सो $6. ऐसी बातें हो रही है.
1: या मैंने भी सुनी है बट लेट्स सी क्या होता है. सो $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर जीतने का मौका है थैंक्स टू इनडेलेबल होम्स. घर बना रहे हैं और पैसा अच्छा आ रहा है तो इनडेलेबल होम्स की ओर से $1,000 का फ्यूल वाउचर आपको मिल सकता है. IH स्पेस अपना नाम लिख के बस आपको भेजना है 5599 पर. आपका समय अभी शुरू होता है.
0: फटाफट भेज दीजिए आपके मैसेजेस यहाँ पे अगर आपको जीतना है $1,000 के फ्यूल वाउचर्स थ्रू इनडेलेबल होम्स. IH ऑन 5599.
2: Daily dose of wisdom, wit and wild conversations.
3: The Drive Show with Sandy and Rizbe.
4: आपका प्रोफाइल देखा आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए.
5: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है. ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए.
6: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
5: बढ़िया है. अच्छा ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए.
6: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
5: बस इतना ही.
6: सर मैं ChatGPT हूँ, अंबानी नहीं. हमसे ना हो पाएगा.
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इनडेलेबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
7: The enrollment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
8: Enrolled yet?
7: How about you?
8: Are you enrolled?
9: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
10: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price. Under 5s free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
11: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
12: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
13: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
14: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
15: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
16: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
17: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
18: यस बेबो, कैच क्या है? मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
17: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
18: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड।
19: PNC Supply.
20: It's Carpet Court's massive three-day sale. Right now, save thousands on carpet, vinyl, and hard floor, including massive savings on big brands like Rhino. Bring in your floor measurements today. Hurry, sale ends Saturday, only at Carpet Court.
21: Are you ready to go home?
22: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
23: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
0: Drive Show आपके लिए जारी है सैंडी और रुस्बे के साथ, और 7 बजे तक आपके साथ यहाँ पे रहेंगे, आपका मनोरंजन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे. Your drive back home, making it more pleasurable.
1: Yeah. Trying to be kya soothing to your ear, kuch
0: soothing,
1: aisa.
0: Soothing, abhi yeah. Wo to nahi pata. But
1: ya fir biting, nahi pata.
0: Wo bhi aapko pata chalega, kyunki abhi hum aapko lekar aa rahe hain aapke liye. एक सवाल लेकर आ रहे हैं जिसके मल्टीपल जवाब हो सकते हैं.
1: ठीक
0: है, तो ये सवाल ऐसा है कि आई एम इजी टू गिव बट हार्ड टू टेक बैक.
1: आई एम इजी टू गिव बट हार्ड टू टेक बैक.
0: आई कॉस्ट नथिंग टू शेयर येट आई कैन रुइन अ लाइफ इफ ब्रोकन.
1: ओ माय गॉड, मेरे को पता है शायद से ये
0: व्हाट एम आई.
1: या सो क्या है गाइस, 5599 पर मैसेज करके बताइएगा.
0: मैं देने के लिए आसान हूँ,
1: इजी टू गिव
0: लेकिन मैं बहुत मुश्किल हूँ वापस टू टेक बैक.
1: गिव बैक करना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक तो मुझे पैसा लग रहा था.
0: हार्ड टू टेक बैक,
1: या
0: मतलब पैसा लग रहा था आपको कि मैं इजी टू गिव. नहीं, इजी टू गिव थोड़ी होता है पैसा, हार्ड टू टेक बैक. हाँ ये भी सही है. ये तो सही बोल रहे हो आप, आपने बहुत उधार दिया लोगों को शायद, ऐसा लग रहा है.
1: इतना नहीं तो हाँ, सेकेंड पार्ट क्या है?
0: सेकेंड पार्ट है आई कॉस्ट नथिंग टू शेयर. फ्री में आप मुझे शेयर कर सकते हो.
1: ओके, फ्री पैसा नहीं है
0: लेकिन मैं बर्बाद कर सकता हूँ आपकी जिंदगी अगर मेरे को तोड़ा तो.
1: या
0: क्या हूं
1: इसका हिंट अगर मैं आपको दूं ना, इसका हिंट वो है जो आप किसी को नहीं बोल सकते. इसको आप किसी को नहीं बोल सकते.
0: नहीं ये नहीं है, आप जो
1: सिर्फ एक को बोल सकते हैं. सॉरी,
0: नहीं ये शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हो.
1: ये वो नहीं है.
0: नहीं आपने आप सोच रहे हो. रुको, मैसेज आने दो. आई थिंक समवन माइट गेट इट. बट ये बेसिकली ये वो है, ये उस बुनियाद है, ये फाउंडेशन है
1: उस चीज की.
0: ये फाउंडेशन है फॉर एनी रिलेशनशिप.
1: ओके,
0: ये फाउंडेशन है फॉर एनी रिलेशनशिप. ये फाउंडेशन है,
1: पांच
0: दैट्स राइट
1: अल्फाबेट्स है इसके.
0: या दैट्स राइट,
1: देयर यू गो.
0: एक और हिंट देता हूं मैं, चलो. द वर्ड जिस अल्फाबेट से चालू होता है उसी अल्फाबेट से एंड भी होता है.
1: ओह या, अब मुझे पता चला है ये क्या है. सो गाइस, 5599 इज अ नंबर. और साथ ही आपको बता दें कि नॉर्थ शोर में दिवाली की सेलिब्रेशन होने वाली है, जहाँ पे आप भी पहुँच सकते हैं. स्मेल्स फार्म है ताकापुना में, वहाँ पे होगी ये 24 अक्टूबर को 12 noon to 9 PM. डांस परफॉर्मेंसेस, फन एक्टिविटीज भी बच्चों के लिए रहेंगी और फूड स्टॉल्स भी. फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, आप भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं.
0: स्मेल्स फार्म बहुत अच्छा है, वहाँ पे अच्छे ऑफिसेज और बिल्डिंग्स है. एंड आई थिंक मुझे लगता है वहाँ पे वहाँ से कोई एक मैराथन भी शुरू होता है.
1: ओह इज इट,
0: आई थिंक सो, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बढ़िया, स्मेल्स फार्म पे आप भी पहुँच जाइए. एंड क्या दिवाली है ना वहाँ पे,
1: दिवाली 24 अक्टूबर
0: को है वहाँ पे दिवाली. क्या बात है.
24: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
25: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं.
2: मैं लाऊं अपना ए गेम.
23: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: सुपर से ऊपर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड।
1: सुपर से ऊपर ये शो जारी है आपके लिए ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वैसे यहाँ पे काफी कॉल्स आ रहे थे, हमें मिस कर दिया हमने कॉल्स, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपको कॉल करके यहाँ पे बात करनी है। सवाल हमने पूछा था,
2: व्हाट एम आई का सवाल पूछा था रुजबे ने, एंड सवाल था रुजबे तुम्हारा कि ऐसा क्या है जिसे देना बहुत ईजी होता है लेकिन वापस लेना बहुत ही मुश्किल होता है, एंड अगर ये ऐसा कुछ गड़बड़ कर दे तो किसी का ऐसा बहुत रिस्क हो सकता है,
1: जिंदगी उनकी बर्बाद भी कर सकता है काफी बार अगर यू नो वो टूटे तो।
2: अगर वो टूटे तो
1: हाँ।
2: एंड रुजबे सेड कि जिस लेटर से शुरू होता है उसी लेटर से खत्म होता है इंग्लिश में, एंड फाइव लेटर्स का ये वर्ड है।
1: तो बताइए, काफी लोगों ने यहाँ पे मैसेज किया एक्चुअली। रेणुकांत पापाकुरा से आपका भी मैसेज आया है और काफी लोगों ने अपना नाम नहीं भेजा है। रोशनी ने भी अलग एक भेजा है एक्चुअली। रोशनी ने दोनों सही आंसर भी भेजा है। मोहितेश का आंसर आया है यहाँ पे,
2: प्रॉमिस आंसर भी आया हमारे पास,
1: प्रॉमिस आल्सो इज क्लोज काइंड ऑफ बट या। अंशु का भी आंसर आया यहाँ पे, एंड काफी लोगों ने अपने नाम नहीं भेजे, नंबर आया बस उनके,
2: लव हार्ट दिल,
1: अलग अलग आंसर्स आए हैं। द आंसर दैट वी वर लुकिंग फॉर इज ट्रस्ट,
2: ट्रस्ट TRUST,
1: ट्रस्ट इज मस्ट,
2: ट्रस्ट इज मस्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस अपने आंसर्स।
1: और मैंने हिंट दिया था ना, मैंने बोला कि इट इज अ फाउंडिंग ब्लॉक ऑफ अ रिलेशनशिप।
2: ओह यस,
1: फाउंडेशन होता है कोई भी रिलेशनशिप का,
2: किसी कैसे भी, लेकिन एक फाउंडेशन होता है ट्रस्ट का जो ले करना बहुत,
1: लाइक फॉर एग्जांपल फाउंडेशन ऐसा भी है कि अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो भी एक फाउंडेशन ही है वो रिलेशनशिप का। अगर होते हैं काफी ऐसे जहां पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो लेकिन वो है रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप बोलते हैं कुछ लोग उसको,
2: सिचुएशनशिप हो जाती है या फिर उसको कुछ और टर्म भी होती है, मैं जो नहीं बोल सकती,
1: नहीं होते सिचुएशनशिप में भी ट्रस्ट तो होता ही है।
2: या
1: आज वैसे आज दिन है थर्सडे
2: रुजबे, और 5 बजे के बाद हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पार्टी के लीडर क्यूले वोंग के साथ बातें करने वाले हैं। यहाँ पे उनको कुछ सवाल पूछेंगे जो कि हमारे लिसनर्स ने यहाँ पे भेजे हैं। एंड ऑल्सो 6:45 पे रमाय ने एक गाथा 1 to 2 मिनट का एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट है, सुनना ना भूलेगा, डिफरेंट टाइमिंग्स में आपको सुनने को मिलता है। अगर आप मिस आउट कर लेते हैं डोंट वरी, दिवाली लिख के भेजिए 5599 पर, ऑटो रिप्लाई में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। एंड ऑल्सो बता दो हमारे फेसबुक पेज पर जाके देर इज़ अ सुपर कॉम्पिटिशन, यू नो फुटबॉल की अगर आप फैन है तो आफ्टर सो मैनी ईयर्स इंडिया की टीम यहाँ पे ऑकलैंड के साथ खेलने वाली है। दिस इज अ फुटबॉल आई थिंक जो आपको जाने चाहिए,
1: यहाँ पे टिकट फुटबॉल की टीम का नाम ऑल राइट्स।
2: सो हम इज गिविंग अवे डबल पास थैंक्स टू न्यूजीलैंड फुटबॉल, आप ये डबल पास भी जीत सकते हैं। अगर नहीं जीते तो कोई बात नहीं, खरीद के जाएगा गो मीडिया स्टेडियम में 12 नवंबर को। यू नो ऑल वाइट्स एंड इंडिया ने फेस किया है पहले एक दूसरे को 1981 में जब मैच ड्रॉ हुआ था।
1: अच्छा,
2: उसके बाद 2018 में 2-1 के साथ ऑल वाइट्स की जीत हुई थी, एंड आफ्टर 2018 इट्स गोना बी दिस मैच।
1: 2018 में लास्ट हुआ था,
2: 2018 में लास्ट हुआ था।
1: ओके,
2: सो उसके बाद ये मैच होने वाला है। तो अगर आपको डबल पास जीतना है आपको क्या करना है, हमारे फेसबुक पेज पे जाना है, ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया का जो फोटो है, टैग योर फ्रेंड एंड प्रेडिक्ट अ स्कोर, आपको प्रेडिक्ट करना है फाइनल स्कोर क्या है। सो फार काफी लोगों ने ऑल वाइट्स को जिताया है वहां पे प्रेडिक्शन में।
1: अच्छा,
2: आप भी प्रेडिक्शन कीजिए वहाँ पे।
1: मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम को हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि अभी काफी ज्यादा इंडियन टीम में भी काफी ये हो गए,
2: टैलेंट काफी अच्छा है,
1: धुरंधर प्लेयर्स आ गए,
2: धुरंधर प्लेयर्स है एक्चुअली में। एंड मुझे लगता है कि ये मैच तो ना काफी लोगों को जाके देखना ही चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इस टीम को जाके।
1: 100% या बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमेशा क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करते हैं।
2: यस,
1: बट आई वुड पर्सनली वांट टू गो एंड वॉच फुटबॉल,
2: या
1: बिकॉज आई थिंक इट्स अ कूल स्पोर्ट एंड इट्स द क्या मोस्ट प्लेड स्पोर्ट है ना, वैसे
2: मोस्ट प्लेड स्पोर्ट्स है। एंड फिर हम बाद में कई बार बोलते हैं ना जब बड़े बड़े वर्ल्ड कप होते हैं कि अरे यहाँ पे टीम नहीं पहुँची है, लेकिन मुझे लगता है सपोर्ट ऐसा छोटा छोटा जब शुरू होता है और टीम भी जब देखती है ना कि इतने लोग आके हमें यहाँ पे देख रहे हैं, वो भी एक फॉरेन कंट्री में, सो वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा वो होता है, मोटिवेशन होता है।
1: या बट ये ऑल वाइट्स एक्चुअली फीफा में भी खेली ना इस साल।
2: यस,
1: वो तो ऑल वाइट्स तो काफी स्ट्रांग हुए हैं,
2: बहुत स्ट्रांग, ऑल वाइट्स इज रियली गुड टीम, मतलब वो हमने देखा है उनको खेलते हुए काफी बार। एंड इंडियन टीम को हमने ज्यादा फुटबॉल खेलते हुए, मतलब यहाँ पे हमने उनको ज्यादा इंटरनेशनल टूर्स में नहीं देखा है खेलते हुए।
1: हाँ, क्योंकि ज्यादा उनका मेरे को नहीं लगता ब्रॉडकास्ट भी ज्यादा हुआ है, मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत रील्स देखे हैं, मुझे एक्चुअली में टीम में कौन है वो पता भी नहीं होगा।
2: या
1: तो या
2: इसके बारे में भी बात करेंगे किसी और दिन, बट फॉर नाउ अगर आपको मैच की टिकट जीतनी है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. फेसबुक पे जाइए.
3: लेट्स गो
0: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल

0: with Sandy and Rusbay. Brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Ab time aa gaya hai. Hum yahan pe aapko ek competition mein hissa dene ka mauka de rahe hain.
3: एक दिया एक कहानी इस कंपटीशन में आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है. आपको कॉल करना है यहाँ पे 0800 00 हम पर. इट्स 0800 00 4866. सो आपको दिवाली शाउट आउट पे किसी एक ऐसे पर्सन को अप्रिशिएट करना है जो आपकी लाइफ में यू नो हु हैज सपोर्टेड यू,
2: ब्राइटनेस लेकर आए आपके लाइफ में,
3: या हु हैज सपोर्टेड यू, इंस्पायर्ड यू, मेड यू स्माइल, हु इज नॉट द फैमिली बाय ब्लड बाय हार्ट.
2: और यहाँ पे हमें इस इसमें फिट करने को बहुत इजी है क्योंकि हम जब यहाँ पे मोस्टली हम यहाँ पे सब माइग्रेंट्स आए हैं या अगर यहाँ पे पले बड़ी भी है तो हर किसी के ज़िंदगी में एक कोई वो होता है ना, मेंटोर होता है, एक कोई रिश्तेदार भी हो सकता है या फ्रेंड हो सकता है जो आपके दुख दर्द में हर चीज़ में आपके साथ होता है.
3: किसी ने आपको ऐसा सपोर्ट या गाइड किया होता है किसी न किसी वे से. सो या वो हो सकता है या कोई भी हो सकता है लेटर इन योर लाइफ भी, नॉट जस्ट इन स्टार्टिंग डे ऑफ योर लाइफ, लेटर इन योर लाइफ भी हो सकता है, एनी वेयर. सो आप बताइए यहाँ पे कॉल करके किसी एक पर्सन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है 0800 00 हम पर. वो आपके बचपन का भी कोई हो सकता है, नॉट जस्ट यहाँ पे आके, वो आपके बचपन में अगर किसी ने इंस्पायर किया, कुड बी योर नेबर, कुड बी योर टीचर. So anyone
2: 0800 00 4866. अभी है टाइम, अभी आप कॉल कीजिए फटाफट. एंड कॉल करके आपका क्या होगा, मतलब आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा टू विन $300. $300 आपके नाम हो सकता है. ड्रॉ जो है ये फ्राइडे 6 नवंबर को होने वाला है. आई थिंक $300 तो जीतने का मौका मिल रहा ही है आपको, लेकिन आपको किसी के बारे में जब आप कुछ अच्छा कहते हो तो वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी बाहर पास ऑन करता है. एंड दैट इज आई थिंक
3: आपने जर्नी आपने शुरू तो की होती है लेकिन साथ में कोई ना कोई फैक्टर होता है. वेल अभी या बचपन के या किसी भी टाइम का, तो आपके पास अभी समय है कॉल करने के लिए. तो लेट्स सी फोन लाइन पे कौन है.
2: हाय
4: हाय, हेलो रुजवी भाई.
2: हेलो, कैसे हो?
4: बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
2: बहुत ही बढ़िया. क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम अंकित है.
2: अंकित, बोलिए.
3: यस अंकित, बताइए.
4: हाय सैंडी.
3: यस हाय अंकित. बड़ा सरप्राइज साउंड हुए आप.
2: दोनों साथ में ही बात करते हैं हम लोग.
4: बहुत ही, हाँ जी. दिवाली का मौका है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिवाली पे मेरे जो लोग हैं वो मेरी हम टीम है.
3: ओह वाओ,
2: क्या बात है यार. तो हम दिए लगा रहे हैं आपके लिए.
3: नहीं, ये हमारे लिए दिए लगा रहे हैं.
2: अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे यार, कहो ना थोड़ा. और अभी कह रही हो तो दिए लगाना, दिल खोल के कहो यार.
4: चाहता हूं.
2: कैसे हमने दिए लगाए आपकी जिंदगी में?
4: रुजवी भाई
2: बोलो.
4: I'm sorry guys, it's a personal talk, sorry. It's me and my people. It's Ankit and his people. And people, how are you doing?
2: अच्छा, आप शो कर रहे हो यहाँ पे
4: रुजवी भाई.
2: हाँ.
4: सॉरी यार भाई, सॉरी ना भाई.
2: किस चीज के लिए सॉरी बोल रहे हो भाई?
4: भाई हम मिले थे अपने सुपरमार्केट के लॉन्चिंग पे.
2: अच्छा, तो
4: दैट वाज अ ग्रेट सेलिब्रेशन. बट मैं उस टाइम पे आपको ये बताना भूल गया था कि जो अपनी बात हुई थी ना भाई.
2: हाँ जी
4: भाई, वो ना सिर्फ मैं आपको ही बताऊंगा.
2: अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में. थैंक यू, हैप्पी दिवाली भाई. थैंक यू.
4: ओके भाई, हैप्पी दिवाली.
2: हैप्पी दिवाली. तो आप भी ऐसे यहाँ पे कॉल करके आपका नाम ड्रॉ में शामिल कर सकते हैं $300 के लिए. बट फॉर नाउ वी गोना लिसन टू दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, और उसके बाद 5 बजे के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए लेकर आने वाले हैं, न्यूजीलैंड टॉक्स।
3: यस, सो अपॉर्चुनिटी पार्टी के लीडर क्यूले वोंग के साथ हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड।

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Experience Picasso like never before.
3: Showers overnight, a low of 10 degrees on the northern from Tarn to Constellation Drive, taking 20 minutes. Silverdale 34. Northwestern's a bit heavy, heading west past Rosebank to Massey, 22 minutes from Tarn. On the southern, just heavy traffic northbound from Luke Street to Green Lane, Tarn to Manukau, half an hour, and Drury, 42 minutes. Southwestern heavy from Parr Road north to Mangere Bridge.
2: Picasso, designed by Paul Smith, 80 original works, on now at Auckland Art Gallery.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
5: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आशा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
9: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
10: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
11: Save big at Rebel and get the family sorted for the summer season. Take 15% off all kids' Nike clothing. They're selected big brand kids and adults tees, two for $50. Plus, get 20% off selected bags and bottles. Summer value is on now, only at Rebel Sport. See you later for T's and C's.
12: It's Woolworths Health and Body Sale. Refresh your routine for less with up to 40% off on Oral-B products and up to 25% off on Schwarzkopf. Stock up and save on your everyday favourites. T's and exclusions apply. Only at Woolworths.
13: Time check.
14: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00 00 10.
0: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Three people have been rushed to hospital, one critical after a chemical incident in Christchurch's Sydenham. St John was called just before 4pm, sending two ambulances, a rapid response unit and an operations manager to the scene on Coleridge Street. The other two patients are in a moderate condition. Fire and Emergency says it has 8 crews at the site. National's promising to help more Kiwis tap into the power of the sun if re-elected. It's vowing to ensure plug-in solar panels can be bought in stores by next year. Party leader Christopher Luxon claiming credit for Kiwis' rapid uptake of solar energy.
16: We've actually seen solar connections go up, I think, 47% since our government came into office, and we've got more New Zealanders than ever before generating their own power.
15: A section of State Highway 1 between Clinton and Balclutha is shut after a crash. It happened at the intersection of Tutu Hill Road, leaving three people injured, two seriously. Kapiti Coast District Council is apologising for an invoicing delay that'll see some residents receive a hefty water bill just before Christmas. An issue was discovered during a recent upgrade to online systems and billing was paused for accuracy checking. It means for some the next invoices will cover about 6 months of water usage rather than 3, compounded by a rise in pricing. To sport, the heavyweight opening to the Rugby League World Cup is just on 4 hours away in Sydney. The match is reportedly set to be played before the biggest test crowd in Sydney in more than 50 years. Rugby League with Machinery House in a league of their own. And both Du Plessis Kariffi and Timothy Tavatavanawai are yet to play a test under All Blacks coach Dave Rennie, but both players have been named on the bench for Saturday's second test against the Aussies in Sydney.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
1: Are you ready to go home?
13: The Drive Show with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWN Havel and Omura Jaiku.
1: Let's go! Three, two, one.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
17: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
18: शेयर हो चुका है. यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे. ट्रेंड मेकर्स में आप आज एक थीम लेकर आने वाले हम.
19: यस, आज का मौसम थोड़ा ऐसा हवा वाला रहा तो सोचा कि हवा ही लेके आते हैं.
18: क्या बात है. तो आज का थीम है हवा.
19: या ऐसा कैसा लग रहा है ना कि एकदम अभी वो गाना होना चाहिए था स्प्रिंग वाला गर्मी वाला, लेकिन अब वी आर बैक टू हवा सॉन्ग.
18: बैक टू एंड इट हैज टू बी ना सैंडी. यार मैं मतलब मेरे को पता है आपने गाने एक्चुअली आपने जो गाने रखे हैं वो बहुत सही है.
19: नहीं तुम उसमें सो गाइज इफ यू वांट टू हियर सम सॉन्ग हवा का तो भेजिए रिक्वेस्ट. अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे 5599 पर तो हम उसको एडजस्ट करेंगे उसमें अपने लॉग्स में.
18: हवा को लेकर ना मेरे मन में जो सबसे मेरा फेवरेट गाना आता है ना वो है जब हैरी मेट सेजल का.
19: हाँ वो तो है ही ना
18: लिस्ट में. है लिस्ट में है वो. देखा मैंने
19: वो रह गई.
18: वो गाना यार मेरे को बहुत क्लास लगता है.
19: मेरे को उसके दोनों वर्जन अच्छे लगते हैं.
18: हाँ फिल्म वर्जन भी एक है ना उसका.
19: एक फिल्म वर्जन है एक प्रॉपर वर्जन है. आई लाइक both of the versions.
18: Film version फुर गाने का है सैंडी.
19: नहीं हवाएं का भी है.
18: उसका मेरे को फुर गाने का film version ज़्यादा better लगता है.
19: Yeah.
18: Compared to the audio version.
19: So ये कहानी ऐसी होती है guys composers की कि वो काफी सारे singers को गाना गवाते हैं. And then accordingly decide होता है कि कौन सा गाना
18: film में जाएगा.
19: Film में जाएगा कौन सा गाना ऐसा बाहर आएगा audio ऐसा जब radio पे play होता है. You know popular गाना होता है जो starting में आते हैं गाने. Before the movie releases.
18: Yeah, that's right. And इसलिए काफी बार वो same गाना multiple singers ने गाया होता है.
19: Yes, yeah. Yes. Film version basically में बाद में सुनाई देता है.
18: So आज हवा वाले गाने आप सुनने वाले हैं, लेकिन आप आपका feedback हम तक जरूर पहुंचाइए. ये बहुत ही लंबी बात हमारी हुई है the leader of the opportunity party के साथ.
19: Yeah, Kyule Wong के साथ.
18: And मुझे लगता है कि बहुत ही सही time पे ये बातें हो रही है. Because elections are just around the corner. And it's very important for us to know कि कौन सी parties किस चीज़ के लिए खड़ी है. And we should be aware.
19: We should be aware.
18: हम जब वोट कर रहे हैं हमने सोच समझ के वोट करना चाहिए.
19: कि आप किस पार्टी के साथ अलाइन करते हैं ज़्यादा.
18: और हम एक बहुत ही unbiased view लेकर आ रहे हैं आपके लिए. And view of the parties basically. तो हमने ACT पार्टी के लीडर के साथ बात की. हमने नेशनल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात की. हमने
19: बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करते हुए सनी कौशल से बात की.
18: उनसे बात की जो बिजनेस के अराउंड उन्होंने बोला कि क्या उनके लिए सही था. बिजनेसेस के लिए क्या दिक्कतें उनकी है और कौन सी पॉलिसीज उनको हेल्प कर सकती है. फिर हमने अभी अपॉर्चुनिटी पार्टी के साथ बात की.
19: उससे पहले हमने लेबर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से बात की खड़क सिंह से.
18: अरे हाँ लेबर पार्टी से भी बात की हमने खड़क सिंह के साथ. एंड Now we spoke to Opportunity Party. We have in line with to speak to Green Party as well.
19: Green Party as well and one of the party leader as well.
18: Hope कर रहे हैं कि हम end करें with two party leaders, but let's see.
19: Let's see. So because it's a busy time, guys, and it's busy for every party leader.
18: Yeah.
19: और यही तो टेस्ट है कौन सा पार्टी लीडर अवेलेबल है.
18: Who's available for us right now?
19: Right now कौन अवेलेबल है?
18: अगर अभी अवेलेबल,
19: the pressure is on.
18: अगर अभी अवेलेबल नहीं हो तो फिर आगे चल के क्या ही अवेलेबल हो ना हमारे लिए. But anyway,
19: yeah. So ये सारी बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं और ये आप अगर मिस आउट करते हैं इंटरव्यूज यू कैन गो एंड चेक आउट ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे हमारा कैचअप पॉडकास्ट जो है. आप अगर जाएंगे रोवा पे जाते हैं स्पॉटिफाई पे एप्पल पे सर्च कीजिए. You will get all the episodes over there.
18: एंड दोस विल बी जस्ट कॉन्वर्सेशंस विदाउट एनी एड्स और एनीथिंग.
19: और लेटेस्ट एपिसोड अगर आपको सुनना है अपॉर्चुनिटी पार्टी लीडर के साथ जो हमारी बातें हुई है, ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, यू विल गेट होल एपिसोड.
18: ओह इट्स ऑलरेडी अप.
19: इट्स ऑलरेडी अप.
18: अरे क्या बात है, दे आर क्विक, एकदम क्विक प्रोडक्शन चल रहा है हमारा. तो आप सुनिएगा जरूर. बट फॉर नाउ हवा वाले गाने आपके लिए, एंजॉय कीजिए ऑन हम

0: टीम है हवाए, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे, ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स।
1: नवरात्रि का टाइम है रुजबे, और ऐसे मौके पे ढेर सारी सेलिब्रेशंस हो रही है, जैसे कि रामकृष्ण मंदिर में आप जा सकते हैं 6 PM ऑनवर्ड्स गरबा एंड डांडिया रास के लिए।
0: श्री हनुमान मंदिर 14 बे पार्क प्लेस बर्कडेल नॉर्थ शोर भी आप जा सकते हैं, डीजे गरबा और भजन जैमिंग और गरबा होगा 18 अक्टूबर को।
1: या एंट्री आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर में 7 PM to 9 PM सेलिब्रेशन रहेगी, 38 वॉम्सली रोड ओटाहो में ये लोकेटेड है।
0: दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट में भी ये हो रहा है एट द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मनुकाव, एंड माँ दुर्गा टेम्पल 4/3 ऑनस्लाइफ पापा टोयटोय में भी 7 PM से होने वाला है 19 अक्टूबर तक गरबा सेलिब्रेशंस।
1: श्री राम मंदिर हैंडरसन में भी हो रहा है 6 PM ऑनवर्ड्स लाइव गरबा, 8:30 PM से एक्चुअली में शुरू होता है। एंड अदर इवेंट्स में वैसे गरबा इवेंट एक और हो रहा है वैसे 16 and 17 अक्टूबर को नॉर्थ शोर कम्युनिटी इवेंट सेंटर में, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। एंड इस साल वैसे एक और दुर्गा पूजा भी हो रही है, संप्रीति दुर्गा पूजा, जो कि 17 and 18 को रहेगी, फ्री इवेंट है, ओपन टू एवरी वन। यू नो सिंदूर खेला होता है जो, वो आप वहाँ पे कर

0: सकते हैं वो आप
1: खेल
0: सिंदूर खेला जहाँ पे सुदुर्गा पूजा जब कर रहे होते हैं दे अप्लाई सिंदूर टू मतलब ऐसा थ्रू करते होली की तरह.
1: मैंने कहानी मूवी में देखा था विद्या बालन वाले वो.
0: या सो सिंदूर खेला एंड अदर ट्रेडिशनल जो सेलिब्रेशन है ये वहाँ पे रहने वाली है. सो चांस है बंगाली कम्युनिटी को जानने का, वाइडर कम्युनिटी को जानने का फ्रीमैन्स बे कम्युनिटी हॉल में.
1: ये मेनोपॉज ग्लोबल प्रेजेंट्स फ्री ऑनलाइन इवेंट हो रहा है वर्ल्ड मेनोपॉज डे के ऊपर. इसके ऊपर ज्यादा बातें करते नहीं है हमारी कम्युनिटी में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर बात करना, अंडरस्टैंड करना दैट वुमेन ऑफ अ सर्टेन एज गो थ्रू मेनोपॉज.
0: यस,
1: एंड इट्स
0: उसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है.
1: And they go through a lot of difficult time. Like, उनको काफ़ी hot flushes होते हैं काफ़ी लोगों को टाइम पे. And they go through a lot of emotional
0: hormones change होते हैं ना.
1: Yeah, hormones change हो रहे हैं. So Sunday 18th October को ये free online event है. I think everyone should register and attend this event. GlobalPowerSurge.com पे आपको इसका मिल जाएगा event details.
0: And अंबेडकर Sports and Culture Club आपके लिए दो दिन का event लेके आ रहे हैं 24th and 25th October को. So रुजबे इसमें बहुत सारी games रहने वाली जैसे कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर. मेजर हाईलाइट इज 24th अक्टूबर को पंजाबी सिंगर माशा अली लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. फ्री एंट्री है एकदम. सो इट्स गोना बी ऑसम.
1: और मैंने पता किया है कि यहाँ पे ना ऐसे कुछ फन एक्टिविटीज भी होने वाले हैं, जैसे कि नींबू चमचा वो गेम होता है ना, नींबू चमचा रेसेस,
0: म्यूजिकल चेयर्स,
1: ये सारी चीजें होने वाली है वहाँ पे.
0: सो ये रहेगा गाइस 24th एंड 25th अक्टूबर को पुकेकोही में कोलिन लॉरी फील्ड्स में. फ्री एंट्री है, आप भी वहाँ पे जा सकते हैं.

0: ट्रेंड मेकर्स।
1: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
3: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
4: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है।
3: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
5: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
6: अब हाइब्रिड में स्विच करने का सही

0: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. नीरज श्रीधर का ये आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स था ना हवा में उड़ता जाए.
1: या उनकी पुरानी एल्बम से
0: बहुत ही पुराना ये गाना आपने अभी एंजॉय किया और हम क्योंकि आज हवा रिलेटेड गाने हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए.
1: या और गानों के बारे में बातें करते हैं तो वैसे फिलहाल नॉमिनेशंस की सबमिशंस चल रही है फॉर द ग्रैमी अवार्ड्स. तो बहुत सारी आपने देखी होगी फॉर योर ग्रैमी कंसिडरेशन इन द बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी. जैसे मैंने धुरंधर की बहुत सारी नॉमिनेशंस देखी है. सो मतलब धुरंधर ने क्या होता है कि सबसे पहले आप अपना गाना सबमिट कराते हो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में. जब आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अपना गाना सबमिट कर लेते हैं ना उसके बाद देन आपको उस गाने को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना होता है. तो ये एक्चुअली स्टेप होता है, ये सेकंड स्टेप होता है. एंड देन वहाँ से सिलेक्ट होते हैं नॉमिनेशंस एंड देन नॉमिनेशन से विनर सिलेक्ट होता है. सो दिस इज द फोर स्टेप्स.
0: ओके,
1: सबमिशन, प्रमोट योर सॉन्ग ऑन द सोशल मीडिया, वहाँ से नॉमिनेट कौन सा गाना रहेगा एंड देन द फाइनल विनर.
0: राइट.
1: सो अभी सेकंड स्टेप चल रहा है जहाँ पे सोशल मीडिया पे हर किसी को जिन्होंने अपने गाने की सबमिशन की है उनको प्रमोट करना है. धुरंधर के काफी गाने की सबमिशंस हुई है. सो दे आर लाइक
0: धुरंधर 2 या धुरंधर 1 के गाने.
1: सो धुरंधर द रिवेंज.
0: ओह, द रिवेंज के गाने हो रहे हैं
1: और धुरंधर के भी
0: क्योंकि
1: शरारत इज आल्सो देयर.
0: आरआर इज धुरंधर 2.
1: आरआर इज धुरंधर 2.
0: आरआर इज धुरंधर 2 है ना.
1: तो वो भी गाना है, फिर से गाना भी है जो वो जो एंड में आता है
0: वो धुरंधर 2 है.
1: वो धुरंधर 2 है या
0: धुरंधर 1 क्योंकि मेरे को धुरंधर 1 के गाने ज्यादा अच्छे लगे थे यार.
1: मुझे भी एक्चुअली
0: शरारत गाना वाज वेरी गुड. देन देयर वाज दैट वो जान से गुजरते हैं
1: वो भी गाना और जैस्मिन सैंडलेस वाला गाना भी उसमें है.
0: कौन सा गाना था वो
1: फॉर द सबमिशन? चाहिए साजना. तो बहुत सारे गाने अभी आप देखेंगे कि इस वे से नॉमिनेट किए गए हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी, काफी सबमिशन सॉरी गई है. देखते हैं कि इसमें से नॉमिनेट कौन से गाने होते हैं.
0: राइट. अभी के लिए मोहित चौहान की आवाज और रॉकस्टार मूवी का ये गाना आपके लिए. आज थीम है हवा. एंजॉय कीजिए ऑन हम.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: क्या बालक सब प्रभु के दर्शन को आतुर थे।
1: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए यहाँ पे एक से गाने हम लेकर आते हैं और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी करते हैं। वैसे आपने अभी सुना रामायण गाथा, ये हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ड्यूरिंग दिस दिवाली टाइम
2: 1 to 2 मिनट का ये सेगमेंट आपके लिए हम लेके आ रहे हैं एवरी डे। अगर आप मिस आउट कर देते हैं दिवाली लिख के भेजिए 5599 पर, आपको ऑटो रिप्लाई में हम लिंक भेज देंगे।
1: दिवाली लिख कर भेजना है, बस
2: सिर्फ दिवाली लिख के भेजना है आपको। यहाँ पे
1: बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मतलब काफी इन्फॉर्मेटिव भी है एंड आई थिंक children should definitely listen to this.
2: Yeah, and इसके अलावा वैसे बहुत सारे जो हमारे दिवाली के कॉम्पिटिशन्स हैं इनमें पार्टिसिपेट करते रहिएगा। एंड मंडे से भी एक नया कॉम्पिटिशन आपके लिए लॉन्च होने वाला, वी ऑलरेडी गिविंग $5,300 वर्थ ऑफ प्राइजेस एंड देर विल बी अनदर कॉम्पिटिशन वी गोना लॉन्च
1: फॉर दिवाली
2: फ्रॉम मंडे।
1: अरे क्या बात है
2: यार। सो दिवाली के टाइम पे ऐसे दिवाली है ना,
1: दिवाली हमारा हम का दिवाला निकल रहा है आपके दिवाली का
2: आपकी तो दिवाली है।
1: सो दैट्स अमेजिंग यार, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग फॉर यू, लॉट ऑफ थिंग्स आर प्लान फॉर यू। लेकिन आज अपने हमारा जो पॉलिटिकल सेगमेंट जो था, हमें मैसेजेस आए कुछ, हमने उसके ऊपर पहले बात नहीं की सैंडी, बट आई थिंक व्हाइल गोइंग वी विल जस्ट एड्रेस दिस वंस। एक मैसेज आया कि आई एम लिसनिंग टू योर प्रोग्राम एंड यू आर प्लेइंग सम पॉलिटिक्स ऑन एंड ऑन, एनी रीजन व्हाई? वेल द रीजन इज दैट देयर इज इलेक्शंस हैपनिंग ऑन द 7th ऑफ नवंबर एंड दैट इज अ रीजन इनफ फॉर इंडियन और बॉलीवुड रेडियो स्टेशन टू कवर जो न्यूजीलैंड में बहुत रेलेवेंट है अभी,
2: जो हमारी कम्युनिटी के बहुत बहुत रेलेवेंट है। और क्या होता है ना कि हमारी कम्युनिटी निकल के वोट करने के लिए नहीं जाती है, बहुत कम लोग जाते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम इश्यूज उठाने में बहुत आगे होते हैं कि हमारे लिए साथ ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो वाई नॉट टेक फर्स्ट स्टेप कि पहले आप अपने हिसाब से देखो कि किसकी पॉलिसी सही है, पॉलिसीज कौन सी अलाइन करती है, फिर अपने वोट करने के लिए आप जाओ दिस इलेक्शन। तो आप आगे वोट करने जाएंगे, अपनी सरकार खुद सिलेक्ट करेंगे, तभी आगे कुछ होगा।
1: सो दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग दिस शो, बिकॉज हम भी इंटरेस्टेड नहीं थे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर हम ही इंटरेस्ट नहीं रखेंगे हमारे पॉलिटिक्स में तो हमारा कोई हक ही नहीं बनता है कंप्लेन करने का।
2: आई थिंक विद द टाइम ऑल्सो ना रुजबे, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, चाहे वो घर हो गया, चाहे वो जॉब हो गया, चाहे वो टैक्स की बात है, चाहे वो ग्रोसरीज की बातें हैं, यू नो छोटी छोटी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात चलो कर लो और कुछ नहीं तो हमें कहीं ना कहीं पर रियलाइज होता है कि यार इलेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती है।
1: या एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ना ऐसा लाइक अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जगहों पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, सब हो रहा है एंड वो जो भी है मतलब उसका अधिकार है, क्या है अपना वे है। बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर तुम वोट ही नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हें पॉलिसीज के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर आगे चल के अगर हमें कुछ रेस करना है तो हम क्या रेस करेंगे? जो हमारे पास चॉइस था यहाँ पे डिसाइड करने का, कुछ अपने हाथ से कुछ करने का, चेंज लाने का या फिर नहीं लाने का, तो वो हमने अगर नहीं लिया स्टेप, then we don't have the right to complain as well.
2: 100%.
1: So it's not just our right, but I think it's our duty to go and vote. And the intention हम ये क्या कर क्यों कर रहे election का special show, हमारे लिए भी बहुत मेहनत है, हम कर रहे इसलिए ताकि आप एक informed decision ले सके vote करने से पहले।
2: And to make sure कि अपनी वोट आप जरूर रजिस्टर करते हैं, अपने आप को आप रजिस्टर करते हैं टू वोट।
1: एक ही वीक बाकी अभी उसके लिए, आई थिंक
2: या 10 days, like in 10 days you have to do it, like 25th को it will be over and out.
1: Yeah, with that, we'll see you tomorrow. Have a wonderful rest of your evening.
2: Bye.

0: Happy Hour on Hum.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.

0: यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध के सेटल हो जाएं क्योंकि इस रेलगाड़ी से बाहर जाने का कोई द्वार नहीं है।
1: राजा बजाना।

0: हमारे बीट पे डांस करने के लिए धन्यवाद, खाना खा के जाइएगा।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट।

0: birthday on Hum.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
4: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
5: Curtain Studio's massive three-day sale is on now. Our top-selling studio curtain and blind range is now half price. That's right, 50% off all studio ready-mades and custom fabrics and blinds. But be quick, sale ends Saturday. Only at Curtain Studio.
6: Be in to win one of five $10,000 MyTitan gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho, camping ka pura gear le sakte ho, ek room ka makeover kar sakte ho, ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo, and you are in the draw. Plus, club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at MyTitan.
7: दिवाली आई, खुशियाँ लाई, PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, PFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं, 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च PFSL और कॉल 09846-9934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।
8: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: India aa raha hai Auckland, and the Blue Tigers need your voice behind them. देखिए इंडिया को ऑल व्हाइट्स के अगेंस्ट गो मीडिया स्टेडियम थर्सडे 12 नवंबर को, एक रेयर चांस अपनी नेशनल टीम को न्यूजीलैंड की जमीन पर लाइव देखने का। ब्रिंग द फैमिली, वेयर योर कलर्स एंड फिल द स्टेडियम विद प्राइड। अडल्ट टिकट सिर्फ $20 से शुरू, किड्स $10 से, प्लस बुकिंग फीस। बुक नाउ एट टिकटेक एंड बी देयर फॉर अ हिस्टोरिक नाइट।
10: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
11: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
10: Night Cafe on Hum. Just baat ki narmi, mohabbat ki raaz.
12: Whispers of Ishq.
13: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Diwali special on Hum. This Diwali experience, the timeless story of the Ramayan with Hum. Hum brings to you Ramayan Ek Gatha, a specially produced series honge of 1 to 2 minute epic storytelling segments, jahan par memorable stories, characters or moments from the Ramayan aapke liye pesh kiya jayega. Presented across different times throughout the day, 8:20 AM pesh hoga, 1:30 PM or 6:45 PM. These short lekin bahut hi taakatwar stories are designed to bring the spirit, values or timeless wisdom of the Ramayan into your everyday listening. Aur ye sunne ke liye bilkul taiyar hai, kyunki this Diwali celebrate the festival of lights with stories that have lived four generations. Ramayan Ek Gatha, only on Hum aapke liye. Krish ka saath hai, sunte raho Hum, playing Bollywood's biggest hits.

0: Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं. नवरात्रि की सेलिब्रेशन सभी जगहों पर है तो माँ की पूजा सभी जगहों पर हो रहा है. जय जयकार देवी माँ की हो रही है तो ऐसे में काफी जगहों पर आप जाकर भाग भी ले सकते हैं. रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाउ फ्रॉम संडे 11th अक्टूबर टू ट्यूजडे 20th अक्टूबर तक होगा फ्रॉम 6 PM. गरबा और डांडिया रास अर्ली आफ्टर कथा यहाँ पर होगा, डेली आफ्टर कथा होगा. श्री हनुमान मंदिर 14 बे पार्क प्लेस बर्गडेल नॉट शो ओकलैंड फ्रॉम 6:15 PM. जय गरबा फ्रॉम 8:10 PM टू 9:30 PM. भजन जैमिंग और डीजे गरबा यहाँ पर होगा 18 अक्टूबर फ्रॉम 6:30 PM. इसके अलावा श्री आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर फ्रॉम 11th अक्टूबर टू 20th अक्टूबर फ्रॉम 7 PM टू 9 PM एट 28A वॉम्सली रोड ओटाहू ओकलैंड में नवरात्रि मनाया जा रहा है तो आप यहां पर भाग लेने के लिए जा सकते हैं. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट फ्रॉम संडे 11th अक्टूबर टू ट्यूजडे 20th अक्टूबर फ्रॉम 6:30 PM एट द के 5/57 केवेंडिश ड्राइव मनुका ऑपोजिट वेयर हाउस. गरबा डांडिया और हुद्दतासा रास डेली यहाँ पर होगा कथा के बाद. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. कुछ और सूचनाएं कुछ ही देर में.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
1: आप सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून में आप अपना शेयर ऑफ 5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जीत सकते हैं दिस दिवाली विद हम। तो ड्रॉ 30th अक्टूबर को होगा। ड्रॉ डेट के और भी नज़दीक हम जाने लगे हैं और आपको बस इसमें पार्टिसिपेट करना है। कीवर्ड टेक्स्ट करें NZPMI, NZPMI अपने नाम के साथ 5599 पर और आप ड्रॉ में शामिल होकर जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ Mitre 10 वाउचर्स। एक ही विनर होगा जिसको मिलेगा $1,000 वर्थ ऑफ Mitre 10 वाउचर्स। अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर ए फ्री साइट असेसमेंट। विजिट करें NZPMI.co.nz या फिर कॉल करें 0800-4NZPMI। तो कुछ टाइम के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ, टेक्स्ट करें NZPMI अपने नाम के साथ 5599 पर $1,000 वर्थ ऑफ Mitre 10 वाउचर्स जीतने का मौका है आपके पास।

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits. इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें. एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ. हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा. हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड. रामायणा मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स.
2: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634-234. TCs and lending criteria apply.
3: Like the smell of grass in the morning? Trade Chesters has been lawns become legendary. From seed to scarifiers, mowers to mulches, we've got everything you need to turn that embarrassing patch of Kaikoura into a golf green this summer. Want to be a lawn legend? Head to Trade Chesters today.
4: Remember your Fiji? The people who welcomed you like they'd known you forever. The laughter that started with strangers and ended with new friends. The family holiday where everyone still talks about that one night. The crab race you didn't expect to take so seriously. The moments that become stories you still tell. That's the Fiji feeling. And it's still here. Come back and make some more memories. Book your next escape at fijiairways.com.
5: Now when you're in the loop with ANZ and jump on a bus, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT buses with a personal ANZ Visa card. Eligibility, terms and conditions, fees and exclusions apply.
6: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
7: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
8: Fashion Landscape, जिनके नाम में ही फैशन हो, सोचिए उनकी टीम कितनी पैशनेट होगी. रिटेनिंग वॉल्स, कंक्रीट एंड पेविंग ड्राइवेज, फुटपाथ एंड कार पार्क्स, व्हीकल क्रॉसिंग्स, कर्बिंग एंड वॉकवेज, ड्रेनेज वॉक एंड न्यू बिल्ड, या फिर गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, कमर्शियल या रेसिडेंशियल, सब डिविजन्स या लाइफस्टाइल ब्लॉक्स, या चाहे हो प्लांटिंग, डेकिंग, फेंसिंग या पॉन्ड्स. ओवर 16 इयर्स लोकल एक्सपीरियंस. फैशन लैंडस्केप है लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट्स. कॉल 021-075-1330. फैशन लैंडस्केप, आपके आउटडोर स्पेस स्पेशलिस्ट्स.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. दिवाली की धूम सभी जगहों पर है, तो ऐसे में एक दिया एक कहानी. This Diwali on Hum. हम आपके लिए सेलिब्रेट करना चाहता है उस शख्स को जो समवन स्पेशल है आपके ज़िंदगी में. नॉट फैमिली बाय ब्लड, लेकिन फैमिली बाय हार्ट. कौन है वो लाइट ऑफ योर लाइफ, आप हमें बताएं, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, इंस्पायर किया, मेड यू स्माइल, सिंपली मेड योर लाइफ ब्राइटर बाय बीइंग इन इट. उनके होने से आपके ज़िंदगी में एक अलग रोशनी है. 0800-004-866 पर आप कॉल कर एक स्पेशल दिवाली शाउट आउट उनको दे सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं कि वाई यू अप्रिशिएट हैविंग देम इन योर लाइफ एंड गो इनटू द ड्रो टू विन $300 इनफैक्ट जीतने का मौका रहेगा. ड्रो विल हैपन ऑन फ्राइडे 6 नवंबर. तो दिस दिवाली वी आर सेलिब्रेटिंग द पीपल हु लाइट अप आवर लाइव्स, और हम ये मौका आपको दे रहे हैं एक दिया एक कहानी के दौरान. दिस दिवाली ओनली ऑन हम. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: Moisture और ventilation का problem लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
2: This Diwali, send love home with Lotus Foreign Exchange. Enjoy great rates on international money transfers. Visit the new Lotus West City Henderson branch or your nearest Lotus branch. Visit lotusfx.com or call 0800-442-288. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Happy Diwali. Terms and conditions apply.
6: रुजबेल, 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
7: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
6: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
7: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
6: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
7: बुक नाउ विद सन टूर्स।
6: कॉल करें 0800-478-686।
8: फैशन लैंडस्केप, जिनके नाम में ही फैशन हो, सोचिए उनकी टीम कितनी पैशनेट होगी। रिटेनिंग वॉल्स, कंक्रीट एंड पेविंग ड्राइवेज, फुटपाथ एंड कार पार्क्स, व्हीकल क्रॉसिंग्स, कर्बिंग एंड वॉकवेज, ड्रेनेज वर्क एंड न्यू बिल्ड, या फिर गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, कमर्शियल या रेसिडेंशियल, सब डिविजन्स या लाइफस्टाइल ब्लॉक्स, या चाहे हो प्लांटिंग, डेकिंग, फेंसिंग या पॉन्स, ओवर 16 इयर्स लोकल एक्सपीरियंस, फैशन लैंडस्केप है लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट्स। कॉल 0210751330। फैशन लैंडस्केप, आपके आउटडोर स्पेस स्पेशलिस्ट।
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
9: Night Cafe, जज्बात की नरमी, मोहब्बत के राज।
11: Whispers of इश्क।
12: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ इलेक्शन स्पेशल इन ड्राइव शो। कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं लेबर कैंडिडेट खरक सिंह तकनीनी, और आप इनको आप सुन पाएंगे हम पॉडकास्ट के जरिए अनफिल्टर्ड ड्राइव में। कुछ मुद्दों पर बातें की गई है, जैसे स्मॉल बिजनेस एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग, सुपर मार्केट कॉम्पिटिशन, रिटेल क्राइम एंड कम्युनिटी सेफ्टी, पुलिसिंग, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनके विजन फॉर तकनीनी एंड साउथ ओकलैंड, इनके आंसर्स क्या है, इनका लेटेस्ट पॉलिटिकल जो डिबेट अभी चल रहे हैं बिटवीन क्रिस हिपकिंस एंड क्रिस्टोफर लक्सन, इस पे इनका टेक क्या है, इनके आंसर्स क्या है, और व्हाट डज लेबर हैव प्लान्ड, और व्हाट कुड दीज पॉलिसीज मीन फॉर आवर कम्युनिटी। फुल कन्वर्सेशन अभी अवेलेबल है आपके लिए, ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर, फुल इंटरव्यू आपको मिल जाएगा विद खरक सिंह, लेबर कैंडिडेट फॉर तकनीनी ऑन हम Outer OS speaks, so hear the conversation before you make your decision. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम।

0: the moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। और आपको बता दूं कि रोवा डाउनलोड करने में बहुत फायदे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत सारे शानदार प्राइजेस, कंपटीशन में भाग लेने का मौका, म्यूजिक प्लस स्टेशंस की अगर बात करें तो 80s जुक बॉक्स, हम रिवाइंड, फिजी भजन, चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, फिजी कीर्तन संग्रह जिसमें बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब यहाँ पर ला दिया गया है, राहत फतेह अली खान के सूफी और कवाली सॉन्ग्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, 80s के गाने अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, हम रिवाइंड में 60s और 70s के हिट सुनना चाहते हैं तो रोवा आज ही डाउनलोड करें और इसमें काफी फायदे आपके लिए होता है और हमको अपने करीब रखने का मौका हमेशा रहता है। कृष का साथ है।

कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, गलत कहते हैं।

सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छूटी, साला किस्मत पटरी पर आ गई।

कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं।

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, Krish के साथ है और ऐसे ही हमारा साथ रहेगा all the way till midnight. याद रहे जो मैंने आपसे कहा था, $1,000 worth of Mytertain vouchers जीतने के लिए एक ही विनर को मिलेगा ये. तो फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून के दौरान आप हमारे पास भेजे अपना नाम, पहले तो लिखे NZPMI अपने नाम के साथ और 5599 पर भेजे. जितने भी लोग टेक्स्ट करेंगे आपके नामों को ड्रो में शामिल कर दिया जाएगा. $1,000 worth of Mytertain vouchers जीतने का मौका है. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI. Your local development experts for a free site assessment. Aap visit kare nzpmi.co.nz ya call kare 0800 4 NZPMI. Main Krish aapka saath de raha hoon.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब हमारी मुलाकात होती है अगले हफ्ते मंडे को, आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए, आपके लिए प्यारे प्यारे सॉन्ग्स और मंडे टू थर्सडे नाइट कैफे लेकर. अपना बहुत ही ख्याल रखें. हैव अ वंडरफुल फ्राइडे, हैव अ वंडरफुल वीकेंड. नेक्स्ट वीक मिलते हैं. गुड नाइट एवरीवन.

0: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायणा मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
1: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
2: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800 5644424।
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 0928130050 और विजिट फोकस किचन.co.nz।

0: Night Flight on Hum.
1: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ। हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा। हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायण मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स।
2: It's a very good time to go electric with Winger Motors. Limited time ke liye drive away in a new JQ J5 EV Summit. 0% interest or

0: Nz. On now till 31st October. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09 27 99 439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स डॉट को डॉट एनजेड।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए। दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर। अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स। स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर फॉर यू। और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz। सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ। द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली।
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
4: Night Fly.

offline

అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే ఇండియన్ రిజర్వ్.

0: Night Flight on Hum.
1: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
2: Rusbi, tickets book ho gaye.
3: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
2: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
3: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
2: Fatiha.
3: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
2: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
4: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
5: Hello everybody.
1: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
1: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
8: हाँ। अच्छा
7: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
8: मिसेस सिंह
9: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
1: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
10: Diwali is here and no show mein hoga roshni ka jashn bigger and brighter than ever Stefano's Financial Solutions with team Punish and Anna from Barfoot and Thompson presents No Show Diwali Festival of Light at Smales Farm Takapuna Saturday 24th October 12 noon to 9 pm dance performances all day fun activities for the kids yummy khana and shopping aur raat 9 baje spectacular fireworks free entry free car park No Show Diwali celebrate the light with your people

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
4: तो क्या करें?
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
8: Night flight on Hum.
9: Oh, मैं क्या? की हाल है? करन आगे सब दंगा? एक किस्सा सुनो। उस दिन दी बात है, जब यारा दा पै गया पंगा, सब करते हैं मेरी तरीफा, तू ही ता जान दे हो, मैं किन्ना शरीफा, किन्ना चंगा।

जगाती है कयामत कोई।

0: Night Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J Crew.
6: Reliance Ventilation System.
7: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: Moisture और ventilation का problem लगता है.
7: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
6: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
8: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
9: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
9: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आशा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
11: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड. For gold.
12: Be in to win one of five $10,000 Mitre 10 gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho, camping ka pura gear le sakte ho, ek room ka makeover kar sakte ho, ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo, and you are in the draw. Plus, club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at Mitre 10.
13: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर. अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स. स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर यू. और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है. बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz. सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ. कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: It's a very good time to go electric with Winger Motors. Limited time ke liye drive away in a new JQ J5 EV Summit. 0%

0: NZ on now till 31st October. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. Hi, मैं हूँ गुरु खंडोला from Logic Finance. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं, उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. Logic Finance के गुरु खंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं.
2: Terms, condition, fees and credit criteria apply. Call Logic Finance ke Guru Kendola ko on 0800 Logic G, which is 0800-564-24.
3: Fashion Landscape, jinke naam mein hi fashion ho, sochi unki team kitni passionate hogi. Retaining walls, concrete and paving driveways, footpath and car parks, vehicle crossings, curbing and walkways, drainage work and new build. Ya phir gardens, playgrounds, commercial ya residential, subdivisions ya lifestyle blocks. Ya chahe ho planting, decking, fencing ya ponds. Over 16 years local experience. Fashion Landscape hai landscaping experts. Call 021-075-1330. Fashion Landscape, aapke outdoor space specialists.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. Hi, मैं हूँ गुरु खंडोला from Logic Finance. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
2: Terms, condition, fees and credit criteria apply. Call Logic Finance ke Guru Kendola ko on 0800 Logic G, which is 0800 56 4424.

दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। या

0: Night Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: माइटन मेगा हेंडरसन अब वीकडेज पे सुबह 6 बजे से खुला है। बिल्डिंग सप्लाईज, टिम्बर, पावर टूल्स और ट्रेड एसेंशियल्स सब कुछ साइट पे जाने से पहले ही उठा लो। गेट इन, गेट सॉर्टेड एंड गेट द जॉब डन अर्लियर। ओपन फ्रॉम 6 AM। माइटन मेगा हेंडरसन।
2: द बिग सेल इज ऑन नाउ एट बेजरस विद अमेजिंग डील्स ऑन सिलेक्टेड स्लीपी हेड बेड्स लाइक 60% ऑफ स्विस टेक प्रिसिशन क्वीन साइज नाउ 3499। द बिग सेल एट बेजरस मेनिकाओ एंड पुकेकोहे वेयर ड्रीम्स बिगिन।
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
4: Indelible Homes, your building expert.
5: MediaWorks complaints. How can I help?
6: Yeah. Hello?
5: Hi.
6: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
5: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
6: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
5: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
6: Great. Sing it to me.
7: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.

0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very
2: acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: for your home. Harrington Living Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया। घर बेचने को कह रहे थे।
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
2: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
5: Diwali is here and no show mein hoga roshni ka jashn. Bigger and brighter than ever. Stefano's Financial Solutions with Team Punish and Anna from Barfoot & Thompson presents No Show Diwali. Festival of Light at Smales Farm, Takapuna. Saturday, 24th October, 12 noon to 9 p.m. Dance performances all day. Fun activities for the kids. Yummy khana and shopping. Raat 9 baje, spectacular fireworks. Free entry, free car park. No Show Diwali. Celebrate the light with your people.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
8: Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness.

देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नैरृति यानी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शरवाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है, दुर्गा दुर्गपारा यानी दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा यानी सभी की सारभूता, सर्वकारणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को हमारा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है, जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, फिर नमस्कार, बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार तथा उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, पुनः नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, हमारा बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, पुनः नमस्कार, शत शत नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, बार बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, फिर नमस्कार, बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से विद्यमान हैं, उनको नमस्कार, पुनः नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, हमारा नमस्कार, शत शत प्रणाम है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार तथा बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, पुनः नमस्कार अथवा बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, फिर नमस्कार, बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, पुनः नमस्कार, शत शत बार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार।

देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि रुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुम अभ्याययो तो ये जाह्नव्या।

ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार सब देवता जब स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहां किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहां एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं।

त्रैलोक्ये तु समस्तानि सांप्रतं भान्ति ते गृहे। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो तीनों लोकों में मणि हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं।

भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुंबस्याभिजातश्च समस्ता रत्नजात्या वेहनर्रपि ददौ तुभ्यं अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्यहृतानि ते स्त्रीरतन्मेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और उच्चही श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहां लाया गया है। यहां महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभायमान है, तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि

तत्रास्ते शैलो देशे अतिशोभिने। सा देवी ताम तथा प्राह शलक्षणम मधुर यागिरा। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहां आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहां देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूतोवाच देवी दैत्येश्वरः शुंभस्त्रैलोक्यम्।

परम ऐश्वर्यम अतुलम प्राप्स्यसे मत परिग्रहात् एतद् बुद्धया समालोच्य मत परिग्रहताम ब्रज। उनकी आज्ञा सदा सब देवता लोग एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को प्रास्त कर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रैलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरतन उच्चैः श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वो सब मेरे ही पास आ गए हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मांगते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महाप्राक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि रोवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांतः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदम धार्यते जगत। ऋषि कहते हैं, दूतों के यों कहने पर कल्याणमय भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देव्योवाच सत्यमुक्तम त्वया नात्र मिथ्या किंचित त्वयोदितम त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामलबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरः यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुंभो अत्र निशुंभो वा महासुरा माम जित्वा कि त्रेणात्र पाणिम गृहणातु मे लघु। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसको सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहां पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है।

0: पार्श्वम शुंभ निशुंभयौ केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि।
1: दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगे। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my
3: I would
2: fancy
3: say.
2: English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: तो कल की तरह आज के मौसम के लिए भी कहा गया है कि बारिश होगी, समय समय पर गंभीर बारिश होने की संभावना, यहां तक कि आज बादल गरजने की भी संभावनाएं बताई जा रही है। सनराइज इसी घंटे 6:35 AM पर होगा, सनसेट होगा 7:39 PM पर। अभी टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 10.9 डिग्रीज है, हाई ऑफ 17 एक्सपेक्टेड है लेटर टुडे। ओवरनाइट आज का टेम्परेचर 6 डिग्रीज तक रहने वाला है।
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो।
1: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। 8 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 6:00 एंड एज प्रॉमिस्ड द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर हम दोनों आपके साथ शामिल हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग, आज शुक्रवार है, 16 तारीख अक्टूबर, आज ये दिन, आज का ये मंगल प्रभात, आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ हो।
1: तो जितने भी लोग सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे 104.2 FM पर या रोवर ऐप पर, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अभी ऑन द ब्रेकफास्ट शो अगर देखा जाए तो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ब्रेकफास्ट कैचअप। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट तो आपको बस इतना समझा दें, ब्रेकफास्ट कैचअप इज बेसिकली अस डूइंग अ क्विक कैचअप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे वो खबरों के मामले में हो, चाहे वो यू नो एंटरटेनमेंट के दुनिया के मामले में हो, जो भी है हम कैचअप करते हैं, आपको अपडेटेड रखते हैं।
3: तो इन चीजों की खातिर तैयार रहिएगा। द फाइनल शो ऑफ द वीक और इस हफ्ते के ब्रेकफास्ट शो के कुछ आखिरी अपॉर्चुनिटीज हम आपको देने वाले हैं इनाम जीतने के।
1: बिल्कुल, तो हमारे साथ ही बने रहिएगा क्योंकि आज आपको बताएंगे क्या कुछ जीतने का मौका है, कैसे जीत सकते हैं आप, जिसके लिए आपको करना क्या है। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के सफर की, हमारे साथ ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।

0: आने वाले बच्चों की उम्र 7 से 14 साल के बीच है और कई घायलों का इलाज अभी भी जारी है। भारत में दिल्ली पुलिस ने पब्लिक से कॉकरोच जनता पार्टी के आज होने वाले मार्च में शामिल ना होने की अपील की है और सेंट्रल पार्क में सिर्फ 11 लोगों को तिरंगा ले जाने और नेशनल एंथम गाने की इजाजत देने का प्रस्ताव रखा है। ये ऑफर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा प्रोटेस्ट पर रोक लगाने से इनकार करने और पुलिस को गैदरिंग रेगुलेट करने का निर्देश देने के बाद आया है, जिसके बाद एरिया में सेक्शन 163 BNSS लागू कर दिया गया है। CJP फाउंडर अभिजीत दिपके ने लोगों से शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क पहुंचने की मांग की और सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल भी उठाया। फिजियन प्राइम मिनिस्टर सिथिवेनी रंबुका ने कन्फर्म किया है कि लेंस मिनिस्टर फिलिमोनी वोसरोंगो अगले एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर होंगे, जबकि अगले अटॉर्नी जनरल के लिए वो कैबिनेट के बाहर तलाश करेंगे। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार रंबुका के मुताबिक उनके किसी भी कॉलीग के पास IG पद के लिए पूरी क्वालिफिकेशंस नहीं है और नए जस्टिस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट से पहले भी क्वालिफिकेशंस वेरीफाई की जाएंगी। स्वर्गीय मिनिस्टर अग्निदेव सिंह की जगह लेने वाले वसरोंगो के लीगल बैकग्राउंड की वजह से प्राइम मिनिस्टर को उम्मीद है कि वो एम्प्लॉयमेंट पोर्टफोलियो की जिम्मेदारियां आसानी से संभाल सकेंगे। रग्बी लीग वर्ल्ड कप के पहले मैच में कल न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कल न्यूजीलैंड को 24-22 से हराया। टूर्नामेंट के अंतर्गत आज 7:45 PM पर सामोआ फ्रांस का सामना करेगा। इसके अलावा आई लीग के मैचेस जो हैं ये भी आज से शुरू हो रहे हैं। आज रात 10 बजे सिडनी FC का मुकाबला वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स से होगा। कल शाम 5 बजे ऑकलैंड FC मेलबर्न सिटी को होस्ट करेगा, जबकि वेलिंगटन फिनिक्स का मैच रविवार को 3 बजे मेलबर्न विक्ट्री के खिलाफ खेला जाएगा। UEFA यूरोपा लीग के कई मैचेस आज खेले जा रहे हैं और इन मैचेस पर अपडेट्स जो हैं ये बारी बारी से आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बॉलीवुड मोस्ट वांटेड आपके लिए जब या माफ कीजिएगा चार्ट बस्टर जबकि आपके लिए लेकर आ रहे थे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स 28 मिनट्स आफ्टर 6 फॉर नाउ ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और इधर हमने कहा था कि ये हमारा ब्रेकफास्ट कैचअप आवर है तो आपके साथ कैचअप भी हम करते रहते हैं तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो आपने भेजे हैं वो देख लेते हैं और सबसे पहले आज अगर देखा जाए तो राज ड्राइविंग फॉर आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट इन्होंने अपना मैसेज हमारे पास भेजा था थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए राज और इसके बाद मिस्टर माटा माटा इन्होंने जय माता दी हैप्पी फ्राइडे कहा है सभी को परमा महाराज जी का भी मैसेज जो है ये हमारे पास आया है और इन्होंने भी सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग जो है ये विश किया है एंड अपार्ट फ्रॉम देम आज बॉबी मान जी इन्होंने भी सुबह सुबह अपना गुड मॉर्निंग मैसेज हमारे पास भेजते हुए सभी को याद करते हुए कहा है हैप्पी सिक्स नवरात्रि हैप्पी फ्राइडे एन्जॉय द वीकेंड माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी मैसेज के लिए
1: बहुत सारी चीज़ों के साथ कैचअप हमें करना है और इन चीज़ों के बारे में तो आपको बताएंगे ही लेकिन याद दिलाते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे को जो स्टेफानोस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और टीम पुनिश एंड एना फ्रॉम बफेट एंड थॉमसन ये ला रहे हैं नो शो दिवाली स्माइल्स फार्म ताकापुना में ये होने जा रहा है दिन में 12 से रात 9 बजे तक ये होगा डांस परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट द डे आपके लिए होंगे खाना पीना फूड स्टॉल्स फेस्टिव शॉपिंग और रात को 9 बजे बहुत ही शानदार फायरवर्क्स डिस्प्ले भी होगा और यहाँ पर द गुड थिंग इज एंट्री एंड पार्किंग इज एब्सोल्युटली फ्री
0: बिल्कुल तो नेक्स्ट वीक सैटरडे 24 अक्टूबर को दिन में 12 से लेकर रात 9 बजे तक स्मेल्स फार्म ताकापुना जो है पहुंचकर आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं फिलहाल आज है 16 अक्टूबर 30 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर तो थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और अपडेट्स विल बी टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड क्या कुछ हो रहा है बॉलीवुड में और आज 16 अक्टूबर को क्या कुछ मार्क किया जा रहा है ये चर्चा भी आपके साथ हम जरूर करेंगे
2: Accurate traffic.
3: Experience Picasso like never before.
4: Cloudy all day today, some showers and a high of 17 degrees. A couple of little slow patches here and there, but still a very quick one coming into the city on our motorways. Northern just starting to sort of build around Silverdale and Albany. 18 minutes in from Constellation is your maximum. Northwestern, 17 minutes in from Massey, just some traffic building overall. And Southern the same. It's still just 20 minutes in from Monaco, 32 Drury to town.
3: Picasso, designed by Paul Smith, 80 original works, on now at Auckland Art Gallery.
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है
5: moisture और ventilation का problem लगता है
6: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है
5: oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111 Reliance Ventilation Systems solving ventilation problems for over 18 years.
8: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है क्या आप हिम्मत हार चुके हैं तो एक मौका मुझे देके देखिए हाय मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं
9: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी व्हिच इज 0800-564-424
10: The sky cracks open. Your nemesis descends. He's brought an army. It's a bit dramatic. And there you are, cape billowing, jaws set, underwear over your pants. The fate of Tamaki Makaurau rests on your buff shoulders, so you leap into the sky, adjust your underwear, and shout!
11: The next station is Te Waihorotiu.
12: Watch, scroll, draw, game, relax. Hop on for some me time on AT, buses, trains and ferries.
13: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
14: मुझे भी।
13: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
15: Breakfast Catch-Up.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja aapke liye jari hai. Only on Hum playing Bollywood's biggest hits 104.2 FM ya Rova app ke zariye agar aap hamare saath shamil hue hain to aap sabhi ka bahut bahut shukriya ek baar phir. Aur idhar dekhiye agar kya kuch updates jo hai ye hamare haath lage hain to aapke saath zarur hum share karte hue chalenge kuch aur bhi zaruri jankariyan. Waise Christchurch ka naam jo hai ye kafi trend kar raha hai filhal internationally amongst the different countries of the world aur kyun ye hum aapko batayenge aaj late in the show.
1: Filhal aaj 16th of October, today is World Allergy Awareness Day.
0: Okay.
1: Aur iske saath department store day hai aaj. Aaj World Anesthesia Day ye bhi mark kiya ja raha hai. Steve Jobs jinhone is duniya ko revolutionize kiya tha with Apple products. आज स्टीव जॉब्स डे ये भी मार्क किया जा रहा है. वर्ल्ड स्पाइन डे ये आज है. तकरीबन दुनिया में 1 बिलियन लोग ऐसे हैं हु सफर फ्रॉम स्पाइनल पेन और स्पाइन इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ डिसेबिलिटी ऑन द प्लेनेट. ये सबसे बड़ा कारण है. इसके साथ आज नेशनल बॉसेस डे है.
0: ओके.
1: बॉसेस डे यू नो बॉसेस की जिम्मेदारी कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स. तो आज अपने बॉस को थैंक यू कहने का दिन है. ग्लोबल कैट डे है आज और साथ में वर्ल्ड फूड डे.
0: आज वर्ल्ड फूड डे है.
1: 16th ऑफ अक्टूबर.
0: इंटरेस्टिंग. यू नो आई डोंट नो आजकल ये होता या नहीं बट पहले व्हेन आई वाज इन स्कूल बैक देन की बात मैं बता रही हूँ देयर यूज्ड टू बी दिस सेलिब्रेशन वर्ल्ड फूड डे के मौके पर.
1: और सभी स्कूल्स एक साथ इकट्ठा होते थे.
0: नहीं सभी स्कूल्स या इन डिफरेंट ओकेजन आई वुड से बट हमारे खुद के स्कूल में पता है क्या होता था.
1: नहीं पता.
0: वी वुड गेट टूगेदर. जो रूम्स होते हैं वो एक साथ मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. And the teacher will also put in something. और फिर सब एक food items का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पर veggies हो fruits हो या cooked item हो जो but healthy इनका इस्तेमाल करते हुए we'll make a big art display. Like उसे अपने अंदाज में डिस्प्ले करना जैसे हेलोवीन के दौरान पम्पकिन कार्विंग्स वगैरह जो कर लोग डिस्प्ले करते हैं. बट ड्यूरिंग वर्ल्ड फूड डे वी डू विद दैट विद ऑल द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एज वेल. तो एक बहुत मैजेस्टिक आर्ट डिस्प्ले जो है ये होता था इस दौरान और फिर सारे बच्चे जो है मिलकर they'd enjoy that food, share it with each other. और कभी कभी like our school was in a village, तो आस पास जो घर होते हैं वहाँ पे भी हम उसे share करते थे, like बांटते थे.
1: हमारे time पर क्या होता था कि वो district level पर होता था.
0: अच्छा.
1: हाँ तो सभी when we were in primary school, सभी स्कूलें जो हैं किसी एक venue पर इकट्ठा होती थी.
0: They'd compete.
1: वहाँ पर food stalls होते थे. Ministry of Primary Industries और साथ में कई अन्य जो organisations हैं वुड कम देयर जहां पर फूड को लेकर अवेयरनेस जो है ये क्रिएट किया जाता था. स्कूल्स के बीच फन कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्पोर्ट्स होता था और साथ में ऑरेटरी कॉन्टेस्ट होता था. आई टुक पार्ट इन द ऑरेटरी कॉन्टेस्ट.
0: इंटरेस्टिंग. तो पहले सेलिब्रेशन ऑफ दीज थिंग्स एंड अवेयरनेस ऑफ दीज थिंग्स वुड बी सो डिफरेंट. आई एम नॉट श्योर कि आजकल ये होता है या नहीं. प्रोबेबली जो स्कूल जाते हैं जो बच्चे अभी वही हमें बता सकते हैं कि उनके स्कूल्स में क्या इन चीज़ों को उतना अहमियत दिया जाता है या नहीं. प्रैक्टिकल तरीके से यू नो प्रैक्टिस करते हुए या इन्वॉल्व्ड होकर इसमें इसे सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है या नहीं. आई हैव नो आइडिया यहाँ के स्कूल सिस्टम को स्पेशली ध्यान में रखते हुए बट आई कैन से कि द वे वी यूज्ड टू सेलिब्रेट थिंग्स और उसके बारे में जो अवेयरनेस क्रिएट करते थे उसका अलग ही मजा होता था.
1: बिल्कुल. वैसे आज 16th ऑफ अक्टूबर को जन्म हुआ था शार्दुल ठाकुर का.
0: अच्छा.
1: शार्दुल ठाकुर लुक्स लाइक यू डोंट नो हिम.
0: नो.
1: ये इंडियन क्रिकेटर है.
0: ओके. okay.
1: इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था और इनके साथ आज और भी कई लोग जो हैं ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडियन रसलर पवन कुमार और साथ में राजीव खंडेलवाल इनका भी आज जन्मदिन है. अनिरुद्ध रविचंद्र.
0: ओके.
1: okay. ये इंडियन सिंगर है, म्यूजिशियन है.
0: यस. बहुत जाने माने कंपोजर हैं और सिंगर भी है. और ज़्यादातर इन्होंने आई थिंक जो रीजनल सिनेमा के लिए मेनली या फिर यू कहे कि साउथ इंडियन फिल्मों के लिए इन्होंने कंपोज ज़्यादा किया है बट ही हैज़ डन अ फ्यू बॉलीवुड सॉन्ग्स एज वेल.
1: इनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन आज इनका भी बर्थडे है और इनके साथ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, ये भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं।
0: क्या बात है, इतने सारे लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं, तो अगर आज इनके साथ आप भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, इट्स अ स्पेशल डे फॉर यू, देन व्हाई नॉट सेलिब्रेट इट विद अस। 5599 हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है, इस पर आप हमारे पास अपने मैसेजेस जो है ये टेक्स्ट कर सकते हैं। बिफोर 7 AM आ जाएगा तो अच्छा होगा। एंड याद रहे कि हम आपको वेरी हैप्पी बर्थडे जो है अगले घंटे अराउंड 7:40 के आसपास जो है ये विश करेंगे। फिलहाल समय की ओर देखें, इट्स 2 minutes away from 7 for now. थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आपके लिए बॉलीवुड रिलेटेड अपडेट, और आज का हमारा बॉलीवुड मूवी जो है ये भी किस करने का मौका आपको हम देंगे।
16: Let's go.
15: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: interest be on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Hum, accurate traffic.
2: Core 5 Festival this Saturday.
3: Showers on and off on a mostly cloudy day, a high of 17 degrees. Into the city, motorway network still flowing pretty well. Southern, 22 minutes, Manukau to town, 34 from Drury. Building overall and a bit of a slow patch at Green Lane. Northwestern, slowing close to the CBD, otherwise just building overall too. 19 minutes, Massey to the city. Northern, 19 in from Constellation, slow there to Waido Valley, otherwise we're clear.
2: Core 5 Festival this Saturday in Warkworth. Live music, food trucks, free entertainment. Core5Festival.nz.
4: Sona Sansar Papa Toto ke gehno ke saath, aap bhi chamak jayenge.
5: Churi, kangan, payal, bali, jhumke aur chokar. Ye sona wahi Sona Sansar hai, jahan Delhi se lekar Dubai tak ke sabhi gold jewelry designs milte hain, samjhe?
4: Sona Sansar Papa Toto, jahan tha, wahan abhi bhi hai. Shop inside with Aza Design Studio, corner of Great South Road and East Tamaki Lights, Papa Toto.
6: Sona Sansar, 138 Great South Road, Papa Toto. Sona Sansar, you are never too old for gold.
7: Nela Outlet Store is having a huge 3-day sale. Today is your last chance to get huge savings with up to 60% off a range of selected Nela appliances. Your kitchen, your sanctuary, your chance to grab quality Nela appliances at amazing prices, but for 3 days only. Don't miss out on Nela Outlet Store's huge 3-day sale, last day today, and only at 880 Great South Road, Penrose. For more info, go to steelfort.co.nz.
8: Remember how Fiji feels? The welcome, the laughter, the people who became part of your story, the moments that became stories you still tell. That's the Fiji feeling, and it's still here. Now, come back and make some more memories. The Fiji Airways sale is on now, but don't wait. Sale ends November 3rd. Book your next Fiji escape at fijiairways.com or call your local travel agent.
0: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
10: 14 minutes are gaye hain abhi 7 bajne mein. Bollywood ke baare mein humne kaha tha baatein karenge. कल ये खबर काफ़ी चर्चे में आई कि एक्टर इमरान खान जो है इनको इंडिया छोड़कर जाने का आदेश जो है ये दे दिया गया है बाय 28th of October
11: जी
10: अभी से तकरीबन अनदर 10-12 डेज में ही हैज़ टू लीव इंडिया क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था
11: yes.
10: और उसके बाद काफ़ी सवाल जो है ये उठाए गए और काफ़ी बातें इसके बारे में हो रही हैं वन ऑफ देम बीइंग शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि इमरान खान इज नॉट एन
11: इंडियन सिटीजन
10: इंडियन सिटीजन
11: यूएस सिटीजन है वो
10: ये यूएस सिटीजन है और उनके पास OCI है यानी जो OCI कार्ड जो दिया जाता है
11: NRIs को
10: हाँ या अप्लाई जो करते हैं जो दोज हु क्वालिफाई दे गेट इट आई थिंक तो बीजेपी के एक पॉलिटिशियन है या मेंबर है उन्होंने शिकायत की थी इमरान खान के बारे में और तब जाकर ये कदम उठाया गया उन्होंने अपने कंप्लेन में कहा था कि इंडिया में हजारों इमरान खान हैं वो चाहते हैं कि वो यहाँ रहें और इसी कंट्री को बदनाम करें That's what his complaint was. और उनका कहना है कि ऐसे सभी लोगों को इंडिया से निकाल देना चाहिए दे शुड बी डिपोर्टेड तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर आपको पता नहीं है जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास एक स्पेशल पावर है अंडर सेक्शन 7 जिसके तहत वो रेगुलेट कर सकते हैं या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं द एंट्री डिपार्चर या कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया
11: Okay.
10: क्योंकि इमरान खान इज अ फॉरेन नेशनल यूएस का सिटीजन है और वो सरकार को अनुमति देता है सेक्शन 7 टू इम्पोज कंडीशंस ऑन देयर स्टे एंड मूवमेंट इन द कंट्री सेक्शन 29 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है विद द रिमूवल ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया और अगर कोई विदेशी है किसी तरह के सर्कमस्टांस में इन्वॉल्व है दैट इज कवर्ड बाय द एक्ट including violations of its provisions or orders, तो उसके तहत ये कदम उठाए जा सकते हैं. इमरान खान के केस में नोटिस जो है ये डायरेक्ट कर रहा है उनको टू लीव इंडिया बाय 28 अक्टूबर फॉलोइंग हिज पार्टिसिपेशन इन द 10 अक्टूबर प्रोटेस्ट. और नोटिस और एलिगेशंस जो है ये नहीं एस्टेब्लिश करते हैं कि उन्होंने कोई जुर्म किया है.
11: अच्छा, जस्ट ही पार्टिसिपेटेड, उस वजह से उनसे कहा जा रहा है कि आप जाओ.
10: हाँ, इमरान खान जैसे हमने कहा कि वो एक इंडियन नेशनल नहीं है और रेलेवेंट प्रोविजंस के अंतर्गत उनको इंडिया से निकलने का आदेश दिया गया है. लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आर अनहैप्पी,
11: ऑब्जेक्टिंग टू इट, यस,
10: अनहैप्पी अबाउट द फैक्ट कि इस तरह का कदम जो है भारतीय सरकार ने उठाया है.
11: या एब्सोल्युटली, दिस इज अस जस्ट इन्फॉर्मिंग अबाउट व्हाट द सिचुएशन इज राइट नाउ. और ऑफ कोर्स अभी बहुत से अलग अलग सिनेरियोज जो है ये सामने आ रहे हैं, खबरें सामने आ रही है इन रिगार्ड्स विद व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन इंडिया राइट नाउ. बट व्हाटएवर द अपडेट्स आर, ये हम आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे. फिलहाल चलिए आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे गेस करने का टाइम हुआ. और सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो बॉलीवुड मूवी आपको गेस करनी है वो बहुत सिंपल है. आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है और हमें बताना है एक ऐसी फिल्म का नाम जो एक मिठाई भी है. यू नो, अभी नवरात्र चल रहे हैं.
10: बर्फी.
11: अरे यार,
10: नहीं, और भी फिल्में होंगी ना.
11: नहीं हुआ था
10: तो फिर आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं.
11: अगर कोई और फिल्म नहीं हुई आफ्टर नेम्ड आफ्टर मिठाई तो फिर हो गया पूरा. बट एनीवेज, तो या आज आपको किसी भी एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म का नाम बताना है विच इज नेम्ड आफ्टर अ स्वीट, एन इंडियन स्वीट और एनी स्वीट इन रिगार्ड्स विद दिस. और आप हमारे पास अपना आंसर जो है ये टेक्स्ट कर सकते हैं, BF स्पेस आंसर ये नेम लिखकर 5599 पर आप भेजिए. देखते हैं आप में से कितने लोग आज हमारे पास अपना जो बॉलीवुड मूवी जो है ये टेक्स्ट करते हैं और कितने लोग पहचान पाते हैं ऐसी कोई एक फिल्म जो कि एक मिठाई के नाम पर है. BF स्पेस आंसर योर नेम 5599 पर आपको भेजना है.

0: 4।
1: चार मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में 7:00 फ्राइडे 16th of October की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार मुबारक हो। ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा हम दोनों आपका साथ दे रहे हैं और 104.2 FM या रोवा ऐप के जरिए हमारे साथ आप बने हुए हैं, तो उसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए।
2: थैंक यू सो मच। और इस घंटे बहुत सारी चीजें जो है ये होने को है ऑन द ब्रेकफास्ट शो स्टार्टिंग ऑफ। आज का दिन आपका कैसा रहेगा, योर राशि वाइब्स ये हम आपके लिए लेकर आएंगे। 7:30 न्यूज हेडलाइंस, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिजी स्पोर्टिंग वीकेंड, बहुत सारी चीजें होने को है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जब स्पोर्ट्स की बातें हो रही हैं तो जल्दी से आपको याद दिला दें कि मंडे को जो ड्रॉ है ये किया जाएगा, एक डबल पास है हमारे पास टू गिव अवे, जहां पर आप जाकर 12th of November को ऑल व्हाइट्स वर्सेस इंडिया जो सॉकर मैच है गो मीडिया स्टेडियम यहीं ऑकलैंड में इसे देख सकते हैं। और इसके लिए टाइम अब बहुत ही कम है, एंड इंटरेस्टिंगली बहुत कम लोगों ने अभी तक मेरे ख्याल से अपनी
1: पार्टिसिपेट किया है। यस,
2: हां, लेट्स जस्ट गो।
1: इज इट लाइक पॉसिबल कि फुटबॉल फैंस नहीं है या इंडियन फुटबॉल टीम के फैंस नहीं है?
2: आई एम नॉट रियली श्योर इंडियन फुटबॉल टीम के कितने फैंस हैं यहाँ पर, बट टोटल ऑफ 24 एंट्रीज ही आई हैं अभी तक हमारे पास। भाई जरा सोचिए, ऑल व्हाइट्स विल बी इन एक्शन इस साल। आई कांट रिमेम्बर व्हेन वाज द कोई फ्रेंडली इंटरनेशनल था, आई थिंक
1: उन्होंने खेला था।
2: और इंडियन नेशनल सोका टीम पहली बार न्यूजीलैंड में एक मैच खेलने जा रही है, और वो देखने के लिए बिल्कुल फ्री में हम आपको एक नहीं डबल पास दे रहे हैं।
1: बिल्कुल, और दो दो लोग जा सकते हैं। बेसिकली अगर आपने पार्ट लिया, आप जीते, तो आपकी मर्जी, आप जिसको चाहे उसको लेकर जा सकते हैं अपने साथ। द चॉइस इज बेसिकली योर्स, बट फॉर दैट डिसीजन फॉर यू टू मेक, आपको एटलीस्ट हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हुए जीतना होगा, और जीतने के लिए पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी। आई पर्सनली फील शायद इंडियन फुटबॉल टीम के उतने फैंस नहीं है, बिकॉज ऐसा है कि अगर क्रिकेट की बात होती तो शायद ये डिस्कशन हम कर भी नहीं रहे होते राइट नाउ।
2: अच्छा, तो ऑल वाइट्स के भी फैंस नहीं है क्या?
1: नहीं, ऑल वाइट्स के भी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता।
2: Then who knows?
1: जो फैंस है उनको पता है, एंड इफ यू आर अ फैन, इफ यू वांट टू गो एंड विटनेस द मैच एंड यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, देन यू नो व्हाई। बट एनीवेज, द चॉइस इज योर्स। हमने आपको बता दिया कि हमारे पास आपको देने के लिए है डबल पास, एंड ये प्रोसीजर है। जैसे कि आपको विजिट करना होगा हमारा फेसबुक पेज, हम 104.2 FM हमारे फेसबुक पेज का नाम है, वहाँ पर फीचर्ड फोल्डर में आपको पोस्ट दिखेगा इन रिगार्ड्स विद दिस। बस उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आपको जाना है, किसी को टैग करना है आपके फेसबुक फ्रेंड्स लिस्ट से, और साथ में उस पर्टिकुलर मैच का स्कोर प्रिडिक्ट करना है। ये जो मैच होने जा रहा है बिटवीन द ऑल वाइट्स एंड ऑफ कोर्स द इंडियन फुटबॉल टीम, तो इस मैच का जो स्कोर आपको लगता है क्या होगा वो आपको प्रिडिक्ट करना है। इट्स हैपनिंग ऑन द 12th of November एट गो मीडिया स्टेडियम, एंड उससे पहले आपको एंट्री में पार्ट ले लेनी है, क्योंकि ड्रॉ जो है ये मंडे को हो जाएगा। आपने कहा ना
2: मंडे को ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ड्रॉ जो है ये हो जाएगा। द लास्ट पर्सन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वाज ऑलमोस्ट 10 hours अगो, इन्होंने हिस्सा लिया था, दैट वाज रितिका। तो उनका शी इज द लास्ट पर्सन जिनका नाम ड्रॉ में गया था। तो अभी देखेंगे, अभी से लेकर दो गानों का टाइम होगा, एंड वील सी
1: कि क्या कोई पार्ट लेता है या नहीं।
2: क्या आप में से कोई है हु वुड रियली लव टू गो and watch this match, India versus All Whites, 12th of November, Go Media Stadium पर यहीं Auckland में ये मैच खेला जाएगा।
1: पिछले घंटे सवाल में पूछा था ऐसी कौन सी Bollywood movie है which is named after a Indian sweet, और आपको बताना था, आपने तो वैसे बर्फी बोल दिया था, but कई लोगों ने हमारे पास अपना जवाब भी भेजा, बरेली की बर्फी। हर्षदीप ने लिखा, निलेश ने बर्फी कहा, विश्नील ने बर्फी कहा, जलेबी हरमिलाप ने कहा, और उन्होंने कहा कि आपके आंसर देने से पहले बर्फी था, लेकिन उन्होंने फिर बाद में जलेबी बता दिया। एक फिल्म आई थी, कंगना रनौत ने काम किया था मेरे ख्याल से इसमें।
2: नहीं, मैं वो।
1: और धर्मेंद्र आचारी ने भी वैसे अपना जवाब जो है ये बर्फी लिखा है, और साथ में चकना चूर, चमचम, बरेली की बर्फी, जलेबी, नितिका ने बहुत से आंसर्स भेजे।

0: Rashi Vibes. सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज करीबी रिश्तेदारों के आने से घर में काफ़ी एक्साइटमेंट होगा, काम का दबाव ज़्यादा होगा, लेकिन उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। अननेसेसरी चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और आपका बजट जो है इसकी वजह से ये भी बिगड़ सकता है। और इसके अलावा आज कहा जा रहा है आपके लिए कि मौजूदा बिजनेस के अलावा अन्य सेक्टर्स में भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये ढूंढनी पड़ेंगी। अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं लाइफ में, तो इन चीज़ों का ख्याल जो है ये आपको डेफिनेटली रखना होगा ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकें।
1: वैशनी टूरिस्ट, आज आपके लिए वैसे बताया गया है कि फोकस करें ऑन क्वालिटी ओवर स्पीड, मतलब समय से पहले काम खत्म करने पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए। ध्यान ये दीजिए कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं क्या वो क्वालिटी वो है या नहीं। और साथ में आपके लिए कहा गया है कि कुछ फाइनेंशियल प्लान्स हैं आपके, कुछ चीज़ें हैं आपकी जो आपको असेस कर लेनी चाहिए। दे हैव बीन पेंडिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, असेस करने के बाद आप कोई फैसला जो है इस पर ले सकते हैं ज़रूर।
0: और उसके बाद विच इज द नेक्स्ट वन जो मुझे
1: मिथुन यानी जेमिनाई
0: अपनी योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। और आज कुछ पॉजिटिव चेंज अपने आप में आप नोटिस करेंगे, लेकिन गुस्से और चिड़चिड़ेपन को कंट्रोल में रखें। पेशेंस जरूरी होगा आज आपके लिए। परिवार को के लोगों के बीच प्यार और रिश्ता जो है काफी मजबूत होगा।
1: वैसे कर्क ने कैंसर आपके लिए कहा गया कि काम और कंपोजर ये दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है आज आपके लिए, यू हैव टू मेंटेन देम। दूसरी ओर आपके लिए ये भी कहा गया है कि रश में चीज़ें ना करें, अदरवाइज जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में बहुत सी गलतियां होंगी और उतना ही ज़्यादा नुकसान भी।
0: सिंह यानी लियो

0: need to let go of these things ताकि आप भविष्य के ऊपर focus कर सके.
1: तुला यानी लिब्रा अपनी मेहनत और capability से कुछ जरूरी काम आज आप पूरे करेंगे. Important decision लेने से पहले उसके बारे में पूरे details जरूर हासिल कर ले. आज आपके लिए कहा गया है कि अपने जो निजी संबंध हैं उनको आपसी तालमेल में बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का इमोशंस का सम्मान करें.
0: उसके बाद आज वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो आपके लिए कहा गया है कि अपनी मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा फोकस करें, उसे ब्रशअप कर लें, बिकॉज हो सकता है फ्यूचर में चलकर ये स्किल्स आपके बहुत काम आए. और दूसरी ओर आपके लिए ये भी आज बताया जा रहा है कि आपको अपनी इमोशनल ग्राउंडिंग और स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए. बहुत से ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनके ऊपर आप काफ़ी भरोसा करते हैं. भरोसा बुरी बात नहीं होती, पर शायद जब आप गलत लोगों पर भरोसा करते हैं उसका अंजाम थोड़ा गलत होता है. इसीलिए आपको फोकस करना है एंड यू हैव टू चूज योर पीपल.
1: उसके बाद अगला जो है आज धनु यानी सजिटेरियस, कुछ नयापन लाने के लिए क्रिएटिव चीज़ों में आप काफ़ी इंटरेस्टेड रहेंगे. इन्फ्लुएंशियल लोगों के कांटेक्ट में आएंगे. अपने ही कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर सकते हैं और आज करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने में आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं.
0: और उसके बाद आज मकर यानी कैप्रिकॉन आपके लिए कहा गया है कि अपना डेली रूटीन थोड़ा एसेस कर ले और चीज़ों को ऑटो पायलट मोड में छोड़ना बंद कर दे. मतलब कि वो हो जाएगा खुद ब खुद. समवन विल गेट इट डन, समवन विल सॉर्ट इट आउट. इफ़ इट्स योर थिंग यू नीड टू गेट इट डन, क्योंकि ऐसा करते करते आप थोड़ा लेजी होते जा रहे हैं, आपके हैबिट्स बदलते जा रहे हैं, जो लॉन्ग रन में आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. और दूसरी ओर कहा गया है कि आप काफ़ी इंजॉय करेंगे आज जो अप्रिसिएशन आपको मिलेगा, चाहे वो आपके कोवर्कर्स हो, आपके घर परिवार के लोग हो, लेकिन काफी अप्रिशिएट करेंगे आपको.
1: और उसके बाद कुंभ यानी एक्वेरियस, आज बदलते मौसम की वजह से खांसी जुकाम जो है ये आप पर असर करेगा. अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए सेल्फ इवेल्युएशन करना ज़रूरी होगा. आज एक्सपीरियंस्ड और इन्फ्लुएंशियल लोगों की मदद से आप सक्सेस हासिल करेंगे.
0: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए बताया जा रहा है कि आपका जो इमेजिनेशन है इसकी वजह से आज काफ़ी अच्छे रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं. यू आर प्लानिंग समथिंग लॉन्ग टर्म, कोई कमिटमेंट हो, कोई रिजल्ट हो तो ये आपको मिलेगा जरूर, जिसके लिए आपको बस इसी तरह से मेहनत करते रहनी है. सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे. उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे.
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ.
4: Hey Chat GPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
5: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
4: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
5: इंटरेस्टिंग. और कुछ?
4: बस इतना ही.
5: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
6: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
7: Lots.
6: Will their word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
7: Probably.
6: Am I paying for this free coffee?
7: Definitely.
6: Will they talk me into an upgrade?
7: No.
6: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
8: Cheer Midas!
9: TradeDepot.co.nz.
10: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
9: Trade

0: your data just found a plus one. Join or renew on an eligible Spark prepaid value pack and get double the data. Offer ends 30 November 2026. Double data doesn't roll over. Join Spark prepaid today. T's and C's apply.
1: Here for the first long weekend in ages, when you bust out the jandals, you dust off the chilli bin and take that first dip. Just the toes, of course. Whatever you're planning for the long weekend, see you at Foursquare. What'll it be today?
2: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
3: Yes, Bebo.
2: Catch kya hai?
3: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
2: I still can't believe it. No catch.
3: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
4: PNC Supply.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
5: Celebrity Alarm.
7: Hit it.
8: आज का सेलिब्रिटी लाम आपको स्ट्रेट हम सुना रहे हैं, फिर उसके बाद आपको अनुमान लगाना है कि किसकी आवाज़ है। आई थिंक ये ऑडियो सुनकर आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग जाएगा कि ये किस फील्ड को बिलोंग करते हैं, और जैसे ही वो आपको पता चले तो कि आवाज़ किसकी है, आप हमारे पास मैसेज कीजिएगा। रिमेंबर द नंबर टू टेक्स्ट वुड बी BF, लिख कर सबसे पहले, फिर अपना नाम लिख कर 5599 5599, इस पर आपको हमारे पास अपना जवाब जो है ये सेंड करना है। तो ये रहा ये आज के हमारे सेलिब्रिटी, इनकी आवाज जरा पहचानिए। तो
9: अच्छा, मैं अनिल भाई, मैंने कैप्टनसी किया, अनिल भाई मेरी कैप्टनसी में खेले, तो इमेजिन करो एक तरफ अनिल भाई बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरभजन सिंह बॉलिंग कर रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ अहमदाबाद में, और दोनों ही हटने को तैयार हैं।
8: तो आप बताइए कि ये आवाज़ किसकी है। मैंने जैसे कि कहा कि आप अगर ये सुनोगे ऑडियो तो आपको ये अनुमान तो लग ही जाएगा कि किस फील्ड को बिलोंग करते हैं ये। एंड आई थिंक ये इजी है टू अंडरस्टैंड कि आज के हमारे सेलिब्रिटी जो है ये कोई एक्टर नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, और किस पर्टिकुलर स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं ये भी आप फिगर आउट कर सकते हैं। तो पे अटेंशन, और जैसे ही आवाज़ पहचान ले वैसे ही हमारे पास मैसेज करें। आई फील लाइक टुडे दिस फ्राइडे, आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में सेलिब्रिटी जो है हमारे, इनकी आवाज़ पहचानने में लोगों को डिफिकल्टी तो ज़रूर होगी।
9: अच्छा, मैं अनिल भाई, मैंने कैप्टनसी किया, अनिल भाई मेरी कैप्टनसी में खेले, तो इमेजिन करो एक तरफ अनिल भाई बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हरभजन सिंह बॉलिंग कर रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ अहमदाबाद में, और दोनों ही हटने को तैयार हैं।
8: तो अपना आंसर अपने नाम के साथ BF लिखकर सबसे पहले 5599 पर जरूर टेक्स्ट करें। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपने क्या क्या आंसर्स भेजे हैं।
5: Bollywood's most wanted.
10: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
11: मैं लाऊं अपना A game.
5: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: finance experience, call 0800 634 234.
1: News headlines.
2: ACT Party leader David Simo ने वनका में कहा कि अगर opportunity 5% threshold को cross करती है तो वो left bloc coalition को रोकने के लिए उनके साथ four-headed coalition बनाने पर विचार कर सकते हैं। सिमो ने बताया कि क्लोई श्रोबिक औतेपति माउरी को सरकार चलाने से रोकना एक अच्छा आउटकम होगा, हालांकि नेशनल ने अपॉर्चुनिटी के साथ काम करने से पहले ही इनकार कर दिया है। रैली के दौरान उन्होंने ग्रीन्स और औतेपति माउरी पर गैंग लीडर से मिलने और उन्हें ड्रग काउंसलिंग फंडिंग देने के विचार को लेकर तीखा हमला बोला और इसे खतरनाक बताया। सिमो ने आगे वार्निंग दी कि लेबर ग्रीन्स और औतेपति माउरी की मिलीजुली सरकार देश के इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स एसोसिएशन ने न्यूजीलैंड फेस्ट की एक पॉलिसी का स्वागत किया है। न्यूजीलैंड फेस्ट का कहना है कि माइग्रेंट्स जो हैं उनको एक प्रपोज्ड रिप्लेसमेंट के तहत किसी एक एम्प्लॉयर से टाइन नहीं किया जाएगा। ये जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है ये अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा की जगह लेने वाला है। माइग्रेंट वर्कर्स एसोसिएशन की अनु कलोटी ने बताया कि ये एक अच्छा कदम है। रग्बी लीग वर्ल्ड कप के पहले मैच में कल कीवीज की हार कैंगरूज के खिलाफ 24 points to 22 से हुई। आज दूसरे मैच में 7:45 PM पर फ्रांस सामोआ का सामना करेगा। कल 5:25 PM पर पापुआ न्यू गिनी लेबनान से खेलेगा। रात 10 बजे इंग्लैंड और टोंगा का मैच खेला जाएगा, जिसके बाद रविवार को शाम 6 बजे फिजी कुक आइलैंड्स का सामना करेगा। और इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। ऑल ब्लैक्स टीम जो है इसमें कई चेंजेस किए गए हैं जो इसी या जो कल ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। टीम में कुछ खिलाड़ियों को चोटें आई हैं, जिनकी जगह पर नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। एनपीसी के तहत मैचेस जो हैं ये अब नॉकआउट स्टेजेस में खेले जा रहे हैं। आज के मैचेस की या आज का जो मैच है ये देखें तो आज सेमीफाइनल का मैच जो है ये खेला जाएगा। और आज पहले सेमीफाइनल में 7 बजे नॉर्थलैंड ओटागो का सामना करेगा, जबकि रविवार को 3:35 PM पर दूसरे सेमीफाइनल में कैंटरबरी तरनाकी को होस्ट करने वाला है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Accurate traffic.
3: Fuel savings at gas today.
4: Fine spells, lots of clouds, some showers at a high of 17 today. Into the city at the moment, motorways not too horrible. Southern 25 minutes, Manukau to town. Slow at Manurewa, Papatoetoe and Ellerslie through to Green Lane. Northwestern, a 22-minute drive in from Massey. We're slow from St. Luke's, a little heavy at times. And Northern 22 in from Constellation. Slow there to Milford and Takapuna to Esmond. Southwestern pretty quick.
3: Enjoy fuel savings and collect points when you scan your everyday rewards card at gas.
5: Freedom's Outdoor Furniture Flash Sale is on now. Get 30% off outdoor furniture and homewares. From outdoor lounges to outdoor cushions, save 30%. Hurry, sale ends Monday, only at Freedom.
6: All right, Pepper, now we're going to do a radio ad.
7: Can't you just use my line from the TV ad?
6: Well, let's just do it again, please, Pepper.
7: Phone dollars are for phones. Obviously?
6: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
7: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
6: QTs and Cs.
7: Eligibility and T's and C's apply. For more info, visit 1NZ/OneWallet.
6: Cool, in the inbit.
7: One New Zealand. Let's get connected.
8: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11am. Register at diocesan.school.nz.
9: Now when you're in the loop with ANZ and take the train, money loops back.
0: Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT trains with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
9: Stop! Buying coffee? You could be winning $500. It's $500 Friday with Coffee Grab. Every coffee ordered through the app gets you in the draw. More coffees, more entries, more chances to win. And your coffee? Order ahead. It'll be the one waiting for you. Get the cruise order, get yours, get in. Download Coffee Grab and order today. $500 every Friday. Coffee Grab. Make your coffee wait for you. T's and C's apply.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
12: Birthday greetings.
13: Iska birthday bhai?
14: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
13: Happy birthday to you.
15: हैप्पी बर्थडे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज जहाँ के भी अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. सबसे पहले मोहित भारद्वाज आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, तो जन्मदिन के इस खास मौके पर आपको ढेर सारे प्यार एंड बेस्ट विशेज. आपके पापा हैं राजीव, मम्मी हैं सुषमा और भाई हैं हिमांशु, जिन्होंने आपको याद करते हुए ढेर सारा प्यार दिया है. तो हमारी हम टीम की ओर से भी आपको अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मोहित, जन्मदिन बहुत बहुत बार मुबारक हो.
2: वीरेश नारायण माथुर माउंट वेलिंगटन में आज अपना जन्मदिन आप मना रहे हैं. खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. हमारी ओर से भी आज का ये स्पेशल डे आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.

0: 1, 2, 3, 4.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 20 मिनट बाकी हैं समय हमारी स्टूडियोज में वैसे सुबह के 8 बजने में। आज जो सेलिब्रिटी हम जिनकी आवाज लेकर आए थे आपके लिए, ये आपको पहचानना था। हमने आवाज जो है प्ले की, जिसके बाद सबसे पहला जवाब अंकुर ने भेजा, फिर कुछ लोगों ने आंसर्स भेजे लेकिन नाम नहीं लिखा। ऐश फ्रॉम वेलिंगटन, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। विकास, आपका भी जवाब जो है ये हमें मिला है। कमेश गांधी जी, थैंक यू, आज आपने भी हमारे पास अपना मैसेज भेजा अलॉन्ग विद कमेश। रोहित शर्मा है, प्रसाद जी है, शवीन है, एंड हमारे पास गंगा जी, आपका भी मैसेज आया है। थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए।
2: गंगा है कि गगन है?
1: ओ गगन, अच्छा सॉरी, हाँ गगन, थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए। रौनक, आपका भी मैसेज मिला है, सो थैंक यू सो मच। सिर्फ एक गलत जवाब आया है, इसके अलावा आई वुड से कि नहीं, दो गलत आंसर्स आए हैं, इसके अलावा बाकी सब ने हमारे पास सही जवाब भेजा। गुरविंदर सिंह जी ने कहा रोहित शर्मा, ये गलत है, और साथ में सौरभ गांगुली, शवीन आपने कहा था, ये भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज वीरेंद्र सहवाग। और वीरेंद्र सहवाग जो कि एक बहुत ही जाने माने क्रिकेटर रह चुके हैं, और काफ़ी मैचेस इन्होंने खेले हैं, हिस्टोरिकल मैचेस भी इन्होंने खेले हुए हैं फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। अब रिसेंटली इनके बारे में आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट ये अब होस्टिंग कर रहे हैं एक रियलिटी शो की।
2: ओ अच्छा, हाँ हाँ,
1: राइजन 4 सीजन 2 उसके ये होस्ट है, अच्छा कर रहे हैं। But it's quite interesting to see a lot of cricketers turning towards entertainment industry, na?
2: Hmm.
1: जिसमें रोहित शर्मा जो है ये भी recently host बने हैं अपने एक reality show की। तो या इंटरेस्टिंग है, बट नेवरदलेस जितने लोगों ने हमारे पास अपने अपने मैसेजेस भेजे, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए। बाय द वे, बिफोर यू मूव ऑन, एक खबर जो है ये आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। कल इसके बारे में काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी अपडेट्स जो है ये शेयर किए गए, एंड आई एम नॉट रियली श्योर कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली अवे ऑफ दिस अपडेट जो कल सामने आया था। क्योंकि जब ये घटना घटी थी कई सालों पहले, तो इस घटना के बारे में पूरी दुनिया में बातें जो है ये हो रही थी। Everyone in the world was talking about this particular incident, and ये एक ऐसी घटना थी जिसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था obvious reasons की वजह से। और the incident I'm talking about, the situation I'm talking about here is, आपको याद होगा मुस्कान और साहिल, ये दो नाम, if you remember, do you remember?
2: मुस्कान और साहिल
1: जी,
2: नहीं
1: नहीं याद है आपको? अच्छा, तो मैं आपको बता दूँ, मीरठ भारत में एक जगह है, एक बहुत ही फेमस शहर है ये, लेकिन मुस्कान और साहिल ये दो नाम जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के जहन में आए, लोगों से इन ये जो दो नाम है इनके बारे में लोगों को काफ़ी पता चला, एंड फॉर द वर्स्ट रीज़न पॉसिबल, जहाँ पर मुस्कान जो है इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत इनकी हत्या की थी, और उनकी लाश को एक नीले ड्रम में डाल दिया था। रिमेंबर दिस इंसिडेंट?
2: नहीं।
1: ओके, सो ब्लू ड्रम मर्डर केस जो है, इस नाम से भी इस मर्डर केस को जाना जाता है। और मुस्कान और साहिल ने अपेरेंटली सौरभ की जान ली, और फिर उनकी लाश जो है एक ब्लू ड्रम में डाल दी, जिसके बाद चलकर बहुत से सिचुएशन सामने आए, और बाद में उनकी लाश जब पुलिस वालों को मिली, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब जाकर पता चला कि सौरभ की खुद की पत्नी इस हत्या में शामिल थी। ये शॉकिंग केस जिसने नेशनली अगर देखा जाए तो हेडलाइंस तो ग्रैब किए ही थे, लेकिन पूरी दुनिया में इसके चर्चे जो है ये हुए थे। अपेरेंटली कहा गया है कि कल जाकर जो जज है इस केस में, उन्होंने अपना फैसला सुनाया, और साहिल एंड मुस्कान इनको डेथ सेंटेंस जो है ये दिया गया है।
2: ओके, तो ऐसी और भी कई खबरें हैं जो आपके लिए इस प्रोग्राम में हम जरूर लेकर आते रहेंगे। थोड़ी देर बाद फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में हिस्सा लेने का आज का पहला चांस।
3: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI.

0: तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा।
1: आप जिस काम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप उसे ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। जाइए प्लीज।
0: इस जन्म में तेरा एहसान नहीं चुका पाऊंगा मैं।
1: इसीलिए तो 7 जन्मों की

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: You made it with Caboodle.
3: Fine spells at times, plenty of clouds, some showers, and a high of 17. Coming into the city, motorways not too horrible. Southern half an hour, Manukau to the city, 40 minutes from Drury. Slow at Manurewa, Papatoetoe, and Mount Wellington to Green Lane. Northwestern 25 in from Massey, slow from Pātiki, heavy at Grey Lynn. Northern 20 in from Constellation, slow at Silverdale, Constellation to Milford, and around Esmond.
2: Impress even the toughest critics with Caboodle's stylish, affordable, and easy to install kitchens.
4: The enrollment deadline's coming soon. Pup, we better remind people before voting starts.
5: Enrolled yet?
4: How about you?
5: Are you enrolled?
6: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए? वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala. Recipes chahe vegetarian ho ya non-vegetarian. Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain. To intezar kis baat ka? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
8: हाँ, फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
9: यस बेबो।
8: कैच क्या है?
9: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
8: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
9: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, East Auckland.
10: ENC Supply.
11: Oops, the recipe says we need full fat cream.
12: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
13: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. At Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
13: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
15: 10 मिनट रह चुके हैं इस समय हमारी स्टूडियोज में 8 बजने में और ठीक आर पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के साथ लेकर आएंगे आपके लिए अगले घंटे ट्रेंड पेट्रोल और बताएंगे क्यों क्राइस्टचर्च फिलहाल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है दुनिया भर में. बट ऑन दी अदर हैंड आपको एक और एक चीज़ बता दें, मैथ्यू पेरी, ये नाम याद है आपको? आई बिलीव यू डोंट नो, सो इट्स ओके. फ्रेंड्स जितने भी लोग जो सिटकॉम हैं ये देखा करते थे या अभी भी आप देखते हैं तो आपको पता होगा ये नाम, बिकॉज दिस इज़ वन दैट वन ऑफ दो शोज जिससे ये नाम काफ़ी ज़्यादा चला. ही प्लेड द कैरेक्टर ऑफ चैंडलर बिंग. लेकिन मैथ्यू पेरी एक बहुत ही जाने माने एक्टर जिनकी मृत्यु के बाद काफ़ी बातचीत जो है कि लोगों ने भी की अबाउट द फैक्ट कि वो इनको कितना पसंद करते हैं. अब इनकी लाइफ से आधारित एक डॉक्यूमेंट्री द वन अबाउट मैथ्यू पेरी ये रिलीज़ होने वाली है नेटफ्लिक्स पर, जहाँ पर उनके कुछ बहुत ही करीबी दोस्त और परिवार वाले उनकी लाइफ में एक नज़रिया जो है लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसी थी उनकी ज़िंदगी अपार्ट फ्रॉम द स्क्रीन जहाँ पर वो दिखते थे. 27 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज़ होने वाली है.
16: फिलहाल हमने कहा था कि आज फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में हिस्सा लेने का पहला चांस हम आपको देंगे और ये मौका जब आपको मिल रहा है मेक द मोस्ट ऑफ इट. हैरिंगटन लिव इन जो कि द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा के को स्पॉन्सर्स अभी हैं, यहाँ पर इनका स्प्रिंग सेल पूरे पैमाने पर जारी है. ब्यूटीफुल फर्नीचर, 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री टर्म्स आपको दिए जा रहे हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. हैरिंगटन लिविंग मैनुकाउ आप विजिट कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं इनके इन स्टोर स्पेशल्स को. उनकी ओर से $1,000 worth of home decor या फर्नीचर वाउचर आप में से किसी एक को मिलने वाला है इस दिवाली के मौके पर।
15: और अगर ये आपको जीतना है तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। 8 बजने में अभी अगर देखा जाए 8 मिनट्स बाकी है, 8 मिनट बाकी है, तो उतना टाइम हम आपको देते हैं। विद इन द नेक्स्ट 8 मिनट्स आप हमारे पास लिखकर भेजें HL यानी हैरिंगटन लिविंग, H for Harrington, L for Living, HL लिखकर अपना नाम लिखकर 5599 पर आपको भेज देना है अगले 8 मिनटों के अंदर अंदर। और जितने लोग हमारे पास अपनी एंट्री सेंड करते हैं उन्हीं का नाम हम ड्रो में शामिल करेंगे। रिमेंबर स्टैंडर्ड कैरियर रेट अप्लाई व्हेनेवर यू टेक्स्ट, एंड ऑन द अदर हैंड हमारा फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, इससे जुड़े टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए आप hum.over.nz विजिट कर सकते हैं।
16: तो HL और अपना नाम 5599 पर भेजें।
1: Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.

0: accurate traffic.
1: Better traffic starts now.
2: Cloudy patches, more sunny spells expected today. A few showers this morning, 17 hour high. Coming in on the northern motorway, 22 minutes Constellation Drive to town, 40 from Silverdale. Heavy at Silverdale, slow Constellation on and off to Oniwa. Northwestern, 25 minutes in from Massey, slow from Pātiki, heavy at Point Chev. Southern, half an hour from Manukau, slow at Manurewa and Papatoetoe, then all the way from Mount Wellington.
1: Want cheaper public transport? Vote Labour. Authorised by Rob Salmond to Gilmer Terrace, Wellington.
0: How does one person finance on a new Jayco sound? Right now at West City Omura Jayco, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jayco J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jayco. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
3: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं, उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं।
4: Terms, condition, fees and credit criteria apply. Call Logic Finance ke Guru Khandola ko on 0800 Logic G, which is 0800 564424.
5: At Woolworths, these back-to-school specials are a great way to save. Get Harvest Snaps 120 gram for just $2.99 each. And Mugget Yogurt 10-pack, just $9.99 a pack. TCs and exclusions apply. Only at Woolworths.
6: Like the smell of grass in the morning? Trade Tested is where lawns become legendary. From seed to scarifiers, mowers to mulches, we've got everything you need to turn that embarrassing patch of Kaikilia into a golf green this summer. Want to be a lawn legend? Head to Trade Tested today.
7: Looking for a great deal on domestic flights? Webjet makes it easy to compare airlines, flight times and prices to your favourite Kiwi destinations. With more options in one place, it's easy to find a flight deal that suits your plans and your budget. You can even mix and match airlines for added flexibility. Booking your next trip is easy with Webjet. Book today. Visit webjet.co.nz and go somewhere.
8: Check.
9: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00 00 10.
10: Good morning, it's Sivati Kadbajre here.
8: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 8. The police dive squad has been called in after a car drove off the road and into the water in Tauranga. It happened on Chapel Street near the Bay Central Shopping Centre just after 12:30 this morning. One person got out of the vehicle and is in hospital. However, police don't know if a second person was in the car. The finger's being pointed at staff shortages at Starship Hospital for cancer treatment being delayed for some children. Health NZ's Dr. Mike Shepherd says finding appropriately trained and experienced staff takes time.
12: People should have confidence in the healthcare that's being delivered. We have fantastic people and we're continuing to deliver the high quality care that people would expect.
11: The West Coast community of Piha is thrilled. Camping can resume at the Domain. The local board voted to reopen the campground from Monday after it closed in May due to flood risk. Chair Mark Allen says it's a lifeline.
13: It's important to the economy. It provides an opportunity for people to experience the wild West Coast. It's important for surfers, the Surf Lifesaving Club.
11: Ukraine will resume its attacks on Russian oil refineries in defiance of President Trump. Kyiv had originally complied with the US energy ceasefire, but President Zelensky says he felt betrayed by Trump's diesel deal with Russia. To rugby league with Machinery House in a league of their own, the Kiwis were pipped 24-22 by the Kangaroos in an epic World Cup opener in Sydney. Australia scored the winning try in the dying minutes. Coach Kevin Walters.
14: We're fierce rivals and that was one of the best games of footy I've seen in a long time.
11: Kiwis fullback Kalen Ponga scored two tries, but his tournament might be over after suffering a suspected broken arm. New Zealand won its first medal of the track cycling world champs in Shanghai. Silver for Tom Sexton in the scratch race.
8: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari good brands bhi hai.
8: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun.
16: call 0800 462626.
10: तो आज याद रहे पॉसिबली हैवी शावर्स शाम के समय होंगे और ऐसे में अगर आपके आफ्टरनून में आउटडोर प्लान्स हैं तो शायद आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना होगा या रिकंसिडर करना पड़ेगा. सनसेट आज का 7:39 PM पर. राइट नाउ टेम्परेचर 9.6 डिग्रीज, हाई ऑफ 17 एक्सपेक्टेड लेटर टुडे. ओवरनाइट 6 डिग्रीज टेम्परेचर आज रहेगा.
16: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
16: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
10: तो मैंने कहा था कि आज ट्रेंड पेट्रोल में आपको बताएंगे क्राइस्टचर्च ये क्यों ट्रेंड कर रहा है राइट नाउ और दुनिया भर में कहीं ना कहीं इस शहर का नाम जो है ये चर्चे में आया है, रिकग्निशन में आया है. इसके बारे में काफ़ी बातचीत जो है ये हो रही है. तो आपको पता है ना, ऐसे बहुत से सर्वेज वगैरह होते रहते हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट यू नो इवेल्यूएशंस एंड सिचुएशंस. बट साथ ही साथ ऐसे कंट्रीज़ और सिटीज़ के बारे में भी काफ़ी बातचीत होती है जो कहीं ना कहीं ज़्यादा रिकग्नाइज होती है फॉर देयर डिफरेंट फीचर्स और समथिंग वर्थ अप्रिशिएटिंग. तो क्राइस्टचर्च जो है इसे इंटरनेशनल अटेंशन मिल रहा है क्योंकि इट हैज़ बीन नेम्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 ट्रेंडिंग ट्रेवल डेस्टिनेशंस फॉर 2027. और कमाल की बात यह है कि न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए ये एक लौता शहर है हु हैज़ मेड दिस लिस्ट. क्राइस्टचर्च जी, booking.com का जो लेटेस्ट ट्रेवल प्रेडिक्शन है इसमें ये हाईलाइट हुआ है कि क्राइस्टचर्च यानी कि गार्डन सिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ओवर द पास्ट 15 ईयर्स, इट हैज़ रीजनरेटेड सिटी सेंटर टू इट्स ग्रोइंग फूड एंड आर्ट्स सीन. और इसमें बहुत से और बोटेनिक गार्डन्स है, हेगली पार्क है, ओटकारो एवन रिवर है जिसके बारे में काफ़ी मेंशन किया जाता है. दीज आर दी ड्रॉइंग अटेंशंस और अट्रैक्शंस जिसके तहत लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं. एंड द ओपनिंग ऑफ न्यूजीलैंड का जो वन न्यूजीलैंड का स्टेडियम, ये भी कहा गया है कि इसकी वजह से क्राइस्टचर्च का जो अपील है एज अ डेस्टिनेशन फॉर मेजर इवेंट्स ये और बढ़ जाएगा. एंड इट्स नॉट जस्ट द सिटी इटसेल्फ, क्राइस्टचर्च जो है बहुत से खूबसूरत माउंटेंस, कोस्ट लाइंस एंड सम ऑफ साउथ आइलैंड के स्पेक्टेकुलर आउटडोर एडवेंचर्स वगैरह यहाँ पर होते हैं जिसकी वजह से there's an added advantage to its you know service जो ये offer करता है to people who travel here. इस रिपोर्ट में more than 28,000 travelers across 32 countries and territories जो है उन्होंने पार्ट लिया, including न्यूजीलैंड के लोग भी. और interestingly 73% of Kiwis जो है इन्होंने respond किया है that they would choose a holiday based on how they want to feel rather than simply where they want to go. और 72% या लोग जो है इन्होंने कहा है कि they were interested in doing something completely out of character on holiday. अगर क्राइस्टचर्च की बातें हम करें या फिर इस लिस्ट की बातें हम करें तो ये जो शहर है क्राइस्टचर्च, इट शेयर्स इट्स नेम ऑन दिस लिस्ट विद सम ऑफ द वर्ल्ड नोन या वेल नोन यू नो अदर सिटीज़ इन द वर्ल्ड, जिसमें कहा गया है कि मॉन्टरे जो कैलिफोर्निया में है, और सेंदाई जो जापान में है, रीम्स फ्रांस में, और पेस्कारा जो इटली में है, ये सारे शहर भी इस लिस्ट का हिस्सा है.
18: Very nice.
10: So making very it beautiful. Through the top 10 is very interesting, na?
18: बहुत ही खूबसूरत शहर है क्राइस्टचर्च.
10: I've never been to Christchurch, यार. तो
18: मैं थक गया हूँ ये सुनते सुनते. मैं I've never been to Christchurch. किसने आपको रोक रखा है?
10: किसी पैसे ने. पैसे ने, बजट ने, फाइनेंसेस ने. और यहाँ का जो एयरलाइंस जो सर्विस प्रोवाइड करती है टू क्राइस्टचर्च, बिकॉज टिकट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव यू नो, और ईजी नहीं है ऐसे ही मुँह उठा कर चल देना. यू नीड टू प्लान थिंग्स. अगर आप कहीं पर भी पहली बार जा रहे हो तो एटलीस्ट यू नो यू शुड हैव सफिशिएंट डेज ताकि आप उस जगह को एक्सप्लोर कर सको, वहां पर जाकर वहां की चीजें जो एंजॉय कर सको. ऐसे नहीं कि एक वीकेंड के लिए गए और फिर एक दिन में वापस आ गए, क्या फायदा वैसा ना. तो प्लान
18: तो आपको क्या एनुअल लीव नहीं मिलता?
10: नहीं मिलता है
18: तो आप जा सकती हैं.
10: हर बार देश से बाहर जाना पड़ता है एनुअल लीव के दौरान.
18: देश से बाहर जा सकती हो, क्राइस्टचर्च नहीं जाना.
10: हाँ, देश से बाहर जाना पड़ता है ना एट टाइम्स, वो भी चीज है. बट बाय चॉइस आल्सो आई गो क्योंकि मेरी फैमिली उधर ही है तो मैं क्या करूँ. अब ऑप्शन मिले कि आप एक नया शहर एक्सप्लोर कर लो या गो एंड मीट योर पेरेंट्स, आई ऑलवेज चूज गो एंड मीट माय पेरेंट्स. तो वो एक चीज है. तो शिकायत, अब मैं ऐसे शिकायत नहीं कर रही, मैं सिर्फ बता रही कि नहीं जा पाई मैं. आई लव टू गो समडे, बट आई लव टू हियर फ्रॉम द पीपल ऑफ क्राइस्टचर्च जो वहां पर रहते हैं. अगर आप फिलहाल हमें सुन रहे हैं, यू लिव देयर, यू हैव एक्सपीरियंस क्राइस्टचर्च इन अ वेरी डिफरेंट वे जैसा किसी ने नहीं किया, तो आप हमें बता सकते हैं लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट क्राइस्टचर्च एज अ सिटी, आपको कितना अच्छा लगता है, कितना नीचे? आई हैव हर्ड कि इट्स मच मच चीपर देन ऑकलैंड, वहाँ पर चाहे घरों के दाम हो या फिर वहाँ पर यू नो कोई भी बेसिक एमिनिटीज आप देख लो इन कंपैरिजन विद ऑकलैंड, वो काफ़ी सस्ता होता है.
18: पता नहीं, मैंने तो नहीं खरीदा अभी तक.
10: हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे, मैंने सुना हुआ है, कुछ जगह पर पढ़ा भी हुआ है, ऑकलैंड के मिलान में बता रही हूँ ना.
18: हाँ.
10: So that's what I'm saying. So if you are in Christchurch and if listening to us right now, let us know. Message करके बता सकते हैं आप हमें. या फिर अगर आप कभी भी Christchurch गए हैं, you've explored the city, और वहाँ की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगी? एक चीज़ तो है, लोगों से बहुत सुना है मैंने कि लोग कहते हैं कि यार घर लेना है ना अगर न्यूजीलैंड में, Christchurch में जाके ले लो, अच्छा है, सस्ता है, बड़े बड़े ज़मीन पर बड़े बड़े घर मिल जाएंगे आपको, जो ऑकलैंड में शायद 3 bedroom का वैल्यू हो किसी एक घर का, उतने में आपको क्राइस्टचर्च में 5 bedroom या 6 bedroom का घर मिल जाता है. ऐसे कंपैरिजंस भी होते हैं. आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट ओनली द पीपल हु लिव देयर हैव एक्सपीरियंस्ड इट, वो बता सकते हैं ना. सो ट्रेंड पेट्रोल में आज हम बातें कर रहे थे क्राइस्टचर्च के बारे में.
18: थोड़ी देर बाद व्हाट्स योर टेक में भी हिस्सा लेने का मौका हम आपको देंगे,
10: और साथ में हमारी दिवाली प्रमोशन के तहत एक दिया एक कहानी, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना.
18: मत भूले रामायण गाथा, ये भी बस थोड़ी ही देर में आपके लिए हम लेकर आएंगे.
10: जी बिल्कुल.

विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास जाने की आज्ञा दी। विमान प्रभु के वियोग में दुखी होकर परंतु आज्ञा मानकर अपने स्थान को चला गया। समस्त अयोध्यावासी अपने स्वामी को सम्मुख पाकर अश्रुपूरित नेत्रों से प्रणाम करने लगे।

0: Thinking of switching lanes? How about insurers? Switching to Tower is easy. Plus, get $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
1: India comes to town. Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
2: इस दिवाली घर को दियो के साथ सोना संसार के गहनों से भी रोशन कर डालिए।
3: अरे तेजल, चल जल्दी जाइए धनतेरस माटे शॉपिंग करवा सोना संसार मा। तने जे पसंद पड़े ए बाय करी लेजे। लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन के लिए एक ही पता, सोना संसार।
2: दिल वाली दिवाली सोना संसार के साथ 190 स्टोरेट रोड माउंट रॉस्किल। कॉल 09629333।
4: Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
5: Yes, Bebo.
4: Catch kya hai?
5: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
4: I still can't believe it. No catch.
5: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
6: PNC Supply.
2: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. T's and C's apply.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
7: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
9: What's your take?
10: 21 minute ho rahe hain, 8 bajkar, what's your take ka time ho chuka hai. Would you be able to play something if I play something here?
11: Yeah.
10: तो आप तैयार हो तो बताइएगा.
11: हाँ बताइए, आप बजाइए.
10: बहुत ध्यान से आप सुने इसको. थोड़ा सा टाइम लूंगा
11: जी.
10: तो फर्स्ट हैव अ लिसन टू द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये दो पार्ट्स में है
11: जी.
10: तो फर्स्ट पार्ट में आपको पहले सुना रहा हूँ. दिस थिंग, कल ऑफिस से जब मैं घर गया आफ्टर लंच, तो आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन माय फोन एंड दिस थिंग केम अप.
12: रखने की जगह ही नहीं है, हम कभी बेड पे सोए ही नहीं, 25 साल हो गए. तो वो भी एक सपना है, उसमें भी ऐड कर लो कि हम बेड पे भी सोना चाहते हैं.

0: मुझे अपना खुद का एड्रेस चाहिए कि मेरा खुद का एक घर हो, मेरा परमानेंट एड्रेस हो, कि मेरे पापा वो बालकनी में बैठ के चाय पिए, पेपर पढ़े, वो मैं देखना चाहती हूँ।
1: तो पढ़ाई तो किया नहीं, मेरी जिंदगी तो ऐसी कट गई। तो यही सोचता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़े और आगे बढ़ो।
0: जब केबीसी में सिलेक्शन हुआ तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। केबीसी के माध्यम से आज मैं वो सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। मेरे पापा मम्मी को लगता है कि मैं पूरा करूंगी।

भारतवर्ष में ऐसी भी शख्सियत है जो कैसी परिस्थितियों में रहते हैं और बड़े साधारण तरीके से इन्होंने कह दिया कि मैं आज तक बिस्तर पे नहीं सो पाई हूं, कोई मेरे लिए बिस्तर नहीं रहा, जमीन पे सोती रही आप, क्योंकि आपके पास इतना आमदनी नहीं थी कि एक

0: Сторхрит себе. और एक छोटे से कमरे में चार प्राणी हैं आपके परिवार के.
1: आसमां ऊंचा है मेरा, तू ही छू लेना.
0: शायद ये 10x10 ऐसा ही इतना ही बड़ा है. 10x10 कमरे में चार प्राणी रह रहे हैं.
1: रात है गहरी बड़ी, पर जाएगी ये जाएगी.
0: आपको बहुत बहुत बधाई.
2: थैंक यू सर.
0: और हम सब चाहते हैं.
3: तो ये पहला हिस्सा.
2: राइट.
3: आई डेलिबरेटली डिड नॉट वांट यू टू सी द वीडियो.
2: ओके.
3: इसीलिए मैंने वीडियो आपको भेजा नहीं. तो होपफुली आपने इसे ध्यान से सुना हो. और दूसरा पार्ट मैं थोड़ी देर बाद आपको सुनाऊंगा. वो छोटा सा पार्ट है, थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा आपको. जो भी आपके मन में है, ये इसी साल कौन बनेगा करोड़पति उस प्रोग्राम के दौरान ये हुआ था. और जब ये मैंने देखा तो मेरे मन में उस वक्त बहुत सवाल आए, जब व्हेन दिस थिंग केम अप. और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक अलग तरीके से. आप शायद कुछ लोगों ने इस वीडियो को देखा हो या इस एपिसोड को देखा हो या फिर जो प्रोग्राम था इनका ये देखा हो. तो जो भी ये देखने के बाद, और अगर नहीं देखा है तो ये सुनने के बाद, मन में क्या क्या आया आपके? सबसे पहले वही मैं जानना चाहूंगा.
2: ओके. एंड यू सेड कि आपके पास एक और एक भी.
3: हाँ, एक और छोटा सा पोर्शन है
2: जो आप सुनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद. ठीक है. तो
3: वंस वी हियर
2: योर टेक, कि ये सुनने के बाद आपके मन में, आपके जहन में क्या ख्याल आया. अगर आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं तो वी वुड लव टू टॉक टू यू, कि आप डायरेक्टली अपने इमोशंस अगर शेयर कर सके. 0800-004-866 पर कॉल करते हुए. और अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 पर. और आप बता सकते हैं कि आफ्टर हियरिंग दिस ऑडियो व्हाट वाज यू फील लाइक. शायद आप जिस तरह से महसूस कर रहे वो हम ना इमोट कर पाए, बट विल बी एबल टू कन्वे योर मैसेज एटलीस्ट. गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग
2: जी.
4: मैंने वो जब सुना तो मैंने सोचा कि हमारे पास इतने सब चीज होते पे भी हम स्टिल कभी काल लाइफ से अपनी सेटिस्फाइड नहीं होते ना. वी कीप लुकिंग फॉर मोर, हमारे लिए इनफ नहीं होता है. और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी है उनके पास, लाइक यू नो, दे डोंट हैव द ऑपर्चुनिटी टू लुक फॉर मोर, बट अपने लाइफ जिए जा रहे हैं ना. और हम हैं कि जितने भी है उतने कम है हमारे लिए.
2: ओके. सो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, ये आपने महसूस किया.
4: हाँ हाँ.
2: ओके जी.
3: थैंक यू.
2: थैंक यू आपके कॉल के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. हैव अ नाइस डे. गुड मॉर्निंग शरल.
5: हाय. गुड मॉर्निंग पूजा. गुड मॉर्निंग विजय भाई.
3: गुड मॉर्निंग.
5: मैंने ये वीडियो देखा है एंड द डे आई सॉ द वीडियो इज वेरी अपसेटिंग एंड यू फील लाइक यू फील इमोशनल. आई मीन यू नो, आप देख कर भी, अभी आप जब सुना भी ना, तो अभी ड्राइविंग करते हुए इतना ऐसे लगा कि दिस इज सो सैड. आई मीन वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड बिकॉज हमें सब कुछ मिलता है. You know, and there are people out there, or there is so many people out there who, jinko, you know, they only get one meal, or jo bed pe nahi sote. Jo weekend, I mean, the thing is, I come from a middle class family, and I'm not saying this just on air. I support one child in Nepal for studies, and I support one more child by Save the Children's Fund, and it's only like 20 bucks a week, not a week, 25 bucks a month. कुछ ज्यादा नहीं है, बट दैट मेक्स मी फील लाइक कि आई एम डूइंग समथिंग बैक टू द कम्युनिटी व्हिच इज नीडेड. सो यू नो, सीइंग दैट गर्ल, लिटिल गर्ल, इतनी, आई मीन, या इट वाज, या
3: थैंक यू.
2: थैंक यू शेरल, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू आप निकोल किया. तो कॉल अगर आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि हम चाहेंगे कि आप हमसे बातें कर सके. 0800-004-866 पर कॉल करते हुए. मैसेज तो अभी तक खैर किसी का नहीं आया, बट वी हैव रिसीव्ड टू कॉल्स एंड उन्होंने अपनी जो राय है ये शेयर की है ना इस मामले में.
3: टाइम भी बहुत नहीं है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मूव ऑन एंड Let's listen to the second part.
0: इनकी कहानी सुन करके देवियों सज्जनों भावुक हो जाते हैं सब लोग लेकिन गजब का खेल है ये और भाई साहब रमेश जी आपको बहुत-बहुत बधाई
6: थैंक यू सर
0: ये आपने और आपकी पत्नी जी ने माता-पिता ने मिल करके इसको पढ़ाया और हमेशा आपने कहा कि तुम पढ़ो हम किसी तरह संभाल लेंगे घर को और देखिए वो कैसे कहां पहुंच गई सर एक दिन में आपका पूरा जीवन जो है वो बदल गया है
3: एक दिन में
2: पूरी लाइफ बदल गई
3: द गर्ल इनका नाम रुचिता है शी वेंट ऑन टू विन 50 लाख रुपीस क्लोज टू 100,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स जो है शायद इन्होंने जीते हैं ऑल बिकॉज कि उनकी फैमिली उनके पेरेंट्स ने वो सैक्रिफाइस किया खुद तो पढ़े लिखे नहीं है दे आर अ लॉट ऑफ इमोशनल पार्ट्स इन दिस
2: एपिसोड
3: जो जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी उनकी कहानी है उसमें अगर आप देखेंगे बट द जिस्ट ऑफ द थिंग इज कि लड़की ने कहा कि हमारे घर में सोने के लिए बेड
2: नहीं है
3: 10x10 मुझे नहीं मालूम कि
2: 10x10
3: किस चीज को 10x10 रिफर करते हैं इन इंडिया बट इट सीम्स टू बी वेरी वेरी स्मॉल और वहां पर उनके घर में बेड नहीं है फ्रिज नहीं है टीवी नहीं है क्योंकि सामान रखने की जगह
2: नहीं है
3: सो दैट वाज द सिचुएशन एंड एक समय पर शी वांटेड टू क्विट स्टडीज एंड गो ऑन टू वर्क तो उनकी फैमिली उनके पेरेंट्स ने उनको मना किया कि नहीं आप पढ़ो हम संभाल लेंगे किसी तरह से एंड शी कंटिन्यूड विद हर स्टडीज फिर उन्हें मौका मिला कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेने का एंड शी वेंट ऑन टू विन 50 लाख रुपीज या सो वही यू नो एक जो पहले कॉलर ने कहा कि अप्रिशिएट What we have in life, gratitude show करें, parents जो है कितने selfless हो जाते हैं to see कि उनके बच्चे
2: succeed
3: in life, बहुत सारी चीजें।
2: This emotion about the fact कि जो जो चीज जब parents you know when they are growing up उनको नहीं मिलती है and I'm saying चीज as in basic चीजों से लेकर new clothes किसी एक occasion में देख लो आप शायद हमारे parents जब वो छोटे थे जब वो दिवाली वगैरह celebrate करते थे उनके पास नए कपड़े शायद दिवाली के दिन पहनने को नहीं होते थे but when it comes to their kids they make a point कि यार दिवाली है celebration है तो उनके नए बच्चों के कपड़े होने चाहिए नए कपड़े होने चाहिए भेंट वो एक बार ही पहने पर होने चाहिए बट ऐसी छोटी छोटी चीजों से लेकर टू बिगर थिंग्स इन लाइफ जहाँ पर एजुकेशन की बात आपने की पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनका सपना ये जरूर होता है कि हमारे बच्चे जो है ये पढ़े लिखे होने चाहिए एंड टू प्रोवाइड दैट टू देयर किड्स दे गो टू द एक्सटेंस जो हम इमेजिन नहीं कर सकते
3: उन्हें पता है कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या किन मुसीबतों का सामना वो कर रहे हैं एंड दे डोंट वांट टू सी देयर किड्स गो डाउन द सेम लेन
2: दिस इज अ होल पॉइंट आई मीन डिफरेंट फैमिलीज में डिफरेंट सिचुएशंस में इक्वेशन डिफरेंट होता है आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज बच्चे जो है पेरेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करते इज द सिचुएशन देयर माइट बी सिचुएशंस जहां पर पेरेंट्स भी शायद कुछ गलतियां करते हैं दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स गेट बैड एंड सावा आई नो कि आप डिफरेंट टॉपिक पर बातें कर रहे थे बट आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक दिस टाइम एंड You know, let everyone know to appreciate your parents more, as much as you can, because this is the reality of life. हमारे parents जो हमारा बुरा नहीं चाहते, वो हमें अगर किसी चीज़ के लिए टोकते भी हैं, तो only because they have got more experience of life. और जिस सिचुएशन से शायद वो गुजरे हैं द रॉन्ग्स दैट दे हैव डन द डिसीजंस दैट दे हैव मेड उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उन्होंने यू नो फेस किए हैं वो बस हमें उससे बचाना चाहते हैं एंड अक्सर ये जो सिचुएशन होता है ऑफ पेरेंट्स ट्राइंग टू सेव देयर किड्स थोड़ा थोड़ा कुछ हद तक ऐसा भी रहता है जहाँ पर बच्चों को कंट्रोलिंग लगता है एंड दैट काइंड ऑफ यू नो बिकम्स अ वेरी बिग रीज़न रिलेशनशिप्स जो है ये बदलने में खास तौर पर बट द मैक्सिमम दैट पेरेंट्स वांट फॉर एनी ऑफ देयर किड्स वुड बी सक्सेस हैप्पीनेस अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स जो अक्सर पॉसिबल नहीं होता है बट पेरेंट्स जस्ट वांट दैट फॉर देयर किड्स एंड द लीस्ट दे वांट फ्रॉम देयर किड्स फॉर देम इज जस्ट लव एंड रिस्पेक्ट दैट्स इट
3: या ये रुचिका की जो फैमिली है कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख जीतने के बाद तो पता नहीं उन्होंने क्या किया उससे पहले वो कोई फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करते थे they did not celebrate any festival because agar festival celebrate karte to paise kharch ho jate to ghar ka kiraya nahi hota. And unhone kaha tha ki unke pita I think 600 rupees or something like that
2: kamate the
3: and usi se unka guzara jo hai ye hona tha. To yeah, maine socha ki aaj you know sense of appreciation life mein hona bahut hi जरूरी है. हम इतनी जद्दोजहद करने लगते हैं अपनी जिंदगी में कि जो हमारे पास है उसको अप्रिशिएट करना
2: भूल जाते हैं.
3: उसके लिए थैंकफुल होना भूल जाते हैं. हमारे पेरेंट्स के लिए थैंकफुल होना, उनको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं क्योंकि वी आर ऑलवेज रनिंग आफ्टर समथिंग एल्स.
2: वेरी ट्रू. तो उम्मीद है कि इस चीज से या फिर आज के इस व्हाट यू टेक के सेगमेंट से कुछ रियलाइजेशन हो ऐसा आपके अंदर, अगर इसकी जरूरत है. अगर आपको रियलाइजेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं कि सबको इसकी जरूरत होती
3: है. ऑफ कोर्स
2: अगर आपको जरूरत है, वी होप कि इट हैज यू नो मेड अ डिफरेंस और इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अप्रिशिएट एंड लव योर लाइफ अ बिट मोर.
3: मुसीबतें स्ट्रगल्स किन की नहीं होती, जो सबसे अमीर है उनकी भी होती है.
2: ओह या,
3: क्या नाम है उनका, वो
2: मुकेश अंबानी,
3: उनकी भी अपनी स्ट्रगल्स होंगी.
2: आई थिंक ऑन द सेम नोट, मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर उनकी जो पत्नी है नीता अंबानी, शी हैड स्पोकन अबाउट उनके जो यंगर बेटे हैं अनंत अंबानी के बारे में, जिनकी शादी हुई थी ना रिसेंटली. तो उनके हेल्थ इश्यूज जो उन्होंने डिस्कस किए, पैसा उनके पास भरपूर है एंड एवरीवन मस्ट थिंक कि अगर पैसे होते तो लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, बट बावजूद इतने पैसे होने के दे कांट गिव द बेस्ट ऑफ बेस्ट हेल्थ टू देयर सन, क्योंकि उनकी तबीयत जो है ये उतनी अच्छी नहीं रहती है, विच इज़ वाई वज़न कम होता है, वज़न बढ़ जाता है, उनकी हेल्थ जो है डिटेरिएट होती रहती है. तो दीज आर द थिंग्स ना लाइफ में.
3: सो स्ट्रगल्स, मुसीबतें होंगी, अप्रिशिएट व्हाट यू हैव. केश का मैसेज आया है, देयर इज अ डीप सेंस ऑफ अप्रिसिएशन फॉर एवरीथिंग वी हैव बट एट द सेम टाइम अ लिटिल गिल्ट नोइंग दैट वी ऑफन कीप आस्किंग फॉर मोर व्हेन वी ऑलरेडी हैव इनफ. हाउ आई फील.
2: Wow. Okay. So, चलिए आज थोड़ा हैवी हो गया फ्राइडे के लिए.
3: Yeah, I did not want to do it, but the thing is कि मैं भूल जाता.
2: I think जरूरी है. I understand कि हमारा शो का फॉर्मेट अलग होता है, हमारे शो की टाइमिंग अलग होती है. No one wants to start their day on a very sad note. And just because breakfast show is the starting of the day, जहाँ पर हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, 90% of the time there are some very important things जो emotions में काफ़ी high होते हैं, जिसके बारे में बातें करना भी चाहते हैं, we hold back onto it because हमें लगता है कि शायद it's not the right time, it's not the right show to do these things, क्योंकि लोग जो है ऐसे emotion के साथ अपनी सुबह की शुरुआत नहीं करना चाहते. And it's true because इतनी सारी चीज़ें already life में चल रही होती हैं. So if you come here on hum for some fresh air, for entertainment, for some fun, इसीलिए हम 90% of the time वो चीज़ें avoid करते हैं. पर अगर 10% ये चीजें कर भी रहे हैं, I think it's good.
3: But the thing is कि अगर आज इसकी वजह से किसी एक पर्सन को अपनी जिंदगी में कुछ अप्रिशिएट करना आ गया,
2: it's a big achievement.
3: Exactly.
6: Hollywood's most wanted.
7: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
8: मैं लाऊं अपना A game.
6: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Tumo jao, papi ho. Tumo jao.
2: Accurate traffic.
3: Kitchen Mania free installation.
4: Fine and cloudy patches, a few possible showers, 17 hour high. Coming into the city, Southern Motorway slowest of a quick bunch, 32 minutes, Manukau to town, 40 from Drury, slow from East Tāmaki, heavy patches frequent though to Green Lane. The southwestern's fine, northwestern 22 and from Massey is quick, slow on and off from Point Chev, northern 22 and from Constellation, slow at Silverdale, Constellation and Orniwa Road.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. KitchenMania.co.nz, T&C's
5: alive. रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं रिश्तों को और करीब लाएं कशिश प्रीमियम बासमती राइस ईट बेटर लिव बेटर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279939 और विजिट legalassociates.co.nz
9: Leave it, but I was put into an induced coma and airlifted to Stasher.

0: would be so true.
1: Mercury, helping startups turn little into big for 25 years.
2: मैं हरीश लोहिया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है। मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं सोना संसार 190 स्टोडा रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापाटोईटोई में।
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: Playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
5: Let's go.
0: Straight from the heart.
6: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: business loan, commercial loan or construction.
1: तो आज के वैसे टेक टॉपिक के लिए कुछ मैसेजेस हमारे पास जो है ये आए हैं और इस पर अगर हम आपके साथ यू नो डिस्कशन करें. एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि गरीबी में पैदा होना आपकी गलती नहीं लेकिन गरीबी में मरना आपकी गलती है. बिल गेट्स का एक कोट जिन्होंने शेयर किया है. माय पेरेंट्स रेज्ड फोर किड्स व्हेन दे कुडंट अफोर्ड मच. वन साइकिल, नो टीवी, नो फ्रिज. वी ऑल वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल एंड डिड आवर बेस्ट. माय एल्डर ब्रदर इज gazetted officer in India. I am a physiotherapist in New Zealand. My younger brother is a sub inspector and my sister is a successful YouTuber. And it's all because of my parents and they choose to sacrifice their needs just to make us successful. ये इन्होंने कहा है. और इसके अलावा एक और एक मैसेज जो है ये हमारे पास आ जाया है. थैंक यू फॉर टुडेज टॉपिक. इट वॉज डीपली मूविंग एंड अ वंडरफुल रिमाइंडर टू अप्रिशिएट वट वी हैव. इवन दो मॉर्निंग डिस्कशंस आर यूजुअली लाइटर, स्टार्टिंग द डे विद दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रूली हेल्प्स अस फील कंटेंट एंड अप्रिशिएटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. ये इन्होंने कहा है.
2: दैट्स अमेजिंग टू नो.
1: या थैंक यू सो मच.
2: जो हमने कहा था ना कि कम से कम अगर एक पर्सन आज अपनी जिंदगी को अप्रिशिएट करना शुरू कर दे या अप्रिशिएट कर ले, सो वी विल फील कि आज का जो व्हाट्स योर टेक टॉपिक है ये इसके पीछे जो रीजन था वो हमने अचीव कर लिया. सो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. फिलहाल अभी जल्दी से आप थोड़ा हल्का करते हैं माहौल और आपको देते हैं मौका, क्योंकि आज से सिर्फ दो हफ्ते बाकी रह गए हैं.
1: जी,
2: 14th day पर ड्रॉ हो जाएगा और पता चलेगा कि NZPMI जिनके साथ अपने प्रॉपर्टी का ट्रू सेल वैल्यू जो है ये आप अनलॉक कर सकते हैं, जो आपके लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं और फ्री साइट असेसमेंट भी करते हैं. आप www.nzpmi.co.nz विजिट कर सकते हैं या फिर 804-NZPMI पर कॉल करके भी बातें कर सकते हैं. उनकी ओर से $1,000 worth of MITRE 10 vouchers अभी से 14th day पर आप में से किसी एक को मिलेगा.
1: राइट, तो रिमेंबर कि अगर आप $1,000 वर्थ ऑफ MITRE 10 के वाउचर्स जीतना चाहते हैं, एंड व्हेन वी से $1,000 वर्थ ऑफ वाउचर्स, ये जो वाउचर्स हैं सिर्फ आपके होंगे अगर आप विजेता हुए तो. ये हम 3-4 विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले, सिर्फ एक विनर को पूरे के पूरे 1,000 के MITRE 10 के वाउचर्स मिल जाएंगे, विच इज़ डेफिनेटली अ बिग अमाउंट टू विन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू MITRE 10 वाउचर्स एज वेल. तो आपको क्या करना है, अब इन द नेक्स्ट 8 मिनट्स अपनी एंट्री हमारे पास आपको सेंड करनी है. ये याद रखें कि आप हमारे पास अपनी एंट्री जो है ये टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 पर. और इसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज, सबसे पहले
2: आपको हमारे पास अपना जो टेक्स्ट है ये भेजना होगा. और सबसे पहले लिखे आप NZPMI, उसके बाद अपना नाम लिख दे और भेज दो 5599 पर.
1: इतना आसान है ये. सो नेक्स्ट 8 मिनटों में NZPMI, फिर अपना नाम लिखकर 5599 पर सेंड करने पर आप एक ड्रॉ का हिस्सा बनेंगे, जहां पर आपके पास मौका है कि आप जीत सके $1,000 worth of MITRE 10 vouchers, all thanks to NZPMI.

0: लो।
1: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
0: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
0: रियली?

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: हाँ, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मौसम में सुधार जो है ये आप नोटिस करेंगे। रह रहकर कुछ हल्की बारिश विच शुड क्लियर आउट बाय दिस इवनिंग। अभी 11.5 डिग्रीज है आज का हाई, 16 ओवरनाइट चिली कंडीशंस, कम से कम 6 डिग्रीज आप फील करेंगे।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune at Harrington Living Monaco. Big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Monaco.
3: What's going on? क्या बकते हो?
4: अरे कहना क्या चाहते हो?
5: तो आज की क्या बकते हो स्टोरी इज ना समथिंग जो हुआ था अभी नहीं, कुछ आई थिंक सालों पहले हुआ था ये। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कब। और ऐसे में ये एक आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी हो, आप इनफेक्ट इसको जाकर देख भी सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी। बट राइट नाउ आपको बता दें कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में हम बातें करना चाहते हैं, इट्स अ मूवी, इट्स अ तमिल मूवी और इसका नाम है वन मैन। ये एक तमिल साईफाई एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है और कमाल की बात ये है कि इस पर्टिकुलर तमिल मूवी को जिस शख्स ने लिखा है उसी ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, उसी ने ही इस फिल्म की एडिटिंग की है, उसी ने पूरी की पूरी फिल्म की शूटिंग की है, उसी ने पूरा का पूरा फिल्म में जो VFX का काम किया है, म्यूज़िक कंपोज किया है। और इस फिल्म में करीबन 500 कैरेक्टर्स हैं और इसी शख्स ने उस 500 कैरेक्टर्स को प्ले किया है।
1: ओह माय गॉड।
5: यप। सो वन मैन, वन मैन, जीरो क्रू, 6 इयर्स, 7 कंट्रीज। और दिस इज नॉट अ शॉर्ट फिल्म, लेकिन एक ना ही तो ये शॉर्ट फिल्म है ना ही तो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, ये एक पूरी की पूरी फिल्म है, अ साईफाई फीचर फिल्म जैसे कि हमने कहा। एंड द रीज़न पीपल कैन नॉट स्टॉप वॉचिंग इट इज़ क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इन अ वर्ल्ड वेयर AI के नाउ हैंडल मोस्ट ऑफ द ईयर्स का जो काम है जो पहले किया जाता था इन फिल्म मेकिंग, इन यू नो मेक इट वेरी ईजी। तो ये एक ऐसा एफर्ट है जो इस शख्स ने पुल ऑफ किया, खुद सब कुछ किया, A to Z सब कुछ। और फिर स्क्रीन पर जितने 500 कैरेक्टर्स हैं वो भी इन्होंने खुद ही प्ले किया विद द हेल्प ऑफ AI। एंड द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट इज संगगिरी राजकुमार। और ये जो फिल्म का नाम है वन मैन, ये ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये इसी साल अगस्त महीने में रिलीज हुई है। तो फिल्म जो है करीबन 1 घंटे 40 मिनट की है और अगर आप इसे ऑनलाइन जाकर इसके बारे में पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, तो आपको यू नो काफ़ी कुछ पता चलेगा। फिल्म की कहानी बताया गया है 5 दोस्तों की है, हु स्टम्बल अपॉन अ मिस्टीरियस फैक्ट्री एक जंगल में और वहाँ पर एक डिवाइस उनके हाथ लगती है विच इज़ केपेबल ऑफ फ्रीजिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटायर वर्ल्ड। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है एंड लेट्स सी। मैंने तो इसके बारे में कल ही मुझे पता चला एंड आई वाज लाइक शुक कि मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स और सब कुछ एक शख्स का अकेले करना इज़ अमेजिंग, यू नो द थॉट बिहाइंड इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। और अगर मुझे मौका मिला, आई वुड लव टू वॉच दिस मूवी बिकॉज मुझे इस फिल्म का जो प्लॉट है ये भी काफ़ी पसंद आया। इमेजिन ऐसा एक सिचुएशन जहाँ पर आपके हाथ भी ऐसा कोई फ्रीजिंग डिवाइस लग जाए जिसके तहत आप पूरी की पूरी दुनिया कंट्रोल कर सको, तो आप क्या कुछ करोगे? स्कैरी?
1: नो,
5: इट इज स्कैरी अगर ये आपके हाथ में ना हो तो।
1: हाँ, देन
5: इट इज स्कैरी। अगर किसी और के हाथ में हो तो बहुत स्कैरी, बट इफ इट्स इन योर हैंड तो प्रोबेबली इट विल बी फन। बट व्हाटएवर द सिचुएशन इज, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी वन मैन जो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल 6 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर और इस बार आपके लिए व्हाट्स गोइंग ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं।

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: नवरात्रि के मौके पर कई जगहों पर जो पूजा पाठ है ये जारी है. श्री राम कृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो ऑफ मेनिकाउ में आप शाम 6 बजे से पूजा और उसके बाद गरबा और डांडिया रास में हिस्सा ले सकते हैं.
4: और इसके अलावा आपको याद दिला दें कि श्री हनुमान मंदिर 14 बे पार्क प्लेस बर्गडेल नोट शो, यहाँ पर भी नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और आप इसमें ज़रूर भाग ले सकते हैं. हर रोज़ यहाँ पर डीजे गरबा होता है 8:10 PM टू 9:30 PM के बीच. और 18th October को यानी कि इसी रविवार को शाम 6:30 बजे से भजन जैमिंग होगा, जिसके बाद डीजे गरबा जो है ये होगा.
3: श्री आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर पर भी आप जा सकते हैं 38A वॉम्सली रोड ओटहू में रात 7 से लेकर 9 बजे तक.
4: और इसके अलावा माँ दुर्गा टेम्पल 4x3 ऑनस्लो एफ पापाटोईटो, यहाँ पर भी 19th October तक अगले सोमवार तक हर रात 7 PM से आप जो नवरात्रि का पर्व है इसमें भाग ले सकते हैं. और याद रहे कि इसी संडे को और फिर मंडे को कन्या पूजन जो है ये होगा.
3: दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दी केव 5x57 कैवेंडिश ड्राइव मेरिकाउ में शाम 6:30 बजे से पूजा आरम्भ होती है.
4: और श्री राम मंदिर 11 Brick Street हेंडरसन, यहाँ पर भी आप अंटिल नेक्स्ट वीक ट्यूजडे 20th October तक हर रात 6 बजे से जो नवरात्रि सेलिब्रेशन है इसमें पार्ट ले सकते हैं. लाइव गरबा फ्रॉम 8:30 PM यहाँ पर हर रोज होता है.
3: नोचो कम्युनिटी इवेंट्स द्वारा आज और कल गरबा होने जा रहा है. बाफुट एंड थॉमसन नेटबॉल सेंटर 44 North Court Road नोचो में 7 PM ऑनवर्ड्स, यहाँ पर एंट्री आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है.
4: और साथ ही साथ आपको याद दिला दे कि इस साल संप्रीति आपके लिए लेकर आ रहे हैं 2nd Annual दुर्गा पूजा, जो इसी वीकेंड रहेगा यानी सैटरडे 17th और संडे 18th October को. इट्स अ फ्री एंट्री, ये जो इवेंट है सभी के लिए ओपन है, आप ज़रूर इसमें भाग ले सकते हैं. जो बंगाली कल्चर के तहत ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा होता है, अंजलि होती है, ये आप ज़रूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं. दोनों ही दिन यहाँ पर भोग जो है ये भी दिया जाएगा और कल्चरल परफॉर्मेंसेस जो है ये रहेंगे रात 7 बजे से ऑन बोथ इवनिंग्स, जो आप इंजॉय कर सकते हैं. सिंदूर खेला और साथ में और भी जो ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस है चैंस, जहाँ पर आप वाइडर जो बंगाली कम्युनिटी है इस एक्सपीरियंस करते हुए सेलिब्रेट कर सकते हैं. दिस सैटरडे एंड संडे फ्रीमंस बे कम्युनिटी हॉल, आप इसके लिए पहुंच सकते हैं.
3: कोमल निषाद ला रहे हैं आपके लिए रागा बाय द बे, ये एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक शो है जहां पर एंट्री आपके लिए फ्री है. और सरोद प्लेयर प्रशेख बोरकर जो मेहर घराना के हैं, जहाँ से पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खान जैसे कलाकार जो है किया है, और उनके साथ तबला पर मंजीत सिंह जो पंजाब घराना को रिप्रेजेंट करेंगे, और उस घराने से पंडित अल्ला रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार आए. तो ये सभी जो है ये रागा बाय द बे होने जा रहा है नेक्स्ट वीक सैटरडे को शाम 6 बजे से फ्रीमेंस बे कम्युनिटी सेंटर में. एंट्री यहाँ पर फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, और इसकी खातिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 02210985592 पर.
4: और साथ में मेनोबोस ग्लोबल आपके लिए लेकर आ रहे एक फ्री ऑनलाइन इवेंट जो वर्ल्ड मेनोपोज डे के तहत इसी संडे 18th October को रहेगा. और अगर आप इस ऑनलाइन इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं रजिस्टर करना पड़ेगा, इसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशंस है और फ्री आप इसे एक्सेस भी कर सकते हैं. बस रजिस्ट्रेशन के लिए globalpowersurge.com आपको विजिट करना है.
3: अंबेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब ला रहे हैं 34th Annual स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट, पूरी फैमिली के लिए एंट्री फ्री है. अल्कोहल फ्री इवेंट जिसमें कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर जैसे बहुत सारी चीज़ें होंगी. बच्चों और महिलाओं के लिए भी बहुत सारा फन एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ जैसे लेमन एंड स्पून रेसेस, म्यूजिकल चेयर्स, चिल्ड्रंस रेसेस, ये सब कुछ होगा. और पंजाबी बहुत ही पॉपुलर पंजाबी सिंगर माशा अली भी परफॉर्म करेंगे सैटरडे 24th October को, और जहाँ पर साउंड ऑफ पंजाबी म्यूजिक जो है ये आएगा इस इवेंट में, और आप इसमें जाकर हिस्सा ले सकते हैं. कॉल इन लॉरी फील्ड्स 47 Reynolds Road पुकी कोही में. एंड और इंफॉर्मेशन के लिए ये अगले सैटरडे और संडे को होगा, और इंफॉर्मेशन के लिए प्रदीप से 02123859 48 पर आप बातें कर सकते हैं.
2: Mornings made better.
5: Two frienda, 4 toast, butter, jam, or a special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
6: Hey, ChatGPT, Diwali आने वाली है. ऐसा कोई idea है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए।
0: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
6: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
0: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
6: बस इतना ही।
0: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune, bring home the fortune.
7: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकाल कर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
8: Looking to turn business payments into points? With the American Express Gold Rewards business card, you could earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Offer ends 14th December 26, 1.5k min spend in first 3 months. New card members only. Membership rewards, T's and C's apply.
9: The enrollment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
10: Enrolled yet?
9: How about you?
10: Are you enrolled?
11: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the electorate.

0: sale now at Flight Centre. Experience world-class with Singapore Airlines. Flying return to London from 2,625 per person. Book online or in-store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
1: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं प्योर मार्बल मूर्तिज कॉपर मूर्तिज गन मेटल मूर्तिज देवी देवताओं के वस्त्र सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स मिरर्स कर्टन्स सोफा कवर्स बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड पापटोटोए योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि
2: To win one of five $10,000 My Titan gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho. Camping ka pura gear le sakte ho. Ek room ka makeover kar sakte ho. Ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo and you are in the draw. Plus club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at My Titan.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces, first come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
6: What's going on?
7: You know, अभी 8th of November को दिवाली जो है ये बहुत से लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं और ऐसे में आपको ये भी याद दिला दे कि बहुत से कम्युनिटी दिवाली इवेंट्स जो ये हो रहे हैं नोट शो में रहने वालों के लिए ये स्पेशल खबर कि अगर आप नोट शो में रहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए स्टेफनोज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और साथ में टीम पोजीशन एना फ्रॉम बाफुट एंड थॉमसन लेकर आ रही हैं नोट शो दिवाली बिगर एंड ब्राइटर एट अ न्यू वेन्यू दिस ईयर स्मेल्स फार्म तक पुनः आप पहुँच सकते हैं इसी या नहीं नेक्स्ट वीक सैटरडे को नॉट दिस सैटरडे
8: नेक्स्ट वीक
7: सैटरडे 24th ऑफ अक्टूबर को दिन में 12 से लेकर रात 9 बजे के बीच यहाँ पर एंट्री बिल्कुल मुफ्त पार्किंग बिल्कुल मुफ्त और पूरे दिन का जो आपका एंटरटेनमेंट प्लान है ये एकदम अच्छे से इन्होंने प्लान कर रखा हुआ है डांस परफॉर्मेंस थ्रू आउट द डे होंगे बहुत से फन एक्टिविटीज़ होने वाले हैं खासतौर पर बच्चों के लिए जिसमें वो भाग ले सकते हैं और डिलिशियस फूड स्टॉल्स दैट दे कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट फेस्टिव शॉपिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं दिवाली से पहले ज्वेलरी लेना है कपड़े लेने हैं डेकोरेशन का कोई सामान लेना है खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें आपको सॉर्ट आउट करनी है कैटरिंग वगैरह अगर कराना है तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप नोट शो दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के सेलिब्रेशन में पहुंचेंगे और याद रहे रात 9 बजे द नाइट विल कम टू एन एंड विद अ स्पेक्टेक्युलर फायरवर्क्स डिस्प्ले जो आप जरूर एंजॉय कर सकते हैं
8: दिवाली के बारे में आप बातें कर रही हैं तो चलो लगे हाथों आपको $300 कैश ये भी जीतने का मौका दे देते हैं एक दिया एक कहानी पहली बार हम पर ये हम आपके लिए लेकर आए हैं यू नो पिछले घंटे अप्रिशिएटिंग अपनी लाइफ को उसके बारे में हम बातें कर रहे थे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट पीपल हु मेक सच ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इन आवर लाइफ्स तो हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा शख्स जो आपसे ब्लड रिलेटेड ना हो और जिसने आपकी ज़िंदगी को शायद कोई नई दिशा दी हो आपको गाइड किया हो आपको यू नो आपका मोरल अपलिफ्ट किया हो आप को इंस्पायर किया हो जो भी हो उन्हें आप अप्रिशिएट करें बताएं कि वो कौन है एंड क्यों आप उस शख्स के नाम एक दिया इस दिवाली करना चाहेंगे ऐसा नहीं कि लिटरली आप उनको एक दिया दें बेसिकली आप बताएं कि एक दिया मैं उनके नाम कर रहा हूं क्योंकि ये उन्होंने मेरी जिंदगी में किया था और ये अपॉर्चुनिटी अब हम आपको देने जा रहे हैं और आपको कॉल करना है हमारे पास राइट नाउ
7: यस 0800 004866 हमारा टेलीफोन नंबर है दिस इज़ अ कॉल इन कॉम्पिटिशन तो इसके लिए आपको कॉल करते हुए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंड तभी आप इस ड्रो का हिस्सा बन सकते हैं उस स्पेशल शख्स को अपनी ज़िंदगी में थैंक यू कहना है तो वो भी आप कर सकते हैं और ऑन द अदर हैंड ड्रो में शामिल होकर आप जीत सकते हैं $300 कैश एज वेल हमने एक दिन आई थिंक किया था यू नो आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ना कि अगर आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में कोई एक ऐसे

0: शख्स हैं जिनको आप शुक्रिया करना चाहते हैं, जिन्हें आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, और दूसरा हमने कल किया था पड़ोसियों के लिए, तो आज ऐसा कुछ है आपके जहन में?
1: कैसा कुछ?
0: कि एग्जैक्टली किस एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ से ये शख्स शायद जुड़े रह सकते हैं, देन यू माइट बी एबल टू आइडेंटिफाई देम एंड देन यूड लाइक टू से दैट थैंक यू.
1: आपका स्कूल टाइम कोलीग कोई?
0: मतलब क्लासमेट.
1: हाँ, okay. आपका कोई क्लासमेट जो आपको लगता है उन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया, बहुत इंस्पायर किया, और शायद मे भी जहाँ पर आज अपनी लाइफ में आप हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो कारण है या फिर उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है.
0: राइट right. तो आज देखते हैं, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो एक मिनट का समय और बाकी है. विद इन दिस वन मिनट अगर किसी का कॉल आ जाता है, वी'd लव टू हियर कि क्या आप जब पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, तो समवन इन योर क्लास, वन ऑफ योर क्लासमेट्स जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, आपके लिए खड़े रहे, आपको सपोर्ट किया, आपको यू नो वो एनकरेजमेंट प्रोवाइड किया जो आप चाहते थे, एंड इफ़ दे वॉज समवन जिनको आप थैंक यू कहना चाहते हैं, या फिर इफ दे इज समवन जिनको आप शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे एक दिया एक कहानी के इस प्रमोशन के तहत, तो 0800 4866 पर आप कॉल कीजिएगा एंड लेट अस नो, लेट दैट पर्सन नो, उनका नाम आप यहाँ पर बताते हुए उन्हें शुक्रिया जरूर कह सकते हैं.
1: गुड मॉर्निंग. हेलो.
2: Hello, actually I'm very pleased to talk to you guys. I never ever talk to you guys.
1: How are you feeling this Hello. Morning?
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello. Hello, my name is Neetu. How are you guys?
0: हम बढ़िया हैं नीतू, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? तो नीतू बताइए, आज सुबह सुबह किस क्लासमेट को आप याद करना चाहती हैं?
2: Not a classmate, but when I moved in this country, one of the person, she really, really helped me a lot everywhere. My boss.
0: अच्छा, आपकी बॉस.
2: Like जब भी कुछ भी होता था, like when I came in this country, हमें नहीं पता था कि कुछ काम करना पड़ता है या जैसे भी, तो मैंने उसको देखा as a manager, she is doing everything. And she encouraged me for everywhere, like मेरे पास किसी सेवर नहीं था, she encouraged me, नहीं, you should have किसी सेवर, you should join the union, like she motivated me everywhere. So I really, really pleased, like she was my boss, and then she showed me path everywhere, whenever I need, like, you know, she encouraged me. जब मैं आई तो आई नेवर एवर गो फॉर माय ब्रेक, बिकॉज़ मैंने सोचा कि लाइक वो 6 आवर्स के ब्रेक शिफ्ट है तो क्या करनी है ना ब्रेक, लाइक एंड शी सेड नो नो नो यू नो यू शुड हैव अ रेस्ट, यू शुड गो फॉर योर ब्रेक, यू आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क, दिस एंड सो एवरीवेयर, लाइक शी मोटिवेटेड मी अ लॉट.
0: ओके, दैट्स नाइस.
2: आई रियली वांट टू थैंक यू हर टू शो मी द पाथ इन दिस कंट्री, स्पेशली व्हेन आई वाज न्यू, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस कंट्री.
0: ओके, थैंक यू नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप कि आपने अपने जो बॉस है उनको ये बताया जरूर है दैट हाउ मच यू अप्रिशिएटेड हर इन योर लाइफ. थैंक यू.
2: मैंने पहली बार आप लोगों को कॉल किया है एंड आई एम रियली प्लीज टू टॉक यू गाइस, और पहली बार मिल ही गया फोन.
0: वी आर ग्लैड कि आपने कॉल किया कम से कम, एंड हमें आपसे भी बातें करने का मौका मिला. ऐसे सुनते रहिए, जब जब मौका मिले कॉल करते रहिए.
2: डेफिनेटली. थैंक यू, बाय.
1: थैंक्स, बाय बाय.
0: तो आज नीतू जो है इनका नाम हम रूम में शामिल कर रहे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ, बट शी वांटेड टू अप्रिशिएट हर बॉस फॉर द सपोर्ट जो उन्होंने उनको दिया एक नई कंट्री में आने के बाद. और अगर आप कहीं किसी नई जगह पर शुरुआत कर रहे होते हैं, आपको अगर कोई ऐसे शख्स मिल जाते ना, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, जो शायद उस शख्स को एहसास भी नहीं होता कि उनकी छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए कितना बड़ा मायना जो ये रखती है. पर फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, अब समय हो रहा है कि आपको सुनाए आज का बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो बादशाह की आवाज में आपके लिए इस ट्रैक को आज चार बस्टर्स में हम पेश कर रहे थे, पर फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको हम याद दिलाना चाहते हैं अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन स्पेशल जो आपके लिए ड्राइव शो में सैनियन न्यूज भी लेकर आते हैं एवरी थर्सडेज को. अगर आपने इनका जो कॉन्वर्सेशन हुआ था विद द लीडर ऑफ द अपॉर्चुनिटी पार्टी, ये अगर आपने मिस किया, इट हैपेंड यस्टरडे, तो आप ये पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है ये कैच कर सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने मतलब जो अपॉर्चुनिटी पार्टी की लीडर है, इन्होंने पार्टी की पॉलिसी, पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स, की प्रायोरिटीज और उनका जो विजन है फॉर न्यूजीलैंड, इसके लिए बातें की हैं. एंड दे ऑल्सो एक्सप्लोर दी अपॉर्चुनिटी पार्टी, कहाँ पर वो किस स्टैंड के लिए, किस इशू के लिए खड़े होते हैं, एंड उनके हिसाब से व्हाट मैटर मोस्ट टू कीवीज. तो बहुत ज़रूरी चीज़ों पर डिस्कशन इनका हुआ है, फ्रॉम द चैलेंजेस फेसिंग न्यूजीलैंडर्स टू द अपॉर्चुनिटी पार्टीज प्रायोरिटी, ये सब कुछ इन्होंने डिस्कस किया है इलेक्शन स्पेशल के तहत ऑन द ड्राइव शो विद सैंडी रूसबे. फॉर द एंटायर एपिसोड आप ड्राइव लिखकर 5599 पर भेज सकते हैं.
1: अभी 24 मिनट रह गए हैं 9 बजने में. इस वीकेंड पर कई फिल्में जो हैं रिलीज होने को हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद यमी गौतम
0: नवेली
1: और राजेश दुबे इसमें काम कर रहे हैं. ये फिल्म आज से रिलीज हो रही है. बहुत सारे लोग इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे.
0: आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी एज वेल, आई एम वन ऑफ देम.
1: डू यू हैव एनी आइडिया इस फिल्म के बारे में क्या है?
0: ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, बट ट्रेलर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, एंड आई फील लाइक इट्स मोर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री फिल्म, जो अगर आपको पसंद आई थी उस हिसाब से.
1: और ये फिल्म जो है कहते हैं कि एक सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर है. और इस फिल्म का गाना एक जो है भाभी तबाही.
0: अच्छा,
1: आपने सुना ये गाना?
0: नहीं अभी तक तो नहीं.
1: हाँ, तो आप सुन सकती हैं ये गाना और पता लगा सकती हैं. ये फिल्म काफी लुक फोर्ड कर रहे हैं लोग. दूसरी फिल्म जो यहाँ न्यूजीलैंड में आप देख सकते हैं इस फीचरिंग राजकुमार राव.
0: हाँ, प्रहार. अच्छा, ये कब रिलीज हो रही है?
1: आज
0: वो प्रहार भी आज रिलीज हो रही है.
1: प्रहार आज रिलीज हो रही है. ये एक बायोग्राफी ड्रामा है और उज्जवल, हाँ, उन पर ये फिल्म बनाई गई है. राजकुमार राव के साथ
0: वामिका गब्बी,
1: हाँ, तरुण शर्मा, जयदीप अहलावत, ललित प्रभाकर, ऋत्विक सहोर, सिकंदर खेर, आशीष विद्यार्थी, ये सभी इस फिल्म में काम कर रहे हैं. प्रीतम ने इस फिल्म का जो म्यूजिक है ये कंपोज किया है. और प्रोड्यूसर्स में मालूम है किन किन का नाम है?
0: नहीं.
1: दिनेश विजन एंड आमिर खान.
0: आमिर खान इज ऑल्सो प्रोड्यूसर.
1: आमिर खान प्रोडक्शंस, जियो स्टूडियोज और मेडोक फिल्म्स इस फिल्म को बैक कर रहे हैं. और बहुत ही पावरफुल ट्रेलर इस फिल्म का जो है ये देखने को मिला है अभी तक.
0: यस, अगर आपने नहीं देखा आप ट्रेलर जरूर चेकआउट कर सकते हैं. दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हाउ मैजिकल दिस मूवी कैन बी.
1: इनफैक्ट राजकुमार राव की एक और फिल्म आज ही के दिन रिलीज होने को थी. आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या हुआ है. इसमें कीर्ति सुरेश के साथ उन्होंने काम किया है. और The film is Raftaar.
0: अच्छा, I have no idea about that movie.
1: हाँ, राजकुमार राव और उनकी जो पत्नी है उनके होम प्रोडक्शन
0: लिखा.
1: हाँ, उनके होम प्रोडक्शंस जो है ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है. तो रफ्तार ये फिल्म भी आज रिलीज होने को थी. सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसमें क्या हुआ. कार्तिक आर्यन और श्रीलीला ने एक फिल्म में साथ काम किया है, T178.
0: Oh no, I think जब इन्होंने अनाउंस की थी ये फिल्म तब काफ़ी चर्चे में था, लेकिन अभी कहाँ तक इसका प्रोग्रेस जो है ये है नो आइडिया.
1: एंड परिणीति चोपड़ा और दिव्यन भोजानी, इनकी एक फिल्म जो है आई थिंक दिस वीक और लास्ट वीक रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर
0: यस,
1: रिपोर्टिंग लाइव अगर आपने नहीं देखी है. OTT पर भी कई चीजें आ रही है. आज से आ रहा है MTV रउडीज का सीजन 21.
0: ओके,
1: विजय बानी, नेहा धूपिया, प्रिंस नरूला और निखिल चिनप्पा, दे आर ऑल कमिंग बैक. और भी कई जो सीरीज वगैरह हैं ये रिलीज हो चुके हैं या हो रहे हैं. और टू डेज बैक कॉफी विद करण का फाइनल सीजन, इसका भी डेब्यू हुआ है.
0: या आई गॉट अ चांस टू वॉच द फर्स्ट एपिसोड और बहुत अच्छा था. आई एंजॉयड इट. पहले एपिसोड में सलमान खान केम एज द गेस्ट और यू कैन सी आई थिंक हमने ये कॉन्वर्सेशन किया भी था एक बार जहाँ पर वी हैड स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि पहले सलमान जिस अंदाज के हुआ करते थे लाइक वो हंसी मजाक करते थे बहुत ऐसे यू नो अग्रेसिव होते थे जब उनको गुस्सा आता था या फिर बहुत गुस्सा होते थे तो थोड़ा कंट्रोल करने की भी कोशिश करते थे बट मस्ती मजाक भी बहुत ज़्यादा करते थे लेकिन व्हेन यू सी हिम नाउ वो करण जौहर ने भी इनफैक्ट इस एपिसोड में मेंशन किया कि यू आर मोर काम एंड कंपोज नाउ तो उन्होंने कहा कि सलमान खान ने कि जो एडवाइस मैं दूसरों को देता था मैं हमेशा सोचता हूँ कि दूसरों को एडवाइस देता हूँ वो फॉलो करते मैं क्यों नहीं करता तो मैं खुद की एडवाइस अब फॉलो कर रहा हूँ एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दे हैड एड्रेस्ड द फैक्ट अबाउट सलमान खान बीइंग लोनली इन हिज लाइफ कि उन्होंने सलमान खान से करण जौहर ने पूछा डू यू फील लोनली क्योंकि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है आपकी शादी नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं लोनली नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा परिवार है हाँ दैट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ इज देयर कि मेरी लाइफ में वैसे रोमांटिकली कोई नहीं है बट मेरी फैमिली है जिसकी वजह से आई डोंट फील लोनली एंड देन दे रेज़ द करण जौहर ने जब ये बोला कि ही फील्स लोनली तो सलमान खान वेंट अहेड एंड ट्राई टू करेक्ट हिम ऑन द फैक्ट कि नो यू आर नॉट लोनली यू गॉट योर मम यू गॉट योर किड्स और वहाँ से बच्चों का सवाल जब उठा अपेरेंटली सलमान खान ने सेड दैट किड्स आर ऑन द पिक्चर फॉर हिम समडे उनके खुद के बच्चे That would be interesting yeah. कि कब इनका ये सपना जो ये पूरा होता है
1: I just saw a teaser or promo something Coffee with Karan ka. I must say I'm not a Salman Khan fan but I really salute the way it, you know he's carrying himself
0: yeah.
1: He looked just amazing
0: yeah.
1: Walking into the show जब करण जौहर जाकर उनको greet करते हैं
0: yeah they have addressed that as well कि at the age of 61 आप कैसे अपने आप को ऐसा you know रख रहे हो physically ऐसा कैसे present कर रहे हो so it's a very interesting episode जो आपको मजा तब आएगा जब आप देखोगे
1: yeah
0: right तो आप जरूर ये check out कर सकते हैं पर फिलहाल के लिए The Breakfast Show
2: with Vijay and Pooja. Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी cute है. Driving you home.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो
2: ये गलत बोल दिया यार
4: और पहनता भी नहीं है उसको
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
4: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी
2: अभी ब्रांड हो गया ना
4: रुजबे के बाल लगे उससे
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
6: At Bunnings, you can make any home spooky this Halloween with our new range. We've got inflatables, stake lights, and even animatronics. Plus, we've got buckets for the kids trick-or-treating. Come and get more Halloween for less. Bunnings Warehouse!
7: Rarotonga is on sale now at Flight Centre. Book a five-night fly-in stay family holiday from $1,249 per person. Book in store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
8: There's more to your everyday rewards. From points on weekly shops to cents off at fuel stops. Get more value on everyday spending. It really is never ending. Enjoy more rewards and more value today. T's, C's and exclusions apply.

0: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
1: Diwali aayi, khushiyan laayi. PFSL special offer lekar aaya hai. Apne dream home ka sapna sajaye. PFSL ke saath home loan karwaye. $400,000 ya usse zyada ka eligible loan settle kare aur $250 ka gift card ghar le jaye. 50-inch TV ke lucky draw mein bhi entry paaye. To is Diwali khushiyan badhaye. PFSL ke saath apna dream home sajaye. Search PFSL or call 09846-9934. Terms and conditions and lending criteria apply.
2: सोना संसार पापा टोयोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
3: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
2: सोना संसार पापा टोयोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोयोटो।
4: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोयोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
5: दिवाली बस आने ही वाली है, तो द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क हैज अ स्पेशल ऑफर। अब से लेके मंडे तक गेट 50% ऑफ सिलेक्टेड स्किन एंड लेजर ट्रीटमेंट्स। स्किन रिजुविनेशन से लेके लेजर ट्रीटमेंट्स तक द एक्सपीरियंस टीम विल हेल्प क्रिएट अ प्रोग्राम टेलर्ड फॉर यू। और सबसे बढ़िया बात, आपकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। बुक ऑनलाइन एट thecosmeticclinic.co.nz। सिलेक्टेड ट्रीटमेंट्स पर 50% ऑफ ऑन नाउ। द कॉस्मेटिक क्लिनिक सिल्विया पार्क की तरफ से हैप्पी दिवाली।
6: Diwali is here और नोटशो में होगा रोशनी का जश्न। Bigger and brighter than ever, Stefano's Financial Solutions with Team Punish and Anna from Barfoot and Thompson presents नोटशो Diwali Festival of Light at Smales Farm, Takapuna, Saturday 24th October, 12 noon to 9 pm. Dance performances all day, fun activities for the kids, yummy khana and shopping. और रात 9 बजे spectacular fireworks, free entry, free car park. नोटशो Diwali, celebrate the light with your people.
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
9: What's going on?
10: डेली राउंडअप में आज एक ही स्टोरी है। प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने ग्रेमाउथ में सपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए कहा कि दूसरे टर्म के लिए जिन पार्टीज के साथ काम करना पड़ेगा वो करके सरकार बनाएंगे। उन्होंने वोटर्स से इलेक्टोरल वोट स्प्लिट ना करने की अपील करते हुए कहा कि एक्ट या एनजेड फेस्ट को वोट देने से नेशनल को कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक एक्टिव और बड़ी नेशनल टीम के साथ कैबिनेट चलाना ज्यादा आसान होगा। बाद में उनके ऑफिस ने क्लेरिफाई किया है कि क्रिस्टोफर लक्सन एंड सिर्फ एनजेड फर्स्ट और एक्ट एमपीज की बात कर रहे थे और अपॉर्चुनिटी पार्टी को सरकार में शामिल ना करने का डिसीशन अभी भी बरकरार है।
11: Let's go.
12: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन दो बातें
1: पहली आप मक्खी को नहीं समझा सकते कि फूल कचरे से ज्यादा खूबसूरत है
2: ओके
1: और आज की दूसरी बात जख्म को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना पड़ेगा
2: नाइस आई थिंक ये मक्खी वाला आपने पहले भी शेयर किया था एक बार बट अच्छा है इट हेल्प्स यू रिमेम्बर सर्टेन थिंग्स ना चलिए इसी के साथ साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा हमारी और आपकी मुलाकात होती है मंडे को अब एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर तो ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा लेकर हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे

सभी को नवरात्रि के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। दुर्गा पूजा का भी समारोह शुरू हो रहा है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सबके जीवन में खुशियां भरकर लेकर आए। आपके जीवन में मंगल दीपों को हमेशा प्रज्वलित करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और आपके परिवार के साथ साथ आप लोग किसी तरह से भी चाहें उसी तरह से बिन बुलाए भी जहां पे भी जाना चाहते हो, जी चाहता है वहां पहुंच जाओ और उसकी चौखट पे ज़रूर जाओ माँ जगदम्बे की, जहां आपके दिल को मिलेगा एक बहुत बड़ा सुकून। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं कशिका आ चुकी हूँ आपके स्टूडियोज़ में, हम के स्टूडियोज़ में आपका साथ निभाने के लिए 10 से 12 बजे तक मंडे टू फ्राइडे। और ये कशिश फूड्स के सौजन्य से यह नवरात्रि के इस खूबसूरत समारोह में बहुत अच्छा लगता है। आज कितना खूबसूरत दिन है, 16 तारीख है, बर्थडे एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। इतनी सारी चीज़ें जब होती हैं ना, और ख़ासतौर पे जब ये फेस्टिव सीज़न होता है, एक अलग सी खनक आ जाती है मन में और एक अलग सा एक उमंग जगने लग जाती है। आप कैसे हो? बढ़िया हो? आई एम डूइंग वेरी वेल। ऑफकोर्स जब ये दिन चलते हैं, फास्टिंग डेज होते हैं, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर आने लग जाती है। आपको फिर वो लोग भी वैसे मिलने लग जाते हैं जो आपको चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, और ऐसे में आप आगे बढ़े पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखें। माई टाइम आपके लिए आ जाता है 10 से 12 बजे मंडे टू फ्राइडे। ऑफ कोर्स मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक बनकर आ गई हूँ ये बताने के लिए कि TGIF, यस, आज है शुक्रवार का दिन। थोड़ी देर बाद हमारा साथ निभाने के लिए रचना फ्रॉम 0800 रचना से आ जाएंगी। देखेंगे इनसे क्या बात करनी, कुछ सवाल है तो भेजो मुझे 5599 पे। और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, 6-word स्टोरी है, ऑफिस शाउट आउट है, और साथ साथ बहुत सारे हमारी जो फॉर्चून करने वाले दिवाली फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, इसमें भी आपका हमें सहयोग चाहिए। आपके टेक्स्ट आएंगे, एंट्रीज लेंगे, एक दिया वो भी उसके बारे में बात करेंगे, आपकी लाइफ का दिया कौन है। गाना बजा रही हूँ।

0: Experts Adda.
1: तो भाई एक्सपर्ट अड्डा मैं डेफिनेटली बात करने वाली हूँ. शी इज राइट नाउ बिजी विद द बैंक. आई थिंक किसी का केस वो सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन एक काम करते हैं, हम आपसे एक दो बातें कर लेते हैं. पहली बात करते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून की. अब जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून की मैं बात करती हूँ तो फॉर्च्यून की ओर से आपके लिए $1,000 कैश जीतने की बात कर रहे हैं, जहाँ $1,000 आप कैश जीत सकते हैं. कैश जीतने के लिए बहुत इजी काम है. आपको क्या करना है, एनी प्रोडक्ट यू थिंक यू वांट टू बाय इन द कमिंग नियर फ्यूचर, यू नो आई कैन जस्ट से दैट. लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि चलो $1,000 जीत लिए. ओके, तो आपका एक कीवर्ड होगा फॉर्च्यून, और आपको बताना है कि अगर $1,000 जीत लिए तो आप क्या करेंगे उसका. ठीक है, लेट्स जस्ट कीप इट एज दैट. हम rova.nz इनका वेबसाइट एड्रेस है हमारा, और टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए वहाँ जा सकते हैं. एवरी टेक्स्ट के साथ में आपके लिए स्टैंडर्ड करियर चार्जेस होते हैं. बस मैं आप समझ लीजिए सिक्स वर्ड स्टोरी, माफ़ कीजिएगा, ऑफिस शाउट आउट की तरफ पहुँचूंगी और एक गाना बजाऊंगी, एंड दैट मच इज़ द टाइम विच आई एम गोइंग टू गिव यू. ओके, नाउ इज़ द टाइम जहाँ आप ये टेक्स्ट मुझे फटाफट कर सकते हैं. इसी के साथ साथ आपको याद दिलाना चाहती हूँ अबाउट नॉट श्योर दिवाली जो होने वाली है अगले सैटरडे के दिन 12 से 9 बजे तक. स्मेल्स फार्म टाकापुना में डांस परफॉर्मेंसेज हैं थ्रू आउट द डे. फन एक्टिविटीज़ फॉर द किड्स आर ऑल्सो देयर. डिलिशियस फूड स्टॉल्स, फेस्टिव शॉपिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. रात को 9 बजे फायरवर्क्स भी होने वाले हैं. तो आप स्टेफनस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड टीम पुनीश के साथ फ्रॉम बाफेट एंड थॉम्पसन इस दिवाली के अवसर पर ज़रूर जाके इनके साथ सेलिब्रेट कीजिएगा. एंड आई हैव दी एक्सपर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट अड्डा विद मी एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू रचना. हाउ आर यू?
2: Hey, good morning, Kashika ji. I'm very good, thank you. How are you?
1: I'm fine. Bank में किसके लिए लड़ाई हो रही थी? हमारे किसी न किसी listener की होगी, है ना?
2: My apologies. Yes, I was supposed to connect. I was on a call with bank. My apologies.
1: I understand. क्योंकि देखो, जब तक हमें हमारे जो financial advisors होते हैं, अगर हमें पता चलता है कि वो फोन पर नहीं आ रहे हैं और वो बैंक के साथ लगे, तो हमारे किसी लिसनर के लिए लगे होंगे ना. करो लोगो लो, लगे रहो, लगे रहो रचना बहन, लगे रहो रचना बहन. हैप्पी नवरात्रि टू यू.
2: हैप्पी नवरात्रि टू यू टू एंड टू ऑल द लिसनर्स. मे माता रानी ब्लेस एवरीवन.
1: थैंक यू सो मच एंड ब्लेसिंग्स टू यू एज वेल. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये हमें आपसे अगर कभी मिलना हो, हम ये फोन वोन पे बात बात बहुत कर लेते हैं, लेकिन कोई एक जरिया है? बिकॉज समबडी हैज टेक्स्टेड दैट हाउ डू वी मीट रचना, वी आर ऑलवेज टॉकिंग ऑन द फोन.
2: यस, सो यू कैन ऑलवेज कम एंड मीट अस इन आवर ऑफिस व्हिच इज लोकेटेड लेवल 345 माउंट वेलिंगटन हाईवे माउंट वेलिंगटन. आप कभी भी हमारे ऑफिस आ सकते हो मंडे टू फ्राइडे. एंड आई वुड ऑलवेज प्रिफर कि एक बार कॉल कर लो, ताकि यू नो इन केस वी आर आउट एंड अबाउट इन द मीटिंग्स, वी एंश्योर दैट समबडी इज इन द ऑफिस टू मीट अप विद यू. एंड अनदर वे इज दैट अगर कोई होम बायर्स हैं या पोटेंशियल होम बायर्स हैं, वेदर दे आर फर्स्ट होम बायर्स और इन्वेस्टर्स, वी आर रनिंग अ वेबिनार ऑन 28th ऑफ अक्टूबर.
1: ओह वाओ.
2: Please do call me. It's a free webinar for Hum FM listeners and property buyers who are interested to know what the fact find is about property purchase. And this is absolutely free webinar. So okay, all what you have to do is call 0800 Rachna, which is 0800-722-462, and do register. It's on 28th October, 7 p.m. to 8 p.m. So, you know, we've kept the daylight savings and all of that in mind, and working hours in mind. So take an advantage of that. Definitely. This will be probably the last webinar for the year.
1: I think this is one place which one should not miss, because you are going to be there with your team and talking and explaining everything to them. I think first home buyers ke liye ek bahut acha mauka hai jahan pe aap ghar
2: bhi first home buyers and home buyers, because home buyers. I have got the guest speakers as So because we've got the guest speakers as real estate agents who are very renowned in the industry, and they will give an insight on how the shifts have happened in the median prices in Oakland, what is the current scenario, where how buyers can take advantage of, discounted rates and all that sort of a thing in property purchase. Because end of the day, you do save money when you are buying a property, not when selling the property.
1: Agreed.
2: And with the rates increasing as well. And 28th October is only because The OCR announcement is happening on 28th of October. So what the new OCR will impact on home buying and interest rates and all that. So it's one of the webinars not to be missed.
1: So kitne baje hoga ye webinar?
2: 7 p.m. to 8 p.m. hai and it's free. Yeah. And you just have to call me on 0800-722-462. And register yourself, and that's about it.
1: Okay, so bhai, yaad rakho, aapko to pata chali gaya. Kahan bhaag rahe hain, na idhar jaane ki zarurat hai, na udhar jaane ki zarurat hai. Kyunki aapko idhar udhar jaane se bachna hai. Aur call
2: karo,
1: Rachna. Bilkul, 0800 Rachna ko phone karna hai. Thank you so much, Rachna. And 28th ke webinar ke baare mein agle hafte phir baat karenge aapse.
2: Bilkul, bilkul.
1: Thank you, bye.
2: Bye.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. इस दिवाली सिर्फ घर नहीं रिश्ते भी रोशन करें। एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा पूजा विधि दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड रामायण मूवी बाय फोरम फिल्म्स इंडेलिबल होम्स लोटस फॉरेन एक्सचेंज ABC Business Consultants, Sona Sansar, Passion Landscape, Amma's Food, PFSL, Arjun Supermarket, Big Bazaar and Fortune Foods.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Office Shoutout.
2: ऑफिस शाउटआउट में देखो मेरे साथ पूरा मेरे कुटुंब बन चुका है विलिंगटन में। अब मैं जाऊंगी विलिंगटन तो मुझे पता है कि मैं कहाँ कॉफ़ी पीऊंगी, कहाँ चाय पीऊंगी, कहाँ नाश्ता करूंगी, ठीक है। तो ऐसे में मेरे अपने दोस्त एश फ्रॉम विलिंगटन, आपका मैसेज आ गया है। आपने लिखा है, बोले बोले दुर्गा माई की जय, वेरी स्पिरिचुअल नवरात्रि की बधाई देते हुए थोड़ी रेनी थोड़ी सनी वाली सरगम में खनकते हुए काशिका जी के साथ वीकेंड की शुरुआत में वेरी हैप्पी हेल्थी वाली शुभ प्रभात। बिल्कुल सुप्रभात आपको भी। और साथ साथ मेरे साथ जुड़ गई हैं द वगार क्वीन यानी कि मीनाक्षी, आपने भी मुझे टेक्स्ट किया है माउंट रॉस्किल में। आपको गाने मज़े आ रहे हैं, आपको लग रहा है डांडिया, आपके मन कर रहा है गाने सुन के कि आप डांडिया घर पे बैठ के अभी करना शुरू कर दो। ओके ओके, इन्जॉय योर सेल्फ। तो मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ते बढ़ते एक ही चीज़ याद दिलाऊँगी, बहुत कम टाइम बच जाता है ना आप लोगों के साथ बात करने की। हम आपको चाहता है, हाँ हम एफ एम चाहता है, अब एक बहुत बड़ा मैच देखें। अब ये मैच है ऑन 12th of November जहां इंडिया की फुटबॉल की टीम आ रही है एंड ऑल वाइट्स के अगेंस्ट खेलने वाली है एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एट द गो मीडिया स्टेडियम। पहुंच जाइएगा आप अगर आपको टिकट्स खरीदनी है, वैसे हम एक डबल पास दे रहे हैं। कोशिश कीजिए हमारे फेसबुक के पेज पे पहुंच जाएं, किसको लेके जाना चाहते हैं टैग कीजिए और प्रिडिक्ट कीजिए कि क्या फाइनल स्कोर होगा।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इनडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

ईट बेटर लिव बेटर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कई बार चैलेंज लगते लगता है. कैंसर ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन एट स्टारशिप हॉस्पिटल, ये डिले हो चुका है जहाँ पे हॉस्पिटल की जो नर्सेज की शॉर्टेज चल रही है, और ये हेल्थ न्यूजीलैंड ने कंफर्म भी किया. लेकिन हेल्थ न्यूजीलैंड ने ये भी कहा कि ये केमोथेरेपी या बोन मैरो की ट्रांसप्लांट वर अमंगस्ट द ट्रीटमेंट्स जो इफेक्ट ज़्यादा नहीं हुए हैं. और लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ बच्चे एक्चुअली दे हैव फेस डिलेज बिकॉज, क्योंकि ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है और ये एक पुश बैक करना पड़ रहा है कई जगह कुछ लोगों को. तो कई लोगों ने पता लगाया कि क्या ये इफेक्ट हो रहे हैं स्टाफिंग क्राइसिस की वजह से. इसमें नर्सिस का नाम तो नहीं उसमें आ रहा है, बट ये पता चल रहा है कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द डिलेज. बट ये भी पता चल रहा है कि स्टारशिप हॉस्पिटल इस समय बहुत ज़्यादा इस शॉर्टेज की वजह से परेशान है. We are the sounds of the streets.

0: ईट बेटर लिव बेटर. ऑफकोर्स इतनी सारी चीज़ें होती हैं जब हम दिवाली सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, जब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. मैंने वैसे आपसे कहा था पहले, आपने मितेश लैपटॉप लेना चाहते हैं अगर आप $1,000 जीत जाते हैं. शर्मिला, आपने कहा दिवाली की शॉपिंग करेंगे, ग्रोसरी शॉपिंग आप भी करने वाले हैं, क्या बात है. वैसे इतनी चीज़ें जब होती ही हैं तो आपको बता देते हैं कि हम जो एक रामायण एक गाथा, ये हम 8:20, 1:30 और 6:45 पर करते हैं डिफरेंट टाइम जोन में. 1 से 2 मिनट का एक स्टोरी टेलिंग होती है जहां रामायण एक गाथा हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं. याद रखें, आप इन्हें ज़रूर सुनिएगा. इलेक्शन स्पेशल्स में ड्राइव टीम की कल बातचीत हुई है और दिस वॉज विद किले वोंग, लीडर ऑफ द अपॉर्चुनिटी पार्टी, और इनसे बहुत सारे सवालात हुए हैं. इनका लिंक आप फेसबुक के पेज पे देख सकते हैं, नहीं तो ड्राइव 5599 पे लिख के भेजें, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. ड्रीम इंटरप्रिटेशन करना है, किसी को कुछ पूछना है तो बहुत जल्दी से करो 5599 पे.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: Hey you, your scrolling just got rewarding. Renew 3 times in a row with Skinny to collect everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny. Happy, happy,
3: happy, oh. Be in to win one of 5 $10,000 Mitre 10 gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho. Camping ka pura gear le sakte ho. Ek room ka makeover kar sakte ho. Ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo. Apna receipt code online enter karo. And you are in the draw. Plus, club members get their entries doubled. T's and C's apply. And 1st November. Shop now at Mitre 10.
4: The Cooperative Bank's home loan crew are in the house. Check it. Got that home dream, but don't know where to start? Little KiwiSaver and lots of listings bookmarked. LIMS, LVRs, what does it all mean? Been checking out listings since 2019. Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for your tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. From first questions to front door keys, we got you. T's and C's apply.
5: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका लोटस मैनिकाओ माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट बस एंट्री फॉर्म भरो रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो फॉर्च्यून दिवाली बी इन टू विन एंड 15th नवंबर टीज एंड सीज अप्लाई
6: मैं हूं हरीश लोडिया दिवाली की धूम एट सोना संसार नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियां वो भी आ गई है डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस सोना संसार 190 स्टोडार्ड रोड माउंट रॉस्किल या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटोए कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड हमारा फोन नंबर 629-3333 फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz
7: Octopus factory farms in New Zealand? Sounds unthinkable, but your tax dollars have been funding the research. Sign the petition and keep octopuses wild. Go to banoctopusfarming.co.nz.
8: It's 10 a.m. and you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World online same day click and collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
1: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकालकर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं स्लीप मूड एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें

0: ड्रीम डायरी।
1: सो ड्रीम डायरी में आपका मेरे पास कॉल है और आपने कहा कि यू फील वेरी इमोशनल एंड स्पेशली यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्पेशली जब आपको लगता है बहुत बार डांस कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं कि ये डांस जो होता है अनलाइक अदर ड्रीम्स ये बहुत जल्दी फेड आउट होने लग जाता है। समटाइम्स इट स्टेज विद यू, एक डिवाइन वार्निंग होती है आपके लिए और शायद वो एक क्लैरिटी आप ढूंढ रहे होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, इट डजंट गेट वॉश्ड अवे इन द मॉर्निंग, है ना। और कभी कभी एक मैसेज होता है ऑलमाइटी का कि यू नो यू शुड बी थिंकिंग मोर ऑफ बीइंग आउट एंड डूइंग अदर काइंड ऑफ थिंग्स, यू शुड एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, राइट। तो कभी कभी रिपीट पैटर्न में अगर आपके लिए आ जाते तो इट बिकम्स अ सिग्नल फॉर यू टू गो आउट एंड डोंट पैरालाइज योर सेल्फ। अगर कभी डर लग रहा है कुछ हो रहा है तो अपने आप को पैरालाइज मत करो। काउंसलिंग की ज़रूरत है ज़रूर कर लो, लेकिन कोशिश करो आप नेक्स्ट टाइम जब कुछ भी होना है सब मुझे पूरा समझ में नहीं आया, राइट डाउन योर इमोशंस, राइट डाउन योर ड्रीम एंड टेल मी।
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: नवरात्रि का मौका होता है ऐसे में महामाई के लिए हम लोग जब नाचते हैं गाते हैं और धूम मचाते हैं तभी तो वो एकदम जोश बनता है चलिए जोश आपका बरकरार रखते हुए ये गाना अब आपके लिए

0: चल रहा है बहुत न्यूज में, हैप्पी तो नहीं।
1: Driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ।
3: ये गलत बोल दिया यार।
2: और पहनता भी नहीं है उसको।
3: अब बाल जा रहे ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो।
3: अभी ब्रांड हो गया ना।
2: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
5: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
6: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility, lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do have.
7: रुस्बे 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
8: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
7: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
8: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
7: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
8: बुक नाउ विद सन टूर्स।
7: कॉल करें 0800-478-686।
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
10: अच्छा
9: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह।
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
13: एक घर, एक दिवाली और एक लिस्ट जो खत्म ही नहीं होती। दिवाली डेकोरेशंस, वाटर क्ले और इलेक्ट्रिक दियास, आइडल्स, पूजा सामग्री, करवा थाली सेट और किचन में हीरो की एंट्री। प्रेशर कुकर, ट्राइप्लाई कुकवेयर, स्टील यूटेंसिल्स, NZ सर्टिफाइड गैस स्टोव, तंदूर, डिनर सेट्स, ब्लॉकबस्टर सेल, अप टू 35% ऑफ प्लस फ्री ऑकलैंड डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $50। गुरुमार्ट, घर का सामान, लो प्राइसेस, हाई क्वालिटी हमेशा।
14: गुरुमार्ट 154 कोलमा रोड पापाडोई या gurumart.co.nz।
15: फैशन लैंडस्केप, जिनके नाम में ही फैशन हो, सोचिए उनकी टीम कितनी पैशनेट होगी। रिटेनिंग वॉल्स, कंक्रीट एंड पेविंग ड्राइववेज, फुटपाथ एंड कार पार्क्स, व्हीकल क्रॉसिंग्स, कर्बिंग एंड वॉकवेज, ड्रेनेज वर्क एंड न्यू बिल्ड, या फिर गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, कमर्शियल या रेसिडेंशियल, सब डिविजन्स या लाइफस्टाइल ब्लॉक्स, या चाहे हो प्लांटिंग, डेकिंग, फेंसिंग या पॉन्स। ओवर 16 इयर्स लोकल एक्सपीरियंस, फैशन लैंडस्केप है लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट्स। कॉल 0217513300। फैशन लैंडस्केप, आपके आउटडोर स्पेस स्पेशलिस्ट्स।
16: Time check.
17: Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
16: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
18: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Starting in the US, and children are among multiple people injured during a school shooting in the state of Oregon. Their status isn't known. Police say they were initially called to reports of a car being shot at an elementary school. Sheila Miller from Bend Police says the shooter has been killed.
19: We do not know. We don't have confirmation yet who shot the suspect. It may have been a bystander.
18: And likely more on that at midday. Now back here, there's a police cordon in place where a car went into the water in Tauranga with the dive squad called in. It happened just after 12:30 this morning on Chapel Street, and one person was taken to hospital. Officers are trying to work out whether a second person was in the car. Staffing at Starship Hospital is being bolstered by redeploying nurses from across the system. Some child cancer treatments have been delayed. Health NZ's Dr. Mike Shepherd says they have protocols set up.
6: Starship has a senior nursing model and a resource nursing model that provides support when they don't have enough staff or they have particularly busy times.
18: And the ACT Party is promising to increase penalties for illegal rubbish dumping if re-elected. Rural Communities spokesperson Andrew Hoggard says illegal dumping is vandalism just by another name. He says the infringement fee would increase, and ACT would also empower the courts to impose higher penalties. In sport, Rugby First and Richie Mwanga might not play another game for the All Blacks this season. The first five injured his calf at training last week. Coach Dave Rennie says Mwanga is in major doubt for the end of year tour.
10: You know, that injury is potentially a 6 to 8 weeker. And if we got him back in five, even that, you missed the first couple of games on tour.
18: And Kiwi squash star Paul Cole has lost in the semi-finals of the Egyptian Open played at the foot of the Great Pyramids of Giza.
16: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: The highs of 16, overnight temperature of 6, aaj ka forecast bataya ja raha hai. It feels like 15 degrees, kuch hawaye dopahar ke samay jo hain, sham tak kam ho jayengi, 7:39 par sunset bataya gaya hai.

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. आई एम एक्साइटेड. नवरात्रि का दिन है और इस महा रात्रियों में बहुत सारे लोग होते हैं माँ के चरणों में. हमेशा आस्था लेकर आप हर शाम डांडिया खेलने पहुँच जाते हैं, हर सुबह दिया जलाते हैं. आप कितने बहादुर हैं और साथ साथ आपको क्षमा प्रार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवी हैं और देवी के सामने आप जब ऐसे पहुंचते हैं तो देवी सब कुछ समझ ही जाती हैं, है कि नहीं. चलिए इसी मूड में ही अब आपके लिए गाना
1: बजाओ. क्या
2: से गिरी तेरी काई, शुरू तेरी फाइट, तेरी फ्लाइट.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: ऐसा होता है ना कि हम प्रोटीन्स लेते हैं, फिर कहते हैं अरे प्रोटीन्स तो हमने ले लिए हैं, अब क्या आपको लगता है हाई प्रोटीन का कॉन्टेक्ट है कॉन्टेंट है कि नहीं है, ये फिलिंग है या फिर फाइबर, क्या फिलिंग हो सकता है? तो सबसे पहले प्रोटीन के बारे में बता देती हूँ. अक्रॉस द डे इफ़ यू आर ईटिंग दही, इफ़ यू आर ईटिंग अ बीफ बर्गर, इफ़ यू आर ईटिंग 220 grams ऑफ बादाम, फॉर मेन सम एक्स्ट्रा कुक्ड चिकन थाई 75 grams के करीब, तो ये आपके लिए एक अच्छा एक बैलेंस माना जाता है. ओके, नाउ दिस इज़ फ्रॉम द एज ऑफ 19 to 70, करीब 46 grams जो है अप्रॉक्सीमेटली फॉर अ वुमेन एंड 64 grams फॉर अ मैन. अब व्हाट अबाउट फाइबर, डाइट्री फाइबर्स जो होते हैं जिसमें कार्ब्स होते हैं, ह्यूमन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ऐसे में ये एब्जॉर्ब करना पड़ता है, उसमें शुगर स्टार्चेस ये सब कुछ होते हैं और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं डाइट्री फाइबर हमारे लिए, और एक रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स इम्प्रूव करते हैं, गट जो हमारा होता है हेल्थी बैक्टीरिया वो फॉर्म करते हैं. तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि ये भी अच्छी तरह चलते हैं. बट हाउ मच फाइबर डू वी नीड? वैसे ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुई जिसके ज़रिए पता चला कि अडल्ट वुमेन कैन ईट 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर अ डे एंड अ मैन कैन ईट 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर टू गेट एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स. कहते हैं आपको अपने लॉन्ग टर्म डिजीज़ और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इतना ही रखना चाहिए, डोंट इंक्रीज मोर देन 3 grams एक्स्ट्रा. अब It looks like that in Australia they don't eat much fiber. ये information एक study के ज़रिए पता चली. So the fiber intake is very very important. The quantity, the quality of food what you eat is very very important. So कभी कभी ये fiber supplements में भी मिल जाते हैं और कभी कभी हम कह सकते हैं ये जो चीज़ें क्या filling रहती हैं हमारे लिए कि नहीं, दोनों, या protein है या फिर आप fiber की बात करते हैं, फीलिंग होती है, फुलनेस की फीलिंग भी आपको आती है और जनरली एक न्यूट्रिएंट की तरह से जो स्टडी के ज़रिए पता चला है दोनों के अंदर अच्छी चीज़ की फुलनेस आपको, आप खा लेंगे आपकी फुलनेस ज़्यादा बनी रहेगी. मोस्टली चूजिंग अ फूड जो एक रिच होता है डाइट्री फॉर प्रोटीन या फाइबर के ज़रिए इट्स ऑलवेज बेटर, चाहे दाल है, बीन्स है, नट्स हैं, ये भी आपको काफ़ी फुल रखने की कोशिश करते हैं. बट एक डाइट्री फाइबर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोटीन्स, कितने ज़्यादा आप ये प्रोटीन्स खा रहे हैं. सो रिमेंबर द रेशियो जब आप ले रहे हैं, आपका इनटेक जो भी है वो रिकमेंड किया जाता है 25 ग्राम्स फॉर फाइबर इन अ डे फॉर अ वुमन एंड इट इज़ 30 ग्राम्स फॉर अ मैन, बट उसमें सिर्फ 3 ग्राम्स एक्स्ट्रा जा सकते हैं आप. कमिंग अप नेक्स्ट ऑफ ए शाउट आउट, डांडिया गरबा से रिलेटेड कोई 6-word स्टोरी भेजो ना.
1: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
1: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही.
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा.
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 months इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
4: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
5: settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
6: Bonjour, I'm Fun. You might remember me from the backpackers in Paris. Look, we've had all kinds of fun over the years, right? Good, clean, harmless, kinky. But ever since you got a mortgage, you've ghosted me. That's why you need to talk to NZHL. Because we used to spend a whole paycheck buying festival tickets, and now you're using your holiday fund to paint the back fence. NZHL helps you to get ahead without giving up fun. Have a mortgage and a life with NZHL. Au revoir.
7: NZHL. Be in to win one of $5,10,000 My to 10 gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho. Camping ka pura gear le sakte ho. Ek room ka makeover kar sakte ho. Ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo. Apna receipt code online enter karo. And you are in the draw. Plus, club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at My to 10.
8: Smile.

0: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
1: 35 minutes and we've moved 3 kilometres.
2: Welcome to peak hour commute, babe.
1: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
2: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
1: Yeah, that sounds like me.
2: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
1: Well, you're driving, so I'll do it now.
2: That was quick and easy.
3: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
4: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six-word story.
5: तो मेरी आज की सिक्स वर्ड की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी लिखी है आपने. म्यूजिक राइजेस फीट स्पिन हार्ट्स अलाइन. म्यूजिक राइजेस फीट स्पिन हार्ट्स अलाइन, ब्यूटिफुली सेड. फिर आपने लिखा फास्टिंग डेज टर्न इन टू फीस्टिंग नाइट्स. ये बात कन्फर्म्ड है. ये बात मतलब आई एम विद यू एंड ये फास्टिंग डेज जो है हम लोग करते ज़रूर हैं, मगर रात को जब खाना बना के भोग लगाते हैं ना, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, है ना, ऐसा हो जाता है. वैसे एक दूसरे को हम इंस्पायर करते हैं. अरे इंस्पायरिंग से मुझे याद आया हमारा एक दिया एक कहानी. तो मेरे पास अब मैं लाइन खोल रही हूँ, आपको कॉल करना है और बताना है कि ऐसा कोई है जिसको आप अपनी ज़िंदगी का एक, अपनी लाइफ का एक दिया मानते हैं कि भाई तुमने मुझे गाइडिंग फोर्स हो मेरे. तुम कल सनिल आपने कहा आपके बॉस ने आपका बहुत ध्यान रखा, आपको वीज़ा वगैरह दिया, एंड दैट वाज समथिंग सो ब्यूटीफुल. मैं समझती हूँ मेरे लिए गाइडिंग लाइफ रही है 2004 में मैं आई थी, जब तो मैं थोड़ा बोर हो गई थी यहाँ पर, और 2004 से मैं वापस दुबई चली गई. उसके बाद 2007 में आई, फिर मुझे तभी भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा. 2011 व्हेन आई केम, तो उस दौरान जब मैं आई, मैम टॉकिंग अबाउट मैं 0800 00 हम पर कॉल कर लेना जब तक मैं कहानी सुना रही हूँ अपनी, ठीक है, ओके. तो 0800 00 हम पर कॉल करना. $300 सवाल का सवाल है, मेरे को नहीं मिलेंगे, आपको मिलने हैं, ओके. अच्छा, तो फिर 2011 में फाइनली जब मैं आई तो उस दौरान मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ क्या होगा जो मैं, जिसके ज़रिए मैं कह सकती हूं कि मैं अब यहां पे सेटल होना चाहती हूं. एंड देन केम हम एफएम ने मुझे एक जॉब ऑफर दिया कि भाई तुम आओ और आकर हमारे साथ काम करो. मेरे लिए मेरी गाइडिंग लाइट बन गई हम, क्योंकि उसके बाद मेरी हर एक चीज़ फोकस हो गई थी अराउंड हम. 2011 की बात है, आज देखो 2026 में हम बैठे हुए हैं. तो मेरे लिए मेरी गाइडिंग लाइफ, शाउट आउट टू हम एफएम, लव यू हम एफएम फॉर गिविंग मी वॉट एवर यू गिविन मी टुडे. एंड ये मेरे लिए मेरा खजाना है, ये मेरे लिए मेरी बहुत बड़ी एक जायदाद है, मैं कह सकती हूँ. चलिए 0800 00 हम पर आप मुझे कॉल करें, बताएं कि आपके लिए आपकी गाइडिंग लाइफ में क्या हो सकता है. एक शाउट आउट किसी को देना चाहते हैं, मैंने हम एफएम को शाउट आउट दिया, मैंने रोशिला जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, हम उन सब हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उनको भी शाउट आउट में देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सिलेक्शन में मेरी वही सबसे पहले थी. तो सोच लीजिए कि हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत गुजरी इतने 15 साल. तो 0800 00 4866 इज़ द नंबर जिस पर आप अभी कॉल नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से यूं फिसल गई है अब.
4: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: अनगुद।
1: तो ये कॉल मेरे पास थोड़ा आ रही थी, मैं पानी पीने के लिए बाहर चली गई थी एंड मैंने इनसे कहा था होल्ड करो, एंड फाइनली इन्होंने अपने दिया द लाइट ऑफ हर लाइफ। देखते हैं कि क्या बोलना चाहती हैं। पुष्पा गुड मॉर्निंग, कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ। मेरा लाइट है मेरी फ्रेंड प्रिया और सोमिया। एक्चुअली मैं दे बोथ आर माय लाइट। जैसे द क्विक वन इज लाइक समटाइम्स यू कांट टॉक सम थिंग्स विद योर हस्बैंड और योर चिल्ड्रन एंड यू कैन टॉक एवरीथिंग टू योर फ्रेंड्स, सो दोज आर द टू पीपल आई रियली लव देम एंड दे आर माय लाइट। दे हैव बीन देयर फॉर मी माय अप्स एंड डाउन्स एंड दैट्स व्हाट दैट एंड आई आल्सो वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू देम।
1: ओह वाओ, व्हाट आर द नेम्स यू सेड अगेन?
2: प्रिया एंड सोमिया।
1: एंड एक चीज जो आपने बहुत ही खूबसूरत मुझे बताई, वो ये बताई कि आपने अपने ऑफिस में क्या करा हुआ है, बताइए थोड़ा जोर से बोलिएगा।
2: एक्चुअली मैं मेरे ऑफिस में हम इस वीक आई एम बीन वेयरिंग डिफरेंट कलर्स एंड ऑल माय कॉलीग्स आर वेयरिंग द सेम कलर्स, दे ऑल यूरोपियंस एंड ऑल डिफरेंट, दे नन ऑफ देम आर इंडियन एक्सेप्ट मी। बेचारे खोज कर पहन पहन कर आ रहे हैं, आज सब ग्रीन पेन है। और मेरी डायरेक्टर के पास भी येलो कलर नहीं था, तो बेचारा बेल्ट येलो पहन कर आया और मुझको दिखा रहा मैंने येलो ही पहना हूँ। आज वो ग्रीन ही पहन कर आए, सो इट इज रियली गुड अप्रिशिएटिंग एंड इट्स रियली रियली नाइस दैट दे आर टुगेदर एस एंड वी नॉट इवन अ बिग टीम, इट्स अ स्मॉल टीम बट इट्स सो नाइस टू सी डिफरेंट कलर्स। Otherwise, in the office, हमारे ब्लैक एंड व्हाइट के सिवा कुछ होता ही नहीं है, but it is so amazing to see different colors.
1: I know.
2: So they're waiting for the next color, which is on Monday, which is peacock green. So they're going to go and say something.
1: Oh my God, क्या बात है! चलिए, आपका मूड और भी लाइट अप करने के लिए ये गाना मैं बजा रही हूँ. And a big shout out to your office people as well.
2: Thank you,
1: and I'm putting your name into the draw, Pushpa.
2: Thank you.
1: Enjoy yourselves and this is beautiful.
2: Thank you.
1: Take care.

0: तो एक बात तो ये है जो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट क्या खास चल रहा है, क्या खास नहीं चल रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, जहाँ $5,000 वर्थ के वाउचर्स, यानी हज़ार के वाउचर्स हम देने वाले हैं। अब बारी आ रही है न्यू वर्ल्ड के वाउचर्स देने की, $1,000 के एक को जाएंगे। लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला, एक घर का जाना माना नाम है फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, 0800 लॉजिक जी पर इनसे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, आपको क्या करना है, लॉजिक लिखना है 5599 पे, और आपको ये बताना है आज का फेवरेट सॉन्ग आपका कौन सा रहा जो मैंने बजाया आपके लिए। लास्ट सॉन्ग मत बोलना, पिछली बारी आपने ऐसे किया था। आज इतने सारे गाने बजे हैं डांडिया से रिलेटेड और नवरात्रि से रिलेटेड, तो आपके पसंदीदा गाना कौन सा है, एक कोई भी गाना अगर आप बताना चाहें, आपको लॉजिक लिखना है, आपका फेवरेट सॉन्ग जो आज मैंने प्ले किया है वो लिखना है, और मुझे भेज देना है 5599 पे अपने नाम के साथ। याद रहे स्टैंडर्ड करियर चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप समझ सकते हैं ऑन hum.rova.nz पर।
1: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
2: रुस्बी, टिकट्स बुक हो गए,
1: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा।
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
10: Fall in love with your home again with an ANZ Reno Loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility, lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
11: Hey you, your scrolling just got rewarding. Renew 3 times in a row with Skinny to collect everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny. Happy, happy, happy,
12: oh. Glad I got my enrollment sorted the other day. See, mate, I told you it was easy.
13: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
12: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
13: Really? What if I miss it?
12: Well, your vote won't count for this year's election.
13: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
14: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
15: Big Bazaar mein biggest range of puja ghar mil rahe hain. Pure marble murtis, copper murtis, gunmetal murtis, devi devtaon ke vastra, sabhi tarah ke haar and extensive range of puja items. Big range of console tables, mirrors, curtains, sofa covers. Ina and Lahore brand of musical instruments bhi available hain. Big Bazaar 302 Great South Road, Papatoetoe. Your one-stop shopping destination this Navratri.
16: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex aur ye hai meri guest Sarah.
17: Kya banate hain kebab ko special, Chef Alex?
16: Perfect blend of spices, tender meat aur fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
17: Wow! wow, these kebabs are amazing. Spices make them right and meat is so juicy.
16: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
17: 100% authentic and pure as mother's love.
18: रुजबे 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
19: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
18: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
19: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
18: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
19: बुक नाउ विद सन टूर्स।
18: कॉल करें 0800-478-686.
20: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku for full terms and conditions.

0: Factor.
1: Rescue me, recycle me.
2: वैसे एक बात बताओ केतन, कि तुम तो यहाँ आ गए हो, लेकिन तुम घर में जब हम लोग कुछ रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं, क्या तुम यू नो घर के जो बाथरूम का स्टफ है उसको किस तरह से रिसाइकल करते हो?
3: वैसे थैंक यू, व्हाट अ ग्रेट इंट्रो.
2: मैंने पुट यू इन अ कॉर्नर, डिडंट आई?
3: या आई वाज लाइक, केतन ये कौन है? रिसाइकिल तो लाइक यू नो एवरी वीकेंड, ऑब्वियसली सैटरडे इज द डे जब हम थोड़ा साफ सफाई करते हैं, यू नो वी ऑल कलेक्ट एवरीथिंग. And yeah, I mean, एक बैग में रखते हैं. सॉरी, आपका सवाल क्या था?
2: क्योंकि सडन आ गया ना. रीसाइकल करते हैं ना जब हम लोग कुछ बाथरूम की चीजें खासतौर पे, जैसे शैम्पू की बॉटल्स हैं और ये सब चीजें होती हैं, इनको हम लोग मोस्टली फेंक देते हैं किसी तरीके से. बट डू यू हैव अ सेकंड बिन इन योर हाउस, और हाउ डू यू जनरली रीसाइकल?
3: एक्चुअली शैम्पूज और ये हमने स्टार्टिंग में लिया था वेरी फर्स्ट टाइम, बट देन वी रियलाइज प्लास्टिक जो है, ऑब्वियसली प्लास्टिक मतलब ये फिजिकल प्लास्टिक जो सॉलिड वाला है, तो ये रिसाइकल हो सकता है. तो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इट नाउ, हमारे पास एक बॉटल ऑलरेडी है, तो उसको हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया दैट वी आर यूजिंग इट एज अ रीयूज्ड. एंड वी स्टार्टेड बाइंग द प्लास्टिक जो होता ना, लाइक लिटरली प्लास्टिक क्या बोलते हैं, लाइक एकदम कपड़े जैसा जो होता है, बिकॉज देयर इज वन सॉलिड बॉटल एंड देन यू हैव द प्लास्टिक बैग. तो हमने प्लास्टिक बैग बनाना खरीदना शुरू कर दिया, बिकॉज वो तो ऑब्वियसली जाना ही है. तो उसमें हम कचरा डाल देते हैं जब हमें फेंकना होता है, एंड देन ऑब्वियसली हम रीफिल कर लेते हैं जो प्लास्टिक वाला है. सो वी स्टॉप्ड बाइंग प्लास्टिक वाला, अनलेस कोई ऑप्शन नहीं तो बात अलग है. तो उस केस में क्या, रिसाइकलिंग का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो गया हमारे.
2: क्या बात है, क्या बात है, मतलब दिस इज फैंटास्टिक. आई एम डेफिनेटली थैंकिंग यू, बिकॉज मैं आई वाज लिटरली लाइक स्ट्रगलिंग के क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, रिसाइकलिंग में हम लोग क्या खर्च कर सकते हैं. बाय द वे, न्यूज़ की अगर मैं बातें करती हूँ ना, तो यहाँ पर एक कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं. कुछ लोग जो हैं टोरंगा में जो है वो बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि दे आर ट्राई, दे फाउंड सम बॉडी ओवर देयर, एंड वो सरफेस पे आज सुबह सुबह आई है वो बॉडी. और टोरंगा के वाटरवे के टाइम की ये बात हुई थी, तो आई थॉट लेट मी जस्ट इन्फॉर्म द पीपल दैट पुलिस वॉज देयर एट साइट एंड दे हैव नॉट येट आइडेंटिफाइड द पर्सन. चलिए एक गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं बाय बाय करूँगी.
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे, और ये ब्यूटीफुल सा डे है शुक्रवार और नवरात्रि का दिन है. तो चलो आपका अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में सभी को याद रखिएगा. इन्जॉय दिस ब्यूटीफुल टाइम टुगेदर एब्सोल्युटली. एंड ये फेस्टिव सीज़न में कोशिश कीजिए लोगों को भूलने की, जहाँ पर आप मैं इतना ही कह सकती हूँ दैट या ये फेस्टिवल ऐसा होता है जहाँ पे भूल चुक माफ़ सबको हो जानी चाहिए. ठीक है, चलो अभी के लिए चलती हूँ. मंडे की सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात करती हूँ. हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. एंजॉय योरसेल्फ. कहीं से ना किसी गरबा या पूजा में मुलाकात होगी. टेक केयर, बाय बाय.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very
2: acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Local.
1: Weekdays, 6 to 10am.
2: Make a splash with Instant Kiwi for your chance to win up to $50,000. Dive into your local Lotto NZ store and ask for a $3 Sequest ticket or play online at mylotto.co.nz. It's one quest with two ways to play. You never know. R18.
3: Ruzbe, 2026 mein na bahut kaam kar liya hai. Ab to break banta hai.
4: Bilkul, to lete hai ek luxurious holiday break. Bali aur Bangkok.
3: Aur aap bhi chaliye Sun Tours ke saath Easter 2027 mein.
4: Bali 6 din aur Bangkok 5 din complete luxurious holiday package. Book कीजिए till Diwali और पाइए free 2 nights, 3 days Sydney to Sydney cruise package.
3: 2027 Easter को बनाइए extra special. Bali, Bangkok और free cruise.
4: Book now with Sun Tours.
3: Call करें 0800-478686.
5: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 weeks at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 weeks on now at Pack and Save.
6: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकाल कर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है. आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है. एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो. बोली, बस मेरा फोकस है.
8: हाँ. अच्छा,
7: बताओ तुम्हारा फोकस. फोकस साडा कुछ नहीं.
8: मिसेस सिंह.
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहोहो. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz.
11: Reliance Ventilation System.
12: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
11: Moisture और ventilation का problem लगता है.
12: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
11: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
13: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
14: Diwali is here aur Note Show mein hoga roshni ka jashn. Bigger and brighter than ever. Stefano's Financial Solutions with Team Punish and Anna from Barfoot and Thompson presents Note Show Diwali Festival of Light at Smales Farm, Takapuna. Saturday, 24th October, 12 noon to 9 pm. Dance performances all day. Fun activities for the kids. Yummy khana and shopping. Aur raat 9 baje spectacular fireworks. Free entry, free car park. Note Show Diwali. Celebrate the light with your people.
15: Fashion Landscape, जिनके नाम में ही फैशन हो, सोचिए उनकी टीम कितनी पैशनेट होगी. रिटेनिंग वॉल्स, कंक्रीट एंड पेविंग ड्राइवेज, फुटपाथ एंड कार पार्क्स, व्हीकल क्रॉसिंग्स, कर्बिंग एंड वॉकवेज, ड्रेनेज वर्क एंड न्यू बिल्ड, या फिर गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, कमर्शियल या रेसिडेंशियल, सब डिविजन्स या लाइफस्टाइल ब्लॉक्स, या चाहे हो प्लांटिंग, डेकिंग, फेंसिंग या पॉन्स. ओवर 16 इयर्स लोकल एक्सपीरियंस. फैशन लैंडस्केप है लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट्स. कॉल 0210751330. फैशन लैंडस्केप, आपके आउटडोर स्पेस स्पेशलिस्ट्स.
16: Time check.
17: Brought to you by Maan Tires for all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00-00-10.
16: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
18: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. The Green Party has promised a universal payment for nurses, teachers and social workers on placement if elected. Under the policy, they would get $380 weekly on top of any pre-existing student loan or allowance. Students who move would also be eligible for a relocation payment of $1,500. Stats NZ has confirmed what we all know. Petrol and diesel prices have spiked. Petrol prices rose by 6.4%, diesel by 7.8% from August to September. It says prices were above March levels but still below the April peak. For the year ending September, petrol was up 24.3% overall and diesel a whopping 55.8%. And overseas, a school shooting in the US state of Oregon has injured multiple people, including children. Police say the shooter has been killed, reportedly by a bystander. This local news anchor on KTVZ broke down in tears.
19: This really breaks my heart as some children are among the victims. And our thoughts and prayers go out to them and their families.
18: In sport, Rivers Reihana could be close to an All Blacks call-up with Ruben Love and Richie Mwanga out injured, but Northland teammate Corey Evans reckons the first five has more important things to do.
0: Bit of a rumour saying Rivers is he's actually turned down the All Blacks to captain the Tunnies, but I think he's ready 100%.
18: He does that tonight. The Tunny Far host Otago in the NPC semi-finals, the first one at 10 past 7. And one test All Black Brett Cameron has re-signed with the Hurricanes for the 2027 Super Rugby season.
16: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
20: वेदर के हाल चाल जान लेते हैं. 18 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है एंड 6 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, यानी कि ठंड बहुत लगने वाली है आज रात को. 50% चांस है बारिश के आज. 0.1 mm हो गई रिकॉर्ड, लेकिन 7:39 पे होगा आज का सनसेट. हाँ जी, डेफिनेटली आ गया मैं. क्यों रहा, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, बुला, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो. वेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. हम रेडियो पे यानी कि 104.2 FM के जरिए आप मुझे सुन रहे हैं. सिटी में है तो 87.7 के जरिए भी सुन सकते हैं, बट सबसे बेस्ट पता है क्या है, स्विच करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे. जस्ट डाउनलोड द रो ऐप, आप अपने फ़ोन पे कर लीजिए, एकदम बेस्ट टाइम है. एंड यस, फ्री ऐप है, डाउनलोड करिए, वहाँ से एंजॉय कर सकते हैं. डेटा की भी कोई टेंशन नहीं, आई एम प्रीटी श्योर आप सभी के पास अनलिमिटेड होगा. अगर नहीं भी है तो भी लेट मी पुट दिस कि भाई जितना स्टोरी आप डालते हैं, लाइक लेट से फॉर एग्जांपल आपने 20 सेकंड की स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या स्नैपचैट पे या एनीवेयर, जितना डेटा वो यूज़ करेगा ना, वो 20 सेकंड की स्टोरी आपकी इज इक्विवेलेंट टू 1 hour ऑफ लिसनरशिप ऑन रो ऐप. मतलब कैलकुलेट कर रहे हो आप, लाइक जब आप वहां पे 20 सेकंड की स्टोरी डालने में सोचते नहीं हो तो यहाँ की सोचना भाई, है ना. यहाँ पे सोचना नहीं मतलब कि जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना कम डेटा यूज करता है. सो यस, अगर आप पूरे दिन भी सुनेंगे तो भी देख लीजिए कितना, मतलब आप 7 से 8 स्टोरी डालेंगे तब जाके आपका वो जितना डेटा जो है वो यूज होगा. सो यप, दैट इज व्हाट इट इज. बट अभी के लिए बने रहिए, मुझे होम सिक रेमेडीज के लिए भेज दीजिए मैसेजेस जिसपे बात होगी, चर्चा होगी. काफी इंटरेस्टिंग मेरे को मैसेजेस आते हैं तो यस, उसको कंटिन्यू रखिए. और ये जो पहला गाना है ना, ये इसके ऊपर है, सुनिए.
16: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। ये रहा मैसेज रिगार्डिंग होम सिक रेमेडीज के लिए। वेल अमित भाई, उनका मैसेज आया है, वो कहते हैं वेंट फॉर अ कैजुअल 25 मिनट्स वॉक अलोंग द बीच यस्टरडे आफ्टरनून। द टेम्परेचर वॉज ओनली 19 डिग्रीज विद अ कूल ब्रीज एंड स्कैटर क्लाउड्स, सो आई डिड नॉट बॉदर वेयरिंग अ हैट और सनस्क्रीन इन बिटवीन बिकॉज इट वॉज लिटिल बिट क्लाउडी एज वेल एंड यस obviously at one point it was very sunny as well. I got home, locked in the bathroom mirror and my entire face, neck and forearms were blistered bright red. I literally look into a walking tandoori chicken. Back home in Mumbai, I used to ride a motorbike in 38 degrees scorching summer heat all day without ever getting roasted like this. Here in Auckland, a breezy, cloudy 18 degree day gave me second degree burn. Sitting in my room, shivering in the breeze while my face is radiating heat made me feel so defeated. How on earth does the sun burn you through the clouds in the New Zealand? Mere ko lagta hai, bro, I think you may have misspelled about yesterday. Actually, misuse the word of yesterday because I don't think so. Yesterday इतनी गर्मी थी for sure. Unless आप कहीं और शहर में मुझे सुन रहे हैं and but आपने Auckland mention किया यहाँ पे, तो I don't think so. You are even out of Auckland as well. But so far I know it was kind of cloudy and it wasn't that very hot. हो सकता है कुछ दिनों पहले की बात होगी अगर आपकी, तो yes makes sense because it was really hot. And we loved it. Hot as in like not that hot कि आप सर बाहर नहीं जा सकते. It was like थोड़ा chill था but sunny तो था. So yes, thank you so much सबसे पहले तो message भेजने के लिए. And देखिए हम जिस angle में हैं, like जिस जो हमारा जो हमारी country है वो जियोग्राफिकली जिस पोजीशन पे है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली सनलाइट या तो हार्श आती है या फिर नहीं आती है. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ द अर्थ. अब ऑब्वियसली आप अगर मुंबई से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे इट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम द इक्वेटर, तो वहाँ का क्या थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा. और बट वहाँ पे ऑब्वियसली अदर चीज़ें हैं जो आपको सचमुच वहाँ पे भी यूज़ करनी चाहिए, सनस्क्रीन और ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड जो छोटा मोटा जो चीज़ें हैं वहाँ पे, राइट. बट यहाँ पे ओजोन लेयर, ये मैंने सुना है दैट ओजोन लेयर इज़ वेरी वीक एंड दैट्स वाई यू नो यहाँ पे डायरेक्ट हिट करती है स्किन को एंड ऑब्वियसली नेगेटिव साइड में भी जा सकती है. दैट्स वाई यू नो ऑलवेज ट्रीट योर स्किन एज अ बेबी. मेक श्योर आप कभी भी बाहर जाएँ क्रीम लगाएं और सनस्क्रीन बोल रही है, ऐसा नहीं कि कोई फेयर एंड लवली लगा लिया वो नहीं, सनस्क्रीन लगाएं अच्छी वाली जो ऑनलाइन आप पता कर सकते हैं कौन सी गुड क्वालिटी वाली है और कितनी रेटिंग है उसमें, ये सारी चूज़ करके एंड देन यू कैन गेट इट. बट येस दैट इज़ मस्ट, नॉट जस्ट टू सिक्योर योर कलर टोन बट ऑल्सो टू मेक श्योर दैट आपकी स्किन जो हेल्दी रहे. और पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए हमेशा, ताकि आपके स्किन को आपके स्वेटिंग से ही ना पीना पड़े. बट येस थैंक यू सो मच अमित भाई अगेन एंड इट इज़ रियली बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स समर और समर में काफ़ी लोगों को लगाना पड़ेगा ये चीज़, विच इज़ गुड राइट. बट यहाँ पे अगर कोई है जो बताना चाहे कि कौन सी ऐसी और चीज़ है जो मैंने मिस आउट की यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं अमित भाई को बता सकूँ एंड ऑफकोर्स उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी. यस 5555 इज द नंबर. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. हम
1: ड्राइविंग यू होम. द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी,
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply. Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle कीजिए अपना home loan of 500,000 या उससे ज्यादा Finance World के साथ. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2. 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Her eligible home loan of 500,000 या उससे ज्यादा automatically आपको draw में enter करता है. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
6: A message to all road users. You must now give way to buses that are leaving bus stops, the roadside, or bus lanes in areas where speed limits are 60 kilometres an hour or less. This will help buses rejoin traffic safely. Learn more at nzta.govt.nz.
7: Be in to win one of five $10,000 MyTitan gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho. Camping ka pura gear le sakte ho. Ek room ka makeover kar sakte ho. Ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bus $20 ya se zyada spend karo, apna receipt code online enter karo and you are in the draw. Plus club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at MyTitan.
8: Kya aapka tax return up to date hai? File karne mein expert advice chahiye? ABC

0: वेलकम बैक। चलिए आज जो ऑफिस आवर के लिए कोई मैसेज नहीं आया, बट आई थॉट मे बी शाउट आउट टू नॉट श्योर दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो कि स्टेफनोज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की तरफ से है ये, जहां पे टीम पुडिश एंड एना फ्रॉम बाफुड एंड थॉमसन ये सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड ब्रिंगिंग टू यू नॉट श्योर दिवाली। सैटरडे 24th अक्टूबर को होने वाला है, 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे ना, ये तो शाम थोड़ी हुई, लेकिन हाँ अभी ऑब्वियसली डेलाइट सेविंग भी हो गया, दिन लंबे हो रहे हैं तो शाम भी बोल सकते हैं एट वन पॉइंट आई गेस। स्मेल्स फार्म और टाकापुना ये एड्रेस है वहाँ का, जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। डांस परफॉर्मेंस, फन एक्टिविटीज फॉर बच्चे, डिलीशियस खाना, फेस्टिवल शॉपिंग, फेस्टिव शॉपिंग एंड मच मोर वहाँ पे मिलने वाला है 9 बजे वहाँ पे। फायरवर्क्स भी होने वाला है, स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स डिस्प्ले भी। फ्री एंट्री है, फ्री पार्किंग, सो यस मेक श्योर आप अपने साथ अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों को लेके आइए, अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड एवरीवन टू ब्रिंग अलोंग एंड यस एंजॉय द पार्टी।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। और हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। आज मैं आपको जीन बेटन की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करूंगा, बताऊंगा। जीन बीटर न्यूजीलैंड के एक फेमस फीमेल पायलट थी। उन्होंने अपनी करेज और डिटर्मिनेशन से एविएशन हिस्ट्री में अपना नाम जो है बहुत ही बढ़िया बनाया। 5 अक्टूबर 1936 की बात है जब उन्होंने इंग्लैंड से अपने सोलो फ्लाइट स्टार्ट की। उनका गोल था न्यूजीलैंड पहुंचना, और इस जर्नी में उन्हें डिफिकल्ट वेदर, लॉन्ग डिस्टेंस एंड डेंजरस फ्लाइंग कंडीशन का सामना करना पड़ा। लेकिन जीन ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी फ्लाइट कंटिन्यू रखी और 16 अक्टूबर यानी कि आज के दिन 1936 को ऑकलैंड पहुंची। वहां उन्हें वेलकम करने के लिए हजारों लोग आए थे। उनकी जर्नी सिर्फ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लाइट नहीं थी बल्कि वुमेन के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन भी थी। जीन बीटर की स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर हम डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ काम करें तो हम डिफिकल्ट चैलेंजेस को भी ओवरकम कर सकते हैं।

0: 공작이.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: When you've got roads, rain and traffic, you get potholes.
1: Oh man, potholes are the worst.
0: Yes, we know. That's why we have the Auckland Council Pothole Promise.
1: Huh, how does it work?
0: Well, someone alerts us to a pothole via the website. Then our crews head out, spot the pothole, catch it and release it somewhere where it won't be a nuisance.
1: Really?
0: No. We fill them with an approved asphalt premix, usually within 24 hours. It's how we keep the city moving. Search Pothole Promise. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
2: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं प्योर मार्बल मूर्तिज कॉपर मूर्तिज गन मेटल मूर्तिज देवी देवताओं के वस्त्र सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स मिरर्स कर्टन्स सोफा कवर्स बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड पापटोयटोय योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि
3: मैं हरीश लोढ़िया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं सोना संसार 190 स्ट्रडा रोड माउंट रॉस्किल या 138 ग्रेट साउथ रोड पापटोयटोय में
4: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
5: एक घर एक दिवाली और एक लिस्ट जो खत्म ही नहीं होती दिवाली डेकोरेशंस वाटर क्ले और इलेक्ट्रिक दियास आइडल्स पूजा सामग्री करवा थाली सेट और किचन में हीरो की एंट्री प्रेशर कुकर ट्राइप्लाई कुकवेयर स्टील यूटेंसिल्स एनजेड सर्टिफाइड गैस स्टोव तंदूर डिनर सेट्स ब्लॉकबस्टर सेल अप टू 35% ऑफ प्लस फ्री ऑकलैंड डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $50 गुरुमार्ट घर का सामान लो प्राइसेस हाई क्वालिटी हमेशा
6: गुरुमार्ट 154 कोलमा रोड पापटोय या gurumart.co.nz
7: Fashion Landscape, जिनके नाम में ही फैशन हो सोचिए उनकी टीम कितनी पैशनेट होगी रिटेनिंग वॉल्स कॉन्क्रीट एंड पेविंग ड्राइवेज फुटपाथ एंड कार पार्क्स व्हीकल क्रॉसिंग्स कर्बिंग एंड वॉकवेज ड्रेनेज वॉक एंड न्यू बिल्ड या फिर गार्डन्स प्लेग्राउंड्स कमर्शियल या रेसिडेंशियल सब डिविजन्स या लाइफस्टाइल ब्लॉक्स या चाहे हो प्लांटिंग डेकिंग फेंसिंग या पॉन्स ओवर 16 इयर्स लोकल एक्सपीरियंस फैशन लैंडस्केप है लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट्स कॉल 021-075-1330 फैशन लैंडस्केप आपके आउटडोर स्पेस स्पेशलिस्ट
8: जबरदस्त हिट्स
9: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं
8: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
10: हम चटनी शॉट्स
11: चटनी शॉट के सेगमेंट में स्वागत है और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अभी की लेटेस्ट खबर का कुछ खबर आई है न्यूज़ आज की तौरंगा सिटी से 16 अक्टूबर आज के दिन रात लगभग Obviously, you know, early morning, I would say. 12:30 PM रात के चैपल स्ट्रीट के पास एक कार पानी में गिर गई और ये जगह बे सेंट्रल शॉपिंग सेंटर के पास है पुलिस और इमरजेंसी सर्विस को तुरंत बुलाया गया कार में एक पर्सन को सेफली बाहर भी निकाल लिया है और मॉडरेट कंडीशन में हॉस्पिटल भी ले जाया गया है पुलिस को एक्चुअली शक है कि कार में एक सेकंड पर्सन भी हो सकता है इसीलिए पुलिस नेशनल डाइव स्क्वाड को सर्च में हेल्प करने के लिए बुलाई गई और पुलिस ने व्हीकल को रिकवर करने की और इन्वेस्टिगेशन भी वहाँ पर शुरू कर दी है पूरा जो एरिया है उसे भी बंद कर दिया है बट ड्राइवर्स को ऑल्टरनेटिव रूट्स जो है उसे यूज़ करने की एडवाइस दी गई है सो इफ एनी वन गोइंग ओवर देयर जस्ट मेक श्योर कि वहाँ पे शायद ही हो सकता है तो यू माइट हैव टू डबल चेक विथ योर मैप्स एंड गेट देन अपडेट फ्रॉम देयर ये इंसिडेंट हमें ये याद दिलाता है कि रोड पर ड्राइविंग कितना केयरफुल रखना पड़ता है यू नो इफ यू आर फीलिंग स्लीपी और यू शुड नॉट बी ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कंप्लीटली नॉट और मतलब कब कर सकते हैं कितनी टाइम पहले पी सकते हैं ये आई डोंट थिंक सो आई कैन गिव यू द आंसर फॉर दैट बट यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द वेबसाइट वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बट यस अगर नींद आ रही है दैट आई नो दैट यू जस्ट टेक अ ब्रेक स्टॉप समवेयर सेफ एंड देन हैव अ नैप फॉर अ वाइल एंड जब आप ठीक लगे आपको कि यस यू कैन ड्राइव एंड देन यू कंटिन्यू बट फॉर श्योर अगर आपको ड्राइविंग के बारे में और जानना है तो यू शुड डेफिनेटली गो ऑन द वेबसाइट ऑन द रिस्पेक्टिव साइट्स एंड चेक इट आउट व्हाट आर द रूल्स एंड व्हाट यू शुड बी रूल्स से ज़्यादा इट इज़ मोर अबाउट योर सेफ्टी एज वेल. रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं नॉट बिकॉज कि भाई आप पालन करो, ऐसा नहीं. रूल्स इसलिए बनाए जाते सो दैट आप खुद की भी लाइफ को जोखिम में ना डालें एंड साथ में द अदर पर्सन एज वेल, बिकॉज रोड इज ऑब्वियसली पब्लिक प्रॉपर्टी और वहाँ पे सिर्फ आप नहीं और भी लोग कार चलाते हैं और भी लोग वॉकिंग पे आते हैं. सो या
10: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
12: इसके पीछे हम दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: ये रहा पहला मौका, जल्दी से सुन लीजिए. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून 2026, जहां पे आप जीत सकते हैं शेयर ऑफ $5,000 वर्थ प्राइजेस. वेल यस, 30 अक्टूबर को हो जाएगा डिस्क्लोज हु आर द विनर्स. बट अभी का जो मौका है वो है IH लिख के मुझे अपने नाम के साथ 5599 पे भेज दीजिए. $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर्स जीतने का आपके पास मौका है. सो इनडेलिबल होम्स की तरफ से ये मौका, इनडेलिबल होम्स का इनिशियल ही मुझे आपको लिख के भेजना है 5599 पे अपने नाम के साथ. सो indelibleholmes.co.nz उनकी वेबसाइट है, जहाँ पे बिल उनकी और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. एंड दे आर वेरी वेल नोन फॉर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग एज इन द घर के और ये सब. एंड येस ऑफकोर्स hum.truva.nz ये इनकी वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं हमारी. एंड येस आपके पास अभी से लेकर से 5 मिनट है, 5 मिनट से ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट पहले. सो यस, 5 मिनट पूरे आपके पास टू अप्लाई फॉर दिस. सेंड एज मैनी मैसेजेस यू कैन. एंड ऑफकोर्स स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स डू अप्लाई.